FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 30वीं तिथि, तदनुसार 20 मई 2026। इस समय प्रातः की 5:58 हो चुके हैं। मंगल ध्वनि के साथ हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने को हैं। श्रोता आप सुन सकेंगे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले हिंदी में समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की ये 2 दिन की यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान तथा नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिक

0: और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार में आरक्षण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की 66 श्रेणियों को अधिसूचित किया है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग ए का 10% और अन्य पिछड़ा वर्ग बी का 7% आरक्षण रद्द कर दिया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में 1 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली की यात्रा करेंगे। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने बताया कि श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड समूह में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल हैं। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया गया है। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। संग्रहालय का ये तीसरा AI संचालित इंटरैक्टिव होलोबॉक्स होगा। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना बनी हुई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:05 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण में आप जानेंगे हमारे इस केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी और उनके प्रसारण समय के बारे में। अब से कुछ ही देर बाद सुबह 6:10 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम चिंतन। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना सुनेगा सुबह 6:15 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार आप सुन सकते हैं सुबह 6:45 पर। सुबह 7:20 पर

पत्नीगा भक्ति रचना का कार्यक्रम श्री रामचरितमानस गान। कार्यक्रम नमस्कार चूरू का प्रसारण होगा सुबह 7:30 पर। आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले किए जाएंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज सुबह 8:00 और 8:15 पर। सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम सुनेगा सुबह 8:30 पर। हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी केंद्र जयपुर से सुबह 9:00। सुबह 9:15 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम साहित्य सुगंध। किसी एक फिल्म की जानकारी पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्र संसार सुनेगा सुबह 9:30 पर। विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे आकाशवाणी केंद्र मुंबई से सुबह 10:00। दिन में 11:05 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुनेगा दोपहर 12:30 पर आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम माटिकेश्वर। हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी केंद्र जयपुर से दोपहर 1:00 और महिलाएं सुन सकेंगी अपना कार्यक्रम घर आंगन दोपहर 1:05 पर। मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से दोपहर 2:00 और दोपहर 2:15 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने पेशे खिदमत होगा दोपहर 2:30 पर। हमारी आज की सायंकालीन सभा में श्रोता युवा श्रोता सुन सकेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी समय रहेगा शाम 5:00 का। शाम 6:00 सुनेगा आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले हिंदी में समाचार अंग्रेजी में समाचार होंगे शाम 6:05 पर। FM चूरू से देशभक्ति फिल्मी गीत प्रसारित किए जाएंगे शाम 6:10 पर। आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले किए जाएंगे संस्कृत में समाचार शाम 6:20 पर। हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुन सकते हैं आकाशवाणी केंद्र जयपुर से शाम 6:30 पर। जिले की चिट्ठी का प्रसारण होगा शाम 6:40 पर और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आप सुन सकते हैं शाम 6:45 पर। किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम खेती और गृहस्थी शाम 7:00। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता सुनेगा रात्रि 8:00। समाचार संध्या और News@9 का प्रसारण होगा आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रात्रि 8:45 पर और रात्रि 9:00। FM चूरू से सुनेगा राजस्थानी लोक संगीत रात्रि 9:15 पर। कार्यक्रम चर्चा का विषय है आप सुनेंगे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रात्रि 9:30 पर। शास्त्रीय संगीत सुनेगा FM चूरू से रात्रि 10:00 और सुगम संगीत का प्रसारण होगा रात्रि 10:30 पर। रात्रि 11:00 आप सुन सकते हैं आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले हिंदी में समाचार अंग्रेजी में समाचार होंगे रात्रि 11:05 पर।

श्रोता भी सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:10 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन।

श्रोताओं, असफलता भी देती है सीखने के अवसर। साथियों, नॉर्मली हम यही समझते हैं कि जीवन में सफलता मिलती है तो जीवन आगे बढ़ता है, जीवन पॉजिटिव होता है या जीवन में कुछ सारभूत हमें प्राप्त होता है। ये बात सही है कि सफलता मिलती है तभी जीवन की हमारी टेस्टिंग होती है कि हमने जो कुछ भी किया या हम जो कुछ भी करने का प्रयास कर रहे हैं वो सही दिशा में जा रहा है या नहीं। लेकिन इस सफलता की नींव में न जाने कितनी असफलताओं के पत्थर होते हैं जिसकी बुनियाद पर सफलता की इमारत खड़ी होती है। एक सफलता के पीछे अनेक असफलताओं का जो आधार है, उसका जो बेस है, वो खड़ा होता है। क्योंकि कोई भी जब नया काम करेंगे, किसी भी फील्ड में कोई भी नया काम करेंगे, हम उस चीज के, उस रास्ते के पथिक नहीं होते हैं, इसलिए स्वाभाविक तौर पर वहां गलतियां होना, असफलताएं होना, फेल्योर होना पूरी तरह से स्वाभाविक है। कई मौके ऐसे होते हैं कि जब हम किसी नए काम को करने के लिए उतरते हैं, किसी नए रास्ते पर, किसी नए पथ पर चलने के लिए जब अग्रसर होते हैं और उस पर हम भटक जाते हैं, असफल हो जाते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास, हमारी हिम्मत, हमारा हौसला टूट जाता है और हम उस पथ को ही छोड़ देते हैं, उस नए काम को ही छोड़ देते हैं। यहीं पर हमारी सबसे बड़ी गलती, त्रुटि होती है। क्योंकि ये मानकर चलिएगा, जिस काम को हम आज पहली बार कर रहे हैं, जिस प्रयोग को हम आज पहली बार कर रहे हैं, उसका कोई ब्लूप्रिंट, कोई मैप, कोई दिशा दर्शन हमारे पास नहीं है, उसके बावजूद हम उसको कर रहे हैं, तो सफलता की बजाय असफलताओं की संभावना अधिक होती है। इसलिए असफलताओं की संभावना अधिक होने के कारण असफल होने की संभावनाएं भी अधिक होती हैं। इस चीज को हमें हमारे व्यक्तित्व में उतार लेना चाहिए कि जब भी कोई नया काम करेंगे, जब भी कुछ नए रास्ते पर चलेंगे, जब भी कुछ नई मंजिलों की तलाश पर चलेंगे, वहां पर असफलताएं हमारे साथ होंगी। लेकिन उन असफलताओं को हमारे नींव का पत्थर समझते हुए, उन असफलताओं को हमारी सीढ़ी की पहली, दूसरी, तीसरी पायदान समझते हुए, उन पर कदम रखते हुए, उन पर कदम आगे बढ़ाते हुए हमें ऊपर उठना होगा। और आप देखिएगा, यही असफलताएं हमें सहारा देते हुए सफलताओं की ओर लेकर जाती है। आप यही समझ सकते हैं कि सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कोई भी सिक्का एक पहलू से नहीं बनता है, इसलिए हमें इन दोनों पहलुओं को एक साथ समझते हुए ही जीवन में आगे बढ़ना चाहिए।

श्रोता भी सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:15 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

श्रोता अभी सुन रहे थे देवाशीष दास गुप्ता की आवाज में कबीर अमृतवाणी। FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:45 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार।

लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मोहम्मद अजीज सुरेश वाडेकर, कविता कृष्णमूर्ति और उदित नारायण की आवाजों के साथ।

एफएम चूरू से श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार। आई श्रोताओं सुनते हैं विनोद राठौर, अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज को। इस गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने। आप सुन रहे हैं मृत्युदाता फिल्म से ये नगमा।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: FM चूरू से श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत पहाड़। आइए सुनते हैं महेंद्र कपूर को।

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार। आइए सुनते हैं किशोर कुमार को फिल्म अंधा कानून में।

श्रोता इस वक्त एफएम चूरू से सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार। आइए श्रोताओं सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज। गीत के शब्द लिखे हैं सावन कुमार ने और संगीत है उषा खन्ना का।

लता मंगेशकर की आवाज के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार यहीं संपन्न होता है। FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:20 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं भक्ति रचना का कार्यक्रम श्री रामचरितमानस गान। आज आप सुनेंगे एपिसोड नंबर 381।

श्रोता भी सुन रहे थे भक्ति रचना का कार्यक्रम श्री रामचरित मानस कान। आवाज थी सुरेश वाडेकर की। FM 100.7 में मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:30 हो चुके हैं। लीजिए पेशे खिदमत है कार्यक्रम नमस्कार चूरू। कार्यक्रम नमस्कार चूरू सुनने वाले तमाम श्रोताओं को नमस्कार। मनीष भारद्वाज का श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम हमारे दिल की, आपके दिल की, आपकी जरूरतों की, हमारी जरूरतों की, या जो समसामयिक बातें हैं वो रोज करते हैं और हमें आपके फीडबैक से काफी हेल्प भी मिलती है। इस प्रोग्राम में किस प्रकार से कौन सी चर्चाएं, कौन सी बातें करते हैं और हमारी बातें आपको कैसी लगती है, ये भी फीडबैक के माध्यम से हमें पता चलता है। चलिए आज इसी प्रकार के एक समसामयिक मुद्दे पर बात करते हैं, क्योंकि आज है विश्व मधुमक्खी दिवस। जी हाँ श्रोताओं, एक छोटी सी मधुमक्खी जो हमारे घर के आसपास, हमारे गली में, मोहल्ले में और कई बार हमारे घरों में भी, हमारे घर के आंगन में लगे पेड़ों पर भी अपना छाता लगाकर हमारे आसपास रहती है, ये मधुमक्खी वर्षों से, या कहें कि हजारों वर्षों से हमारा एक समाज का हिस्सा रहा है, क्योंकि इसके द्वारा ऐसी उपयोगीकारी चीज़ें हमें दी जा रही हैं जिनका हमारे जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में बहुत बड़ा उपयोग है। लेकिन सामान्य तौर पर हम सिर्फ एक ही चीज़ जानते हैं कि मधुमक्खी हमें शहद देती है। नो डाउट शहद बहुत दुर्लभ, लाभकारी एक खाद्य पदार्थ ही नहीं बल्कि औषधि भी कह सकते हैं हम, जो केवल और केवल मधुमक्खी ही हमें देती है। इसके लिए हम तहे दिल से इस जीव का धन्यवाद अदा कर सकते हैं कि एक दुर्लभ औषधि जो कि प्रत्येक दवाओं में मिलकर खाद्य पदार्थ के रूप में हम सेवन करते हैं और हमें ये स्वास्थ्य प्रदान करती है। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे कि वर्ष 2017 से ही विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में हम 20 मई को, प्रत्येक 20 मई को ये दिन आयोजित करते हैं। और आप देखेंगे श्रोताओं कि बहुत साल नहीं हुए, केवल 9 साल के इस दिवस का इतिहास है। किसी भी समस्या को, किसी भी बात को, किसी भी टॉपिक को विश्व दिवस के रूप में आयोजित करने की तब जरूरत होती है जब वास्तव में ऐसी कोई समस्या हो। तो हम इस चीज पर थोड़ा जिक्र करते हैं कि ऐसी जरूरतें क्यों पड़ी। आज का दिन, सबसे पहली बात तो कि 20 मई को ये दिन क्यों मनाया जाता है, आपको बता दें कि आधुनिक मधुमक्खी पालन के अग्रणी एंटोन जॉनसो के जन्मदिन के रूप में आज का दिन उनको समर्पित किया गया है। लेकिन आपको बताएं कि मधुमक्खियों के जीवन पर हमारी जीवन शैली, हमारी अंधाधुंध वन कटाई और जो जिस प्रकार से हम पौधों में ये जहरीले कीटनाशक वगैरह इस्तेमाल करते हैं, इसके कारण से पूरी दुनिया में मधुमक्खियों की जीवन पर और उनकी संख्याओं पर खतरा उत्पन्न हुआ है। इसीलिए इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए यूनाइटेड नेशन ने 2017 से इस दिवस की शुरुआत की है, जिससे कि आज के दिन हम 2-5 मिनट इस मुद्दे पर आपस में चर्चा करके, आपस में विचार करके ये कुछ अपने जीवन में इस प्रकार का सुधार करें कि हमारे आसपास जो मधुमक्खियों के लिए जीवन जीने के लिए एक सुगम, सहज, पॉजिटिव वातावरण हो सकता है उसको हम अपनाएं। और आपको अभी हम बात कर रहे थे कि मधुमक्खियों से हमें शहद मिलता है, ये इनके द्वारा हमें प्रदान किए जाने वाला केवल एकमात्र चीज हमें याद है। बाकी वैज्ञानिकों के अनुसार, आपको श्रोताओं पता हो, दुनिया में जो
परागण होता है पोलिनेशन, उसमें से 75% केवल अकेली मधुमक्खियों पर निर्भर है। आप सोच सकते हैं कि पोलिनेशन के कारण ही दुनिया में फल फ्रूट पौधे पनपते हैं, पैदा होते हैं, विकसित होते हैं। उनमें 75% अकेले मधुमक्खियों पर निर्भर है। तो आप सोचेंगे कितना बड़ा सहयोग, जो हमें शायद अपने प्रैक्टिकल जीवन में पता भी नहीं हो, वो मधुमक्खियां हमारे लिए करती हैं। तो इसलिए इस जीव को बचाने के लिए आज के दिन हम कुछ ऐसे प्रण करें कि इनका जीवन सहज सुगम हो। वर्तमान समय में ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण, कीटनाशकों के अंधाधुंध

से मधुमक्खियों का जीवन खतरे में आ चुका है, इसलिए इन चीजों को हम कम कर सकते हैं। अगर पूरी तरह से दूर नहीं कर सकते तो कम कर सकते हैं, ताकि जो जीव हजारों वर्षों से पॉलिनेशन में शहद देकर हमें सहायता कर रहा है, हम उसके जीवन की सहायता करें, सुरक्षा करें, रक्षा करें।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
2: FM चूरू से श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार चूरू। श्रोताओं, किसी विचारक ने ये बात कही थी, आनंद केवल वही है जब जहां आप हैं उसी पल में है। और ये बात अगर हम सोचें, फील करें, तो अगर किसी विचारक ने ना भी कही हो तो हम अपने अनुभव से इस चीज को पूरी तरह से सर्टिफाइड कर सकते हैं कि हमेशा जो प्लेजर है, आनंद है, एक मौज है, वो हमेशा अभी और यहीं होती है। इन फ्यूचर में, भविष्य की इंतज़ार में कभी भी हम आनंद को, मौज को, एक इजीनेस को कभी फील नहीं कर सकेंगे। आप इस चीज़ को देखिएगा, हम में से अधिकांश लोग ये प्लानिंग करते रहते हैं कि एक साल बाद, दो महीने बाद या भविष्य में कभी ऐसा हो जाएगा, ऐसा ऐसा सेट हो जाएंगे, तब हम जीवन को सुकून से जी सकेंगे। लेकिन आपने नोट किया होगा, वो सुकून भरा पल, वो भविष्य की सेटिंगें, वो भविष्य का जुगाड़ कभी होता नहीं और कभी हम सुकून से रहते नहीं, वो सुकून का इंतज़ार करते रहते हैं। अगर जीवन जीना है, जीवन का सच में ही लुत्फ उठाना है, तो चाहे परिस्थितियां कुछ भी हों, आप अभी और यहीं

इसी पल में जीवन को जी सकते हैं। और दूसरे शब्दों में कहें तो जीवन केवल इसी पल में अभी और यहीं जिया जा सकता है। भविष्य में जीवन नाम की चीज़ या हम एक जो सपने देखते हैं कि ऐसा ऐसा होगा, वो कभी नहीं होता। इसको ट्राई करके देखिएगा। परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत हों, आप उसमें एक बार इजी होकर उसको इत्मीनान से, सुकून से जी कर देखिएगा, आपको शायद एक कला हाथ लग जाएगी।

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: FM चूरू से श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार चूरू।

श्रोता, उम्मीद करते हैं आज का कार्यक्रम नमस्कार चूरू आपको पसंद आया होगा। आज जिन मुद्दों पर हमने आपसे बातें की है उस पर आप और हम सभी और हमारे पूरे समाज को लेकर इन बातों पर एक्ट अपॉन करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज का कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिएगा अपने साथी मनीष भारद्वाज को।

FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को हैं, श्रोता आप सुन सकेंगे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले समाचार प्रभात। मॉर्निंग न्यूज का प्रसारण होगा सुबह 8:15 पर। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3000 रुपए की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की बचत और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1.6% की वृद्धि होगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने इस वर्ष के शुरू में तकनीकी गड़बड़ी के बाद एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की आगे की जांच के आदेश दिए। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा

0: बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इटली से हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। अनंतारा प्लाजो नायदी होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी गर्मजोशी से समुदाय के सदस्यों से हाथ मिलाया। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के संयुक्त लेख में दोनों नेताओं ने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया है।
2: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: नॉर्वे की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: ओस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गुड़बोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 19वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वैश्विक स्वास्थ्य का पुनर्निर्माण एक साझा दायित्व विषय पर आयोजित सभा में श्री नड्डा ने संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण पर आधारित सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में भारत की प्रगति का उल्लेख किया।
4: India is accelerating towards universal health coverage.
5: भारत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का विस्तार करके सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हमने 185,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं। इसके अलावा हम महामारी की तैयारियों और आपातकालीन राहत के लिए मजबूत और सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
4: Pandemic preparedness and emergency responses.
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की यह योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
5: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत न हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7 लाख करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी।
8: में जो इनपुट मिला है उसमें हमने और का इसको और इम्प्रूव करो और एक रोल मॉडल के रूप में हम पूरे देश में सारे सरकार को हम भेजेंगे भाई इस रूप में आप हमें अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके दो। जैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट करे इंडस्ट्रीज में क्या लॉस होता है, प्रोडक्शन का कितना लॉस होता है, लेबर एक तरह से दूसरी तरह माइग्रेट करती है, सबको का अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करें और उसका संकलन करके आगे दे सके।
0: नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान का संचालन इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद रोक दिया गया था। एक रिपोर्ट।
9: यह कार्रवाई पायलट डिफेक्ट रिपोर्ट में दर्ज एक प्रविष्टि के बाद की गई थी। इसमें कहा गया था कि बायां ईंधन नियंत्रण स्विच थोड़ा सा दबाने पर रन से कट ऑफ स्थिति में फिसल जाता है और चयनित स्थिति में ठीक से लॉक नहीं होता है। महानिदेशालय ने कहा कि एयर इंडिया ने मूल उपकरण निर्माता की निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार और महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में ईंधन नियंत्रण स्विच का निरीक्षण और कार्यात्मक परीक्षण किया। निरीक्षण परिणामों और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि ईंधन नियंत्रण स्विच यांत्रिक रूप से डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा था और इकाई को सेवा योग्य घोषित किया। हालांकि महानिदेशालय ने निगरानी के अंतर्गत निर्देश दिया है कि ईंधन नियंत्रण स्विचों का भविष्य में निरीक्षण किया जाए। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
10: आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना भी बनी हुई है। राजस्थान रॉयल्स ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वरिष्ठ भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने भारतीय हॉकी खिलाड़ियों के फिटनेस स्तर की सराहना करते हुए इसे खेल के लिए समर्पण की पहचान बताया है। कोहली ने कहा कि क्रिकेटरों की फिटनेस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की फिटनेस के 15% के बराबर भी नहीं है। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय दल की पहली सूची की घोषणा कर दी गई है। यह प्रतियोगिता इस महीने की 25 तारीख से 6 जून तक गोवा में आयोजित की जा रही है। उधर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आया था। अंकित ने राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान जबकि पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। दोनों खिलाड़ियों ने आरोपों को स्वीकार कर लिया जिसके परिणाम स्वरूप उनकी अयोग्यता अवधि में 1 वर्ष की कमी हुई है।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक रिपोर्ट।
11: राज्य के बुंदेलखंड इलाके का बांदा जिला लगातार तीसरे दिन भी देश का सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है और कई स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 44 से

0: 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है और रात के समय भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। पारा बढ़ने से आम जनजीवन पर तो असर पड़ा ही है, पशु पक्षी भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश भी भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य में पहली बार पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
2: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा लोक सत्य सहित कई अखबारों में है। भारत नॉर्वे के बीच अंतरिक्ष, हेल्थ, डिजिटल क्षेत्रों सहित 12 समझौते। भारत नॉर्डिक समिट में पीएम मोदी के शब्द, नवभारत टाइम्स में है। आतंकवाद पर हो एक रुख, कोई समझौता नहीं, कोई दोहरा मापदंड नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की इटली यात्रा पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों का साझा लेख, दैनिक जागरण में है। रणनीतिक साझेदारी के युग में भारत और इटली शीर्षक से छपे लेख के अनुसार भारत का तेजी से बढ़ता नवाचार तंत्र और कुशल पेशेवरों की बड़ी संख्या तथा इटली की उन्नत औद्योगिक क्षमता दोनों देशों के सहयोग को स्वाभाविक और रणनीतिक सहयोगी बनाती है। आवारा कुत्तों पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, खूंखार कुत्तों को सजाए मौत। शीर्ष न्यायालय ने कहा, बच्चों और बुजुर्गों के जीवन को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते। राजस्थान पत्रिका ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को दिया है, भयमुक्त जीवन लोगों का अधिकार। नक्सलवाद की तरह 3 वर्ष में हर केस खत्म करने का लक्ष्य, गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान दैनिक भास्कर में है।
1: धन्यवाद आकर्षिता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. Two leaders to discuss ways to boost cooperation on India-Middle East-Europe economic corridor and review joint strategic action plan 2025-2029. West Bengal government to roll out Annapurna scheme providing 3,000 rupees per month to women aged 25 to 60 years from June 1st. Joint Parliamentary Committee on One Nation, One Election says simultaneous Lok Sabha and Assembly elections can save nearly 7 lakh crore rupees and increase India's GDP growth by 1.6%. DGCA orders further inspection of fuel control switch of an Air India Boeing 787-8 aircraft following technical snag earlier this year. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Lucknow Super Giants by 7 wickets in Jaipur. Prime Minister Narendra Modi arrived in Rome last night on an official visit to Italy. Mr. Modi was received at the airport by Italy's Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, Antonio Tajani. Later, Italian Prime Minister Giorgia Meloni hosted a dinner in honor of Mr. Modi. After the dinner, PM Modi reached Anantara Palazzo Nayadi Hotel, where a jubilant and cheering Indian diaspora welcomed him. Mr. Modi will hold talks with his Italian counterpart, Giorgia Meloni, President Sergio Mattarella, and discuss with them ways to boost India-Italy cooperation. PM Modi's visit will focus on how to boost India-Italy cooperation, especially focusing on the India-Middle East-Europe Economic Corridor, IMEC. The Joint Strategic Action Plan 2025-2029 will also be reviewed. Mr. Modi will also be visiting the headquarters of the Food and Agriculture Organization, FAO, and strengthening

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू। क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: श्रोता, इस वक्त FM चूरू से सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम।
2: सरकते सरकते
1: श्रोता अपनी रेडियो सेट पर सुन रहे हैं जगजीत सिंह की आवाज़।

इसी तरह एक गाना चल रहा था कहीं पे, तो एक शेर पे मुकर्रर की आवाज आई, तो वो शेर दोबारा पढ़ दिया गया। उसके बाद फिर मुकर्रर की आवाज आई, तो गाने वाले ने फिर दोबारा शेर पढ़ा। उसके बाद फिर मुकर्रर की आवाज आई, तो गाने वाले ने तीसरी दफा फिर पढ़ा। लेकिन फिर मुकर्रर की आवाज आई, तो गाने वाला बोलता है कि साहब मुझे अगला शेर भी पढ़ने दीजिए अभी। तो ऑडियंस में से आवाज आती है कि जब तक आप इसको सुर में नहीं पढ़ेंगे हम मुकर्रर ही बोलते रहेंगे।

0: कर रहा हूँ।
1: जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की युगल आवाजों के साथ ही आज का सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम यहीं संपन्न होता है। FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजने को हैं। श्रोता अब सुन सकेंगे आकाशवाणी केंद्र जयपुर से रिले हिंदी में प्रादेशिक समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंचे, इससे पहले नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज बांसवाड़ा के चुड़ादा गांव में रात्रि चौपाल में लोगों से संवाद का कार्यक्रम। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से राजस्थान के तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को उत्कृष्ट कार्य के लिए दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का पहला पुरस्कार मिला। और चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के 5वें और अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। नॉर्वे की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया। इस मौके पर श्री मोदी ने बताया कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की नवाचार रणनीतिक भागीदारी अगले स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है। 10 वर्षों में देश का बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक में नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ग्राम विकास चौपाल की कड़ी में आज बांसवाड़ा पहुंचेंगे। श्री

0: शर्मा चुड़ादा गांव में रात्रि चौपाल में ग्रामीणों के साथ संवाद करेंगे। वहीं कल सुबह गांव का पैदल भ्रमण कर लोगों से बातचीत करेंगे। गौरतलब है कि ग्राम विकास चौपालों के माध्यम से मुख्यमंत्री ग्रामीणों से सीधा संवाद कर रहे हैं, साथ ही सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में फीडबैक भी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री का कल डूंगरपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। वे 84 क्षेत्र के धम्बोला गांव में ग्राम विकास चौपाल करेंगे। राज्य सरकार ने देर रात 17 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार एक एडीजी, 4 आईजी, 2 डीआईजी और 7 जिलों के एसपी बदले गए हैं। हरिंद्र कुमार कुमावत महावर को कोटा रेंज का आईजी बनाया गया है। वहीं चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डीडवाना कुचामन, टोंक, भरतपुर, नागौर और दौसा के एसपी बदले गए हैं। एडीजी लता मनोज कुमार को सिविल राइट से कम्युनिटिंग पुलिस में भेजा गया है। वहीं एडीजी हवा सिंह घुमरिया को एडीजी सिविल राइट्स का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। राजस्थान विधानसभा की स्थापना के उपलक्ष्य में चलने वाले अमृत महोत्सव के तहत इस साल 4 बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये उत्सव विधायिका को समर्पित होगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि अमृत महोत्सव के जरिए परंपरा, नवाचार और जनविश्वास एक साथ नजर आएगा। श्री देवनानी कल विधानसभा में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा की कार्यकारिणी समिति की बैठक में बोल रहे थे। राज्य में सहकारिता, उपभोक्ता भंडार और क्रय विक्रय सहकारी समितियों की ओर से चलाए जा रहे सभी दवा बिक्री केंद्र और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र आज खुले हैं। ये केंद्र सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। सहकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने बताया कि दवा विक्रेताओं की प्रस्तावित हड़ताल के कारण लोगों को परेशानी से बचाने के लिए ये निर्णय लिया गया है। प्रदेश भर में कुल 538 दवा केंद्र संचालित हैं, जिन पर लगभग 2000 तरह की दवाइयां उपलब्ध हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की ओर से राजस्थान के तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड नो टोबैको डे 2026 में राज्य के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में पहला पुरस्कार मिला है। और ब्यौरा दे रही हैं न्यूज डेस्क से हमारी सहयोगी सालेहा गाजी।
1: राज्य में तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में व्यापक मॉडल स्थापित किया गया है। इसके तहत 500 से ज्यादा तंबाकू मुक्ति उपचार और परामर्श केंद्र चलाए जा रहे हैं। इन्हें जियो टैग कर लोगों की सुविधा के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया गया है। साथ ही 83,000 से ज्यादा स्कूलों में तंबाकू मुक्त विद्यालय परिसर संबंधी निर्देशों की पालना की गई है और तंबाकू मुक्ति के लिए 2.5 लाख से ज्यादा जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई। प्रदेश में तंबाकू मुक्त ग्राम अभियान को आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना से जोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में जन भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है।
0: प्रदेश में प्री डीएलएड परीक्षा आज आयोजित की जा रही है। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की ओर से इसका आयोजन किया जा रहा है। ये परीक्षा 2 पारियों में हो रही है। करौली जिले में इसके लिए 25 और बारां जिले में 24 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 1 दिन और बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं NTA की ओर से नीट UG परीक्षा 21 जून को दोबारा लिए जाने की घोषणा के बाद शिक्षा नगरी कोटा में देश भर से विद्यार्थियों की वापसी शुरू हो गई है। शहर के छात्रावासों, पुस्तकालयों और कोचिंग संस्थानों में विद्यार्थियों की चहल पहल नजर आने लगी है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने प्रदेश के अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन के लिए पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। श्री खेवसर कल जयपुर से VC के माध्यम से समीक्षा बैठक कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने लू और तापघात, मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं और HPV वैक्सीन की प्रगति सहित अन्य बिंदुओं पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश में भीषण गर्मी की स्थिति को देखते हुए अस्पतालों में हीट वेव से प्रभावित मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने और आवश्यक दवाइयां तथा कूलिंग उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। प्रदेश में प्रचंड गर्मी का दौर बना हुआ है। गर्म हवाओं से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। कल प्रदेश के 9 शहरों में दिन का पारा 44 डिग्री से अधिक रहा। चित्तौड़गढ़, अलवर, पिलानी, श्रीगंगानगर, दौसा, चूरू, करौली और कोटा में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप रहा। वहीं फलौदी, चित्तौड़गढ़, कोटा और जयपुर में रात का पारा 30 डिग्री के ऊपर मापा गया। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार तापमान में गिरावट आई है, किंतु तेज गर्मी का असर बरकरार है। आज दक्षिण पूर्वी भागों में और सीमावर्ती जिलों में कहीं कहीं हीट वेव की चेतावनी है। श्रीगंगानगर निवासी मानव सुथार का भारतीय क्रिकेट टीम में चयन हुआ है। वे भारत अफगानिस्तान के बीच होने वाली टेस्ट और वनडे सीरीज में खेलेंगे। मानव लेफ्ट आर्म स्पिनर, बॉलर और बल्लेबाज भी हैं। सुथार की इस उपलब्धि से जिले भर में खुशी का माहौल है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंचे। इससे पहले नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज बांसवाड़ा के चुड़ादा गांव में रात्रि चौपाल में लोगों से संवाद का कार्यक्रम। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से राजस्थान के तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को उत्कृष्ट कार्य के लिए दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का पहला पुरस्कार मिला। और चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:10 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं देशगान।

श्रोता अभी सुन रहे थे समूह स्वर में देशकान एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:15 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम साहित्य सुगंध। आज आप सुनेंगे हिंदी वार्ता। वार्ता का विषय होगा विज्ञापन और सामाजिक उत्तरदायित्व। वार्ताकार हैं सूर्य प्रकाश।

विज्ञापन के संबंध में प्रकाशित करने के लिए आज बहुत कुछ है। जहां कहीं भी बाजार में आर्थिक तंत्र मौजूद है, वहां प्रतिस्पर्धा व प्रतियोगिता अपने चरम बिंदु पर स्थित है, वहां पर विज्ञापन की भूमिका बहुत अधिक समझी जा रही है। विज्ञापन सक्रिय प्रतियोगिता का प्रत्यक्ष प्रतीक है, जिसके फलस्वरूप एक ग्राहक संतुष्ट हो पाता है। यदि उसके अंतर्गत वस्तुओं का विकल्प, उचित मूल्य, अत्याधुनिक उत्पादन का विकसित रूप, चारों तरफ उपलब्ध व आसानी से स्वीकृत आदि का वादा हो, विज्ञापन आवश्यक रूप से ग्राहकों को वस्तुओं के उत्पादन व उसकी कीमत के संबंध में सूचित करता है। प्रत्येक उत्पादन को विज्ञापन के माध्यम से ही अपने प्रतिद्वंदी के उत्पादन को निम्न कोटि का बताया जा सकता है। वह इस तरह उपभोक्ता को वस्तुओं के चुनाव में मदद मिलती है। आखिरकार विज्ञापन किसी भी ब्रांड को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसके फलस्वरूप उपभोक्ता में वस्तुओं की एक पहचान बन पाती है। विज्ञापन के द्वारा रचनात्मक वस्तुओं का विशेष रूप से नए उत्पादों की बाजार में मांग बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप आर्थिक तंत्र को भी लाभ पहुँचता है तथा बाद में वही उत्पादन कम मूल्य पर उपभोक्ता को सुगम हो जाता है। अब यह सिद्ध हो चुका है कि आर्थिक क्षेत्र में लाभ प्राप्ति के लिए विज्ञापन अति आवश्यक है तथा वास्तविक रूप में आधुनिक जीवन में स्वीकार किया जा चुका है। यह भी स्पष्ट हो गया है कि विज्ञापन सामाजिक कार्यकलापों के

इसलिए यह विज्ञापन का उत्तरदायित्व बन जाता है कि वह सुनिश्चित करे कि अपने प्रयास से अधिक उपभोक्ताओं को आकर्षित कर सके, वह उनकी आंखों में आंसू न लाए तथा उसकी स्थिति को कमजोर न करे। विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य समाज में नए नए उत्पादों का प्रसार करना है। समाज विज्ञापन के मौखिक संकेतों पर जीवित रहता है, जिसके अंतर्गत सदस्यों के व्यवहार सक्रियता की अहम भूमिका होती है। विज्ञापन का यह भी कर्तव्य बनता है कि वह व्यक्ति के क्रियाकलापों को अत्यधिक महत्व दे, ताकि उनके मन मस्तिष्क पर उनके ब्रांड का अच्छा असर पड़ सके तथा उनका उत्पाद विशेष रूप से बिक सके। विज्ञापन को आवश्यक रूप से न्यायपूर्ण भी होना चाहिए, ताकि बिक्री व नियमित सौदेबाजी में संतुलन बनाया जा सके। मानव का यह दुर्भाग्य है कि वह अभी भी अपनी त्रुटियों व दोषों से चिपका हुआ है। आज जरूरत इस बात की है कि उसे प्रेरित किया जा सके, ताकि वह हंसी का पात्र न रहकर स्वाभिमानी बन सके। विज्ञापन को अनु उत्तरदायित्व की संस्था बना दिया जाए तो प्रतियोगिता तथा बाजार पर कब्जे के परिणाम स्वरूप एक बार उपभोक्ता वर्ग को भले ही फायदा हो जाए, पर बाद में समाज के लिए यह हानिकारक हो सकता है। विशेष रूप से यह जब तब विशाल नैतिकता परंपरा मूल्य और सिद्धांत जिसके ऊपर सामाजिक इमारत टिकी हुई है। विज्ञापन के सिद्धांत को कानून, ईमानदारी, शिष्टता व सच्चाई आदि का पालन सदैव नियमित व्यवहार के रूप में अपनाना चाहिए। विज्ञापन के विशिष्ट प्राधिकार ने यह कदम उठाया है कि सभी विज्ञापनों को नियमित रूप से धर्म संहिता का पालन करना होगा। साथ ही समस्या यह भी है कि क्या और कौन सा कोड प्रतिबंधित हो तथा किस सीमा तक सच्चाई, विशिष्टता आदि गुणों को स्थापित किया जा सके। बहुत से मामलों में पहुंच अनुमानित हो जाती है तथा विज्ञापन करने वाले व्यक्ति की चेतना केवल मौखिक सीमाओं को ही बढ़ चढ़कर रोक पाने में समर्थ हो पाती है। विज्ञापन परंपरा में विश्वास के अनुसार अच्छे उत्पादन को केवल ईमानदारीपूर्ण विज्ञापन से ही बेचा जा सकता है, क्योंकि यदि झूठ का सहारा लिया तो समझो कि तुम्हारा उत्पाद बाजार से बाहर हो चुका है। कड़ाई के साथ पेश आना केवल नैतिकता आधार ही नहीं, बल्कि व्यापार में एक दूरदर्शिता का गुण है। ईमानदारी का यह स्थिर गुण सभी विज्ञापनों का मुख्य सिद्धांत होना चाहिए। विज्ञापनकर्ता को उपभोक्ता के कम अनुभव व सहज विश्वास का शोषण नहीं करना चाहिए। जहाँ कहीं भी वित्तीय सेवा प्रभावित हो, वहाँ विज्ञापन को उपरोक्त गुणों को संगत बनाना चाहिए, ताकि विज्ञापन के छोटे छोटे छाप व प्रभाव को सार्वजनिक रूप से पढ़ा व समझा जा सके। विज्ञापनकर्ता को बढ़ चढ़कर विज्ञापन करने के साथ साथ उत्पादन में शुद्धता, गुणवत्ता व श्रेष्ठता आदि गुणों का विशेष रूप से समावेश करना चाहिए। विज्ञापन में अश्लीलता को बढ़ावा देने का प्रधान उद्देश्य यह है कि उपभोक्ता का ध्यान उत्पादन के प्रति आकर्षित किया जा सके। सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण जो सामने है वो विशेष रूप से महिलाओं की कामुक कल्पनाओं का शोषण कर विज्ञापन को संगत बनाना। अश्लीलता की यह मुद्रा व्यक्तिक व बहुत बड़े आयाम का रूप ले चुकी है। फिर भी इस तरह के विज्ञापन का औचित्य अनावश्यक रूप में है तथा इसे पूरे संसार द्वारा त्यागना चाहिए। प्रायः केवल मनोरंजनपूर्ण विज्ञापन की छवि उपभोक्ताओं को प्रभावित करती है, जिसके बाद में उस उत्पाद के प्रति कोई ध्यान नहीं रहता, जिससे विज्ञापनकर्ता के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन सब के बावजूद जो उपभोक्ता दिखावे के संदर्श को पसंद नहीं करता, तब इस तरह के विज्ञापन का नकारात्मक पहलू विकसित हो जाता है, जिसके चलते नैतिकता, शिथिलता तथा मर्यादाहीनता का प्रादुर्भाव होने लगता है। इस प्रकार विज्ञापन आधुनिक जीवन का एक आवश्यक अंग बन चुका है, लेकिन विज्ञापन को समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व नियमित सुव्यवस्था के अंतर्गत निभाना होगा, जिसके अंतर्गत उचित मूल्य व नैतिक धर्म संहिता का सामंजस्य ठीक से स्थापित हो सके। विज्ञापन को मानव सेवा के आधार तक ही सीमित रहना चाहिए। जैसा कि कुछ समाजशास्त्रियों का विचार है, विज्ञापन सिर्फ हंसी का पात्र न रह जाए तथा उसे अपने आर्थिक पहलू को मजबूत करने में व्यस्त न रहे, उसे समाज के एक नैतिक व जिम्मेदार संरक्षक की भूमिका को निभाना होगा। सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाते हुए विज्ञापन को इस रूप में स्थिर होना चाहिए कि वह लोगों को प्रभावित, शिक्षित तथा सकारात्मक व्यवहार के प्रति जागृत कर सके। इस प्रकार विज्ञापन को अपने जादू भरे शब्दों व कला

0: दायित्व। वार्ताकार्थी सूर्य प्रकाश। FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। सुनते रहिए हमारे कार्यक्रम।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 MHz पर आकाशवाणी चुरू।

वृक्षारोपण करना ही पर्याप्त नहीं है, वृक्षों का पोषण और संरक्षण भी आवश्यक है। वृक्षारोपण एवं पोषण पर्यावरण संतुलन का सबसे बड़ा उपाय है। आओ वृक्ष लगाएं।

अशुद्ध जल को उबालने से उसको प्रदूषित करने वाले कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। अपने ऑटोमोबाइल वाहन का हॉर्न अनावश्यक ही न बजाएं, इससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है।

दूषित जल का प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर तुरंत पड़ता है। हैजा, टाइफाइड, पेचिश आदि रोग प्रदूषित जल से होते हैं। जल प्रदूषण को

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं ने स्वीकार किया था कि देश की राष्ट्र के रूप में पहचान के लिए एक निज भाषा का होना आवश्यक है। वो भाषा हिंदी ही थी। गांधी जी ने कहा था, भारतवर्ष में 7 लाख देहात हैं। सारा कार्य देहातों पर निर्भर है।

गांधी जी ने कहा था, हिंदुस्तान को अगर सचमुच एक राष्ट्र बनाना है तो चाहे कोई माने या न माने, राष्ट्रभाषा हिंदी ही बन सकती है, क्योंकि जो स्थान हिंदी को प्राप्त है वह किसी दूसरी भाषा को कभी नहीं मिल सकता।

के नियमों को तो सीख लेता है, पर उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारता। वो ठीक उस किसान की तरह है जिसने अपने खेत में मेहनत तो की पर बीज बोए ही नहीं।

पाप और पुण्य दोनों ही वाणी के खेल हैं। कड़वे बोल से बड़ा भी क्या कोई पाप हो सकता है? जो बोल तन को छेद, मन को छेद, प्राण को छेद, आत्मा को छेद कर वर्षों तक सालते रहते हैं, क्या कोई विष बुझा तीर उनकी तुलना में ठहर सकता है? और जिस मीठे बोल को सुनकर सिंह भी आसपास पूंछ हिलाता फिरे, घाव का कोई मलहम उससे भी अक्सीर होता है क्या?

FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्र संसार।

श्रोताओं, कार्यक्रम चित्र संसार में आज आप सुनेंगे वर्ष 1990 में रिलीज हुई हिंदी फिल्म यादों के मौसम से नगमे।

यादों के मौसम। श्रोता अब इस फिल्म में सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल को। आइए सुनते हैं अगली आवाज अमित कुमार और अनुराधा पौडवाल की।

0: हो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: RBI कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की

0: कदम बढ़ाएं।
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अभी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर?
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
3: आरबीआई कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: श्रोता इस वक्त एफएम चूरू से सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्र संसार। श्रोताओं आज आप सुन रहे हैं वर्ष 1990 में रिलीज हुई फिल्म यादों के मौसम के नगमे। श्रोताओं बताना चाहेंगे आपको इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक थे सलाहुद्दीन परवेज, और उन्होंने ही इस फिल्म के जितने भी गीत थे उनके बोल लिखे थे। तो आइए उन्हीं के लिखे बोलों को सुनते हैं एक गीत के रूप में। आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर की।
6: वो होंठ वफा से लरसे हुए, वो आंखें सोई सोई सी, वो सांसें खोई खोई सी, कुछ बोलो क्यों खामोश हो तुम, इस दिल से क्या नाराज हो तुम।

क्या अब भी तुम्हारी फुरकत में एक सावन कोई लिखता है? क्या अब भी तुम्हारे होठों पर एक चुंबन कोई धरता है? क्या अब भी तुम्हारे शानों से मलमल का दुपट्टा गिरता है? क्या अब भी तुम्हारी बाहों में एक दिल सा कोई रहता है?

मैं तुमको सोच रहा हूँ, बस मैं तुमको सोच रहा हूँ, बस तुम मुझ में डूबती जाती हो, मैं तुम में डूबता जाता हूँ। तुम मेरे शाने से लगकर कुछ कान में कहने वाली हो, तुम मेरे ध्यान की दुनिया की एक सुंदर सी शहजादी हो।

ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू। क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

श्रोता इस वक्त आकाशवाणी चूरू से सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित संसार। आज आप सुन रहे हैं यादों के मौसम फिल्म सनक में। अपने रेडियो सेट पर श्रोता सुन रहे हैं अनुराधा पौडवाल और भूपेंद्र की आवाजें।

मोहम्मद अजीज की आवाज के साथ ही आज का चित्र संसार कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। FM 102.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 10 बजने को हैं। श्रोता आप सुन सकेंगे आकाशवाणी केंद्र मुंबई से रिले विविध भारती के कार्यक्रम। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: दोस्तों, सेलुलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आज हम आपको मिलवा रहे हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका कमल बारोट से। आपसे बातचीत की है कमल शर्मा ने।
1: दोस्तों, अगर हम वक्त का दामन थाम कर अतीत में लौटें, तो फिल्म संगीत की वादियों में गूंजने वाली एक जानी पहचानी सी मीठी और मधुर आवाज बरबस ही हमारा ध्यान खींच लेती है। कभी सेल्यूलॉइड के पर्दे के उस पार से, कभी स्टेज, कभी रेडियो और कभी टीवी के जरिए हवाओं पर सवार होकर ये आवाज आपको आवाज देने पहुंचती रही है। जी हाँ दोस्तों, हम जिक्र कर रहे हैं गायिका कमल बारोट का, जो आज हमारे साथ इस प्रोग्राम की मेहमान है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विविध भारती के स्टूडियो में। कमल बारोट जी, बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
2: सुनने वालों को कमल बारोट का प्यार भरा नमस्कार।
1: वाह, आपकी आवाज में वाकई इतना प्यार घुला है, इतनी मिठास घुली है कि वो
2: आपकी जरा नवाजी है, आपका प्यार है।
1: लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता और मैं सच बोल रहा हूँ, ये दिल की आवाज है कि वो प्यार जो है पहुंच गया हमारे सुनने वालों तक। अब कमल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपकी संगीत यात्रा जो है वो कब, कैसे और कहां से शुरू हुई?
2: देखिए, मेरा जन्म तो हुआ ईस्ट अफ्रीका में, टेंजानिया में, और बचपन से ही पिताजी को संगीत का, घर में संगीत का माहौल था, ऐसे समझ लीजिए। मेरी माताजी भी गाती थी, पिताजी दिलरुबा बजाते थे और घर में महफिल सजती थी। हालांकि क्लासिकल महफिल होती थी जहाँ से मैं भाग जाती थी, क्योंकि मुझे उस वक्त क्लासिकल म्यूजिक से इतना, बहुत छोटी थी मैं, एक लगाव नहीं था। तो वो कहते हैं ना, वो माहौल तो बचपन से ही मिला था। और जब मैं कॉलेज के लिए हिंदुस्तान आई तो सोफिया कॉलेज में सब लड़कियों को पकड़ के मैं कहती थी मेरा गाना सुनो ज़बरदस्ती, क्योंकि सीखा नहीं था कुछ, सारे गमा का कुछ पता ही नहीं था, तो ऐसे गाती थी। और उसमें से मैं साइगल मेमोरियल कॉन्टेस्ट के लिए चली गई, लड़कियों ने मेरा फॉर्म भर के, और वो मैं कॉन्टेस्ट जीती, और वहाँ से एक किस्म से ये यात्रा शुरू हुई।

0: अच्छा, तो यानी ये हम माने कि जैसे किसी को मंत्र दीक्षा दी जाती ना कान में हौले से,
1: जी
0: तो
1: जी
0: वैसे ही संगीत की पहली जो दीक्षा थी मंत्रों की, वो तो आपको घर में ही मिल
1: घर में
0: चुकी
1: ही
0: थी।
1: मिली, बिल्कुल सही।
0: लेकिन बाद में उसका जो सफर है थोड़ा सा और आगे जाकर के शुरू
1: जी
0: हुआ।
1: जी
0: अच्छा,
1: जी
0: लेकिन कहते हैं कि यदि संगीत के क्षेत्र में आपको गुरु मिल जाए
1: जी
0: तो आपकी ये जो यात्रा है या जो भी विद्या आप सीखना चाहते हैं उसमें और अच्छाइयाँ आ जाती हैं। तो संगीत में आपके भी कोई गुरु रहे?
1: जी मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब थोड़ा सा रेडियो पे मेरा गाना बजा और कहते हैं ना, पता चला कि ये कॉन्टेस्ट जीती है, तो बहुत जगह से लोगों ने बुलाना शुरू किया। और कहते हैं ना, पब्लिक आई में किस्म से आना। तो कल्याण जी आनंद जी हमारे फैमिली फ्रेंड थे और उनका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, कल्याण जी आनंद जी नाइट। और इतना बड़ा ये प्रोग्राम हुआ था कि रंग भवन में ये प्रोग्राम हुआ था, तो मेट्रो तक, कहते हैं ना, गाड़ियों की और लोगों की उस जमाने में क्यू थी। उस प्रोग्राम में मुझे मुकेश जी के साथ गाने का मौका मिल
0: अच्छा
1: गया, और
0: जी,
1: लता जी भी वहाँ थी और उन्होंने ये कार्यक्रम सुना। और बाद में उन्होंने कहा कि सेवा सदन करके उनकी जो स्कूल थी उनके लिए उन्होंने मुझे ये प्रोग्राम में इनवाइट किया। एंड आई वाज एन आर्डेंट फैन ऑफ लता मंगेशकर। मैं दीदी को इतना चाहती थी कि जब भी मैं आती थी तो उनको मिलने जाती थी। और एक बार ऐसे ही संडे में उनके घर चली गई, तो वो तो जा रही थी कोल्हापुर और कल्याण जी भी आ गए डेट लेने के लिए। और तो उन्होंने कहा, कमल जी को तो सुना है मैंने, इससे गवा लो, ये ड्यूएट गाना है। आप यकीन माने, वहाँ से मैं कल्याण जी भाई की म्यूजिक हॉल पे गई और वहाँ आनंद जी भाई ने मस्ती मजाक में मुझे एक गाना सिखा दिया। दूसरे दिन पता नहीं कैसे रिकॉर्डिंग भी हो गई, रिकॉर्ड भी हो गया, फिल्म थी ओ तेरा क्या कहना, और गाने के बोल थे, दिल लेके जाते हो कहाँ।
0: वाह वाह वाह,
1: तो
0: भाई ऐसा
1: कहाँ से कहाँ ये बात देखिए
0: है,
1: पहुंच
0: आपने
1: गई।
0: जो गाना गाया है दिल लेके जाते हो कहाँ, लेकिन ये एक चीज है कि जब जब इस गाने को हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये गाना वाकई दिल लेके कहीं जा रहा है, तो क्यों ना हम ये
1: ये तो
0: गाना।
1: आप सब लोगों का प्यार है, लेकिन मुझे भी उस वक्त पता नहीं था कि ये गाना इतना पॉपुलर होगा। और यहाँ से एक कसम से फिल्म यात्रा शुरू हुई।
0: ठीक है, हम आगे बातचीत का सिलसिला बढ़ाएंगे, लेकिन ये जो गाना है आपका जो बहुत ही पॉपुलर हुआ और आज भी सदाबहार है, इसके जरिए हम क्यों ना एक बार फिर से अपने सुनने वालों के दिलों को छुएं और उन पर दस्तक दें।
1: सुनाइए।
2: दिल लेके जाते हो कहाँ, हम तो खड़े हैं यहाँ।

0: तो कमल बारोट जी, इस तरह से आपके पार्श्व गायन की शुरुआत हुई
1: जी।
0: लेकिन चूंकि वो पहला गाना था आपका और बड़े संयोग से और अचानक ही आपको वो गाना मिल गया था, तो पहला गाना और पहली सफलता हर आदमी की जिंदगी में बहुत अहम होती है। कैसा आप महसूस कर रही थी और आपको आपके जो सहयोगी कलाकार थे, संगीतकार थे, उन सबका सहयोग कैसा मिला?
1: देखिए, उस जमाने की बात मैं आपको बताऊं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ये जो सिंगर्स थे, ये म्यूजिक डायरेक्टर्स और सिंगर्स, ऐसा लगता था जैसे एक बड़ी हैप्पी फैमिली है। मैं आप बताऊं, मेरा दूसरा गाना लता जी के साथ ही हुआ और म्यूजिक डायरेक्टर वही थे, कल्याण जी आनंद जी। तो जब रिकॉर्डिंग के दिन मैं गई वहाँ, तो जाहिर है कि मैं बहुत ही नर्वस थी, हिंदुस्तान की इतनी बड़ी गायिका के साथ उसी

ना, तो वो देख समझ गई, वैसे सहेली दीदी तो थी, सहेली भी थी, तो कहने लगी देखो कमल, जब मैं जब भी आज इतने सालों के बाद माइक्रोफोन फेस करती हूँ तो मुझे लगता है जैसे मैं, मेरा ही आज इम्तहान का दिन है, और एवरी टाइम मैं गाना गाती हूँ तो वो एक इम्तहान ही लगता है, तो सबके लिए एक ही बात। उन्होंने मेरा माइंड इतना एटीज कर दिया कि वो गाना भी ऐसे हो गया, अकेली मोहे छोड़ना जाना बराबर की लाइनें थी, और म्यूजिक भी, म्यूजिक के हिसाब से भी बहुत अच्छा रहा, पॉपुलरिटी के हिसाब से भी बहुत अच्छा रहा।

0: जहाँ तक हौसला अफजाई की बात है, जैसे अभी आपने बताया कि लता जी ने आपका हौसला बढ़ाया, आपको ढांढस बनाया, इसमें घबराने की कोई बात नहीं
1: जी,
0: है
1: जी।
0: तो ऐसे और भी कलाकार होंगे, गायक गायिकाएं
1: जी। अब आप रफी साहब को ले लो, कितने बड़े महान कलाकार थे, उनके साथ जब गाते थे तो वो भी वही अंदाज से पेश आते थे और माइंड इतना ईज कर लेते थे और माहौल ऐसा बना के रखते थे कि जैसे गाना रिकॉर्ड हो जाता था। मैं अपने आप को बड़ी खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैंने तकरीबन सभी बड़े बड़े कलाकारों के साथ गाना गाया है और मेरे साथ बहुत अच्छी तरह ये पेश आए हैं।
0: कमल जी, आप जिस जमाने का जिक्र कर रही हैं, कुछ देर के लिए हम भी उसी जमाने की तरफ जाना चाहते हैं। आज सब कुछ बदल चुका है। आप जिस जमाने में पार्श्व गायन के क्षेत्र में सक्रिय थी, उस दौर को आप किस रूप में याद करते हैं?
1: एक ऐसा दौर था कि जो गान बनाने वाले जो म्यूजिक डायरेक्टर थे, वो भी जैसे कोई रिसर्च करते हैं ना, वो एक भी डेडिकेटेड म्यूजिक डायरेक्टर्स थे। और जो गाने वाले थे वो भी, अभी मेरा एक गाना हुआ था फिल्म बरसात की रात का गाना था, म्यूजिक डायरेक्टर रोशन थे। आप यकीन माने इतने बड़े वो म्यूजिक डायरेक्टर मुझे रिहर्सल कराने आते थे। हाँ, वो एक दिन नहीं आए, वो मेरे ख्याल में 10-12 दिन आए, क्योंकि कह रहे थे ये राग पर आधारित है गाना और कमल को कुछ छोटी सी ताने भी कहलवानी है, क्योंकि मेरा कोई क्लासिकल म्यूजिक का कोई बैकग्राउंड नहीं था। तो इतनी दिलचस्पी, आप बताइए आज कैसे कौन ले सकता है, समय की का कितना अभाव है कि आज तो गाने मैंने सुना ऐसे बनते हैं कि बहुत इंस्टेंट फूड की तरह बनते हैं। तो वो गानों में बात भी फिर ऐसी आती थी क्योंकि माहौल ही ऐसा था।
0: इतना पेशेंस रखते थे लोग और उसमें और बारीक से बारीक काम जितना तराश सकें।
1: और जो इंग्लिश में कहते हैं ना, पेस भी थोड़ा स्लो था, जिंदगी का पेस मजा था एक, यू नो, जिंदगी का कहते हैं ना, हर चीज में डिस्कशन, वो लेवल पे रिहर्सल, हम लोग पहले रिहर्सल करते थे, फिर रिहर्सल म्यूजिक हॉल में रिहर्सल हुआ करती थी, फिर स्टूडियो में जाते थे, फिर वहाँ म्यूजिशियन के साथ पूरा गाना खड़ा रह के गाना।
0: रिहर्सल फाइनल रिकॉर्डिंग से पहले का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है।
1: जी जी।
0: तो उस जमाने में आप लोग कितने घंटे रिहर्सल किया करते थे, कितने दिन तक? हालांकि आपने थोड़ा सा इसका संकेत दिया है, एक गाने के बारे में बताया है
1: जी। कोई गाने ऐसे होते थे जैसे अभी मैंने बताया, वैसे तो उसमें मैंने सुना है लता दीदी भी रिहर्सल के लिए जाया करती थी, जैसे हमारे एक म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे सज्जाद करके, वो बहुत

0: कड़क माने जाते थे और उनको बड़े बड़े सिंगरों को मंझे हुए आर्टिस्ट को भी जब रिहर्सल की जरूरत पड़ती थी तो मैं तो एकदम नई थी, मैं तो चाहती थी कि मुझे रिहर्सल कराएं और रिहर्सल होता था, बकायदा होता था।
1: तो चलिए इसी बात पर एक अब हम रिहर्सल रूम से बाहर आते हैं और एक आपकी पसंद का और गाना सुनते हैं। आप बताइए कौन सा गाना सुनवा रहे हैं
0: अभी? आप सुनिए फिल्म घराना का गाना सुनिए, दादी अम्मा मां।

0: दादी अम्मा दादी अम्मा मान जो। भाई कमल जी, आपने इस बहाने इस गीत के जरिए दादी अम्मा को मनाने का एक सूत्र जो है वो
1: जी,
0: बहुत सारे लोगों के हाथ में पकड़ा दिया कि अगर दादी माँ रूठी है तो ये
1: तो
0: गाना
1: कैसे मनाया जाए उनको, है कि नहीं?
0: सुना। इस गाने से जुड़ा कोई रोचक वाक्या हो तो बताइए।
1: नहीं, क्या हुआ, जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ तो आपको जैसे मैंने बताया, आशा मेरी बहुत अच्छी सहेली है, रिहर्सल के लिए साथ में गए थे, तो मैंने ऐसे रास्ते मज़ेदार एक वाकया सुनाती हूँ। मैंने कहा देख मुझे मंडी जाना है, अपना अहमदाबाद में एक कॉलेज का फंक्शन है। तो कहती है तेरे साथ कौन चल रहा है, हम लोग ऐसे ही बात करते हैं। तो मैंने कहा मैं अकेली जा रही हूँ, मेरे साथ शायद कोई फैमिली मेंबर चलेगा, मैं चलूँ? मैं कहा तू कैसे चल सकती है, तू तो इतनी मशहूर सिंगर है, तुझे सब पहचानेंगे। कहने लगी नहीं चलते, मजा आएगा, मैं कोकिला बहन बन के आऊंगी। यकीन मानो मेरे साथ आई, उस जब इतनी बड़ी कॉलेज में फंक्शन में मैं गा रही हूँ, मेरी किताबें लेके बैठी हैं। अब बोली आज कैसे, ये माहौल कैसा था, है कि नहीं मजेदार? और किसी ने पहचाना भी नहीं, वो ऐसे ही चुपचाप बैठी रही, मुझे हंसी भी आए और मुझे बोलती रहती चुप बोलो बोलो मत। तो उतने में गुजरात के बड़े मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर अविनाश व्यास आए और उन्होंने देख के बोले आशा तुम यहाँ? फौरन प्रिंसिपल कॉलेज।

0: स्टूडेंट सबको पता लग गया आशा भोसले बैठी है, बड़ा मजा आया। लेकिन ये आजकल मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है।
1: और आपकी ये दोस्ती
0: अभी भी कायम है? जी हाँ।
1: तो अब जब आप आती हैं तो मिलती हैं अपने पुराने दोस्तों से, जो मतलब जो भी आते हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल, वही हमारे वही ग्रुप है बस जिसके साथ ये यात्रा शुरू की थी, बिल्कुल अभी तक वही फ्रेंडशिप है। बहुत अच्छे लोग हैं, मुश्किल से जिंदगी में अच्छी कहते हैं ना मित्रता मिलती है।
1: कमल जी, मैं समझता हूँ कि मातृभाषा तो आपकी गुजराती है
0: जी,
1: लेकिन अभी तक जो हम बात कर रहे हैं वो हिंदी गानों की बात हो रही है, तो हिंदी से हटकर भी आपने दूसरी भाषाओं की फिल्मों के लिए गीत गाए?
0: जी, मैंने गुजराती फिल्म के लिए गाना गाया, फिर अपना भोजपुरी, पंजाबी, और गुजराती फिल्म के लिए तो मुझे गुजरात गवर्नमेंट का 2 साल के लिए बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर्स का अवार्ड मिला।
1: अच्छा
0: जी हाँ। फिल्म बनी थी लीलूड़ी धरती, फर्स्ट टेक्निकलर फिल्म इन गुजराती, जिसका म्यूजिक पुरुषोत्तम उपाध्याय ने दिया था, और उसका एक गाना था, मारू नाम पाड़ियों छे संतूरंगीली। अब ये गाना जब बजता था तो कहते हैं लोग कॉइन फेंकते थे, इतना मशहूर हुआ था ये गाना।
1: लेकिन एक चीज है जी, आपने तो हमारी प्यास जगा दी और अधूरी दी, आपने सिर्फ एक लाइन गुनगुनाई है। अच्छा, वैसे बहुत अच्छा लगा,
0: अच्छा लगा
1: और बहुत देखिए ऐसा है कि मीठी और मधुर आवाज वो कहीं भी गूंजे वो गानों में रस हमेशा खुलेगी। कमल जी, ऐसा कहते हैं कि गीतकार के शब्द, संगीतकार की अच्छी धुन, गायक गायिका की आवाज जो है एक गीत को अच्छा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है, आप इस बारे में क्या कहेंगे?
0: नहीं, बिल्कुल सही फरमाया आपने, क्योंकि क्या होता है कि जब सिचुएशन के मुताबिक कवि लिखता है तो म्यूजिक डायरेक्टर उसको सोच समझ के कि भाई ये शब्द कैसे हैं, अगर उसमें पैथोस हैं तो ऐसे रागों का इस्तेमाल होता है जो उन चीज़ों को उभार के ला सके, और जब फिर वो गाना बन जाता है तो वो कलाकार के सामने रखा जाता है, फीमेल प्लेबैक सिंगर के सामने या मेल प्लेबैक सिंगर के सामने, और वो फिर समझ के इसको अपनी एक ऐसी अनोखी अदा से गाता है कि वो जिस अंदाज से गाना लिखा गया है उसका मकसद पूरा होता है, और ये आना चाहिए तभी आके गाने की सफलता हो सकती है।
1: तो जब आपने गायन के क्षेत्र में कदम रखा, रियाज कितने घंटे किया करती थी?
0: अच्छा, शुरू में क्या हुआ था कि मेरा कोई रियाज नहीं था, मेरी एक रो आवाज थी, और शायद वो क्वालिटी की क्लियर कट आवाज है, एकदम सीधी सादी आवाज है, उसमें कोई वो बात नहीं थी। तो मुझे कहा गया कि आप अभी उसमें कुछ गुरु से शिक्षा लो, तो मेरे पहले गुरु थे अब्दुल रहमान खान साहब, उनसे थोड़े दिन सीखने के बाद पंडित लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले आए, उन्होंने कण मुरक का एक अभ्यास कराया कि जो आवाज़ कैसे मुलायम होती है, उसमें लोच कैसे आती है, ये सारी बातें बताई। उसके बाद आए ताज अहमद खान साहब, जो कि गज़लों के बड़े माहिर थे, और कल्याण जीवे का कहना ऐसा था वो मेरे रियाज में बहुत दिलचस्पी लेते थे, क्योंकि उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था फिल्म लाइन में, तो वो कहते थे कि हमें क्लासिकल सिंगर पूरा नहीं बनना है तो इस टाइप की सिंगिंग के लिए एक खास रियाज चाहिए, तो कभी कभी मेरे रियाज में आके वो बैठते थे। तो ताज अहमद खान साहब ने मुझे वो बात सिखाई, और इन ये सब, और उसके बाद एक गुरु आए थे, उन्होंने भी बहुत मेहनत की मेरे पे, खान साहब गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब, तो इन सब के आशीर्वाद से जो कुछ पाया हमने वो आपके सामने हाजिर है। मेरा एक गाना ऐसे आया था कि मैं शाम को गेस्ट्स को एंटरटेन कर रही थी, और इन दत्ता साहब का मैसेंजर आ गया कि भाई आप रात को 7 बजे एक गाना होने वाला है, फिल्म बादशाह का, गाना भी बहुत अच्छा था, आशा जी गाने वाली थी।
1: अच्छा।
0: वो भी जानती हैं, उनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो गाना तो उनको दूसरे दिन पिक्चराइज करना था, तो क्या है कि ऐसा है कि जैसे एग्जाम के लिए आप हर वक्त तैयार रहो, वो मूड भी बना लो, वो आवाज़ भी अच्छी रखो, वो म्यूजिक डायरेक्टर के गाइडलाइन में आप गाओ, और ये सब बातों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता था। वो गाना हुआ, आज हमको हंसाए ना कोई, आज रोने को जी चाहता है, और ये गाना मैं यहाँ इसका स्पेशल जिक्र करूँगी कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो गई थी, तो आपका ये रेडियो स्टेशन जब कुछ मॉर्निंग पीरियड के बाद गाने बजाता है ना, तो इस गाने से उन्होंने शुरुआत की थी।
1: अब मैं एक सवाल, हालांकि पहले सोचा कि पूछूं ना पूछूं आपसे, लेकिन लग रहा कि पूछ ही लेना चाहिए वो ये कि एक गाने की रिकॉर्डिंग के बाद, एक गाने के लिए आपको मतलब कलाकार को कितने पैसे मिल जाया करते थे?
0: मुझे 300 रुपये मिलते थे उस जमाने में, जब लता जी को 500 या 600 मिलते थे तो हमको आधे मिलते थे, और बड़ी

0: खुशी से हम ले लेते थे। और कभी कभी तो ऐसा भी इंसिडेंट हुआ है, अब ये आपको ताज्जुब होगा कि गाना हो गया, एक मेरा और आशा का ड्यूट था, और मैंने ड्यूट्स ज़्यादा गाए हैं, तो हम लोग बाहर आ गए, पैसे वैसे कुछ नहीं लिए, तो बेचारे वो प्रोड्यूसर भागे भागे आए, दोनों के हाथ में एक एक लिफाफा दे दिया और कहा कि कुछ नहीं है आपका, बस कहते ना पेट्रोल मनी है ना, हम उससे हमें कोई खेद होता था ना खुशी इतनी कि भाई हमको क्यों कम पैसे दिए गए। आई थिंक पैसों का इतना उस जमाने में नहीं, अहमियत इतनी नहीं थी बनिस्बत के गाना अच्छा मिले।
1: ये एक जो सेटिस्फेक्शन, जो क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन की जिसकी हम
0: जी
1: बात करें,
0: जी
1: मैं समझता हूँ कि हर कलाकार, मैं आप ही क्या, सभी के मन में इस
0: सबके
1: किस्म की
0: सबके
1: चीज
0: दिल
1: हुआ
0: में ये बात
1: करती थी।
0: होती है।
1: तो आपने अंदाजन कितने गीत गाए होंगे?
0: मैंने तकरीबन 300 फिल्मों में गाने गाए हैं
1: और मेजर ब्रेक जिस फिल्म के हिसाब से आपको मिला वो कौन सी थी?
0: जी। सबसे पहले तो मेरे ख्याल में मेरा पारस मणि का हंसता हुआ नूरानी चेहरा बड़ा कहते हैं ना टॉप पे रहा काफी दिनों
1: जी
0: तक, और यही नहीं जहाँ भी मैं गई मुझे इस गाने से लोगों ने बड़ा पहचाना। जैसे लंदन गई मैं, हॉलैंड गई, ईस्ट अफ्रीका गई, जिम्बाब्वे गई, तो कहते थे आपका ये गाना तो रेडियो स्टेशन से हमेशा बजता है।
1: और चूंकि आपने कहा है कि आपने डुएट बहुत ज्यादा गाए हैं, ये
0: जी
1: गाना भी बहुत पॉपुलर हुआ है और रेडियो से भी बजता रहा है, तो
0: जी
1: आज एक बार फिर से क्यों ना रेडियो से
0: जरूर सुनाइए।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब, उन्होंने भी बहुत लंबी पारी के लिए और आज भी उनकी पारी चल रही है, उनके साथ आपने कितनी फिल्में अंदाजन की होंगी?
1: उनके साथ भी मैंने काफी गाने गाए हैं और पारसमणि का गाना है उसके बारे में ये कहूँ कि फिल्म भी म्यूजिक की वजह से इतनी सुपर हिट रही कि लक्ष्मी भाई ने अपने बंगलों का नाम भी पारसमणि रखा है।

0: वाह, तो देखिए उस जमाने का तो ये था कि टीवी उतना पॉपुलर हुआ नहीं था, लोग फिल्मों से जब फिल्में देखते थे तब गाने देख लिया करते थे और सुन लिया
1: बाद में
0: करते थे,
1: रेडियो पे सुनते थे।
0: बाद में रेडियो पे सुना
1: जी
0: करते थे। तो वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप क्या कहेंगे, फिल्म म्यूजिक को पॉपुलर करने में, लोकप्रिय बनाने में रेडियो का कितना हाथ रहा?
1: बहुत बड़ा हाथ, मैं कहती हूँ बहुत बड़ा हाथ। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं इतनी खुशकिस्मत थी कि रेडियो के जरिए मुझे लोगों ने, मुझे एक इंस्टेंट पहचान मिल गई। कैसे? जब मैंने ये आपको शुरू में जिक्र किया कि मैं सैगल मेमोरियल कॉन्टेस्ट के द्वारा आई, तो एक प्रोग्राम हुआ करता था फुलवारी करके, अपने पड़ोसी देश का रेडियो था वो। और उस प्रोग्राम में मुझे सुधा मल्होत्रा को और महेंद्र कपूर को, बाल गोविंद श्रीवास्तव जी वो किया करते थे प्रोग्राम, और उसमें हमें बुला के उन्होंने काफ़ी गवाया और हमारा नाम, कहते हैं ना, रेडियो के जरिए बहुत ही मशहूर हो गया। फिल्मों का तो प्रवेश बाद में हुआ, बट पहले रेडियो ने हमें ये
0: मौका
1: पॉपुलैरिटी दी।
0: दिया
1: हाँ,
0: जी।
1: तो रेडियो तो हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखता है।
0: आप वाकई गायिका बनना चाहती थी या कुछ और?
1: एक्सीडेंटली हो गई। नहीं, गाने का शौक था, लेकिन मैंने पहले जैसे बताया कि अगर मैं गायिका बनना चाहती तो मैं पूरी तैयारी करके आती, लेकिन मैंने ना, तो मेरे पास कोई क्लासिकल तालीम थी, कुछ ऐसा नहीं था। और जब छोटे होते हैं तो इंसान के ड्रीम्स होते हैं, डॉक्टर बनेंगे, लॉयर्स बनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मेरी ज़िंदगी में शायद गायिका बनना था, और हिंदुस्तान के लोगों ने बहुत प्यार दिया। मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि मैं बन गई और बहुत ढेर सारा प्यार मिला।
0: पछतावा तो
1: है?
0: नहीं होता ना?
1: बिल्कुल नहीं।
0: तो
1: बिल्कुल नहीं।
0: और अगर दोबारा आपको जन्म लेने का मौका मिल जाए क्या बनना चाहेंगे
1: अब तो मैं पूरी तरह से कहूंगी कि मैं पार्श्व गायिका या गायिका बनूंगी।
0: अच्छा, आज जबकि सक्रिय पार्श्व गायन से, प्लेबैक सिंगिंग से आप करीब करीब संन्यास ले चुकी
1: जी,
0: हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि संगीत से अब किस रूप में आप जुड़ी हैं, क्या कर रही हैं इन दिनों?
1: मैं बैठ तो नहीं सकती। जरूर, मुझे स्टेज से बड़ा लगाव है। मेरी जिंदगी की शुरुआत स्टेज से हुई, फिर अपना रेडियो आया, फिर फिल्में आई। मेरी एक कंपनी है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, और उसके तहत मैंने मराठी सीरियल्स बनाई हैं। पहले मैंने लाइफ मेंबर बनाई, चिरंजीव बनाई, और उसके बाद हद पार, और उसमें सब में मैंने थॉट प्रोवोकिंग सब्जेक्ट्स लिए हैं, और सबको, तीसरी वाली को तो यहाँ के गवर्नमेंट ने बेस्ट श्रेष्ठ सीरियल का अवार्ड दिया है। और आजकल मैं बना रही हूँ नई जावाई शोध।
0: तो कैसा काम चल रहा है ये वाला?
1: अच्छा चल रहा है, अभी मैंने पायलट सबमिट किया है और अच्छी कहानी है।
0: लेकिन ये संगीत का मामला एकदम अलग है और ये एकदम अलग, इस फील्ड में मजा आ रहा है आपको?
1: हाँ, आपको बताऊँ, मेरा जो भाई है ना, वो डायरेक्टर है, चंद्रा बारोट, जिन्होंने डॉन बनाई थी। और वो आजकल जब भी मैं बाहर से आती हूँ तो कहता है कि दीदी, आप अपने पुराने गानों का आजकल कुछ रीमिक्स ऐसा कुछ करते हैं। अभी तक मैंने उस पर बड़ा ध्यान नहीं दिया है कि एक गाना मेरा HMV का बहुत ही मशहूर हुआ था, हम तुम्हें तो कभी ना भूलेंगे, और इसकी भी एक मजेदार कहानी है। जब ये
0: सुनाइए।
1: गाना रिकॉर्ड हो रहा था तो किशोर देसाई ने इसको स्वरबद्ध किया है, हसरत जयपुरी ने लिखा है। और इस गाने में आजकल जो मशहूर जो संतूर बजाते हैं ना, शिव कुमार
0: जी
1: शर्मा, वो नए नए आए थे कश्मीर से ये इंस्ट्रूमेंट लेके, तो इन्होंने संतूर बजाया है, रामनारायण जी ने सरंगी बजाई है, और मेरी रिकॉर्डिंग के टाइम पे श्री रामचंद्र जी भी आए थे। और ये गाना भी लोगों ने बहुत पसंद

0: कमल बारोड़ जी, पूरी दुनिया में फिल्में बनती हैं
1: जी।
0: आप तो पूरी दुनिया घूम चुकी
1: जी
0: हैं। और फिल्मों में गीत संगीत एक बहुत ही अहम पक्ष होता है, लेकिन हमारी भारतीय फिल्में जो हैं वो जरा अलग हट करके हैं, उनकी क्या खासियत है?
1: देखिए, हमारा जो देश है ना, मैं ऐसे देखती हूँ कि बहुत रिच है कल्चर में, हेरिटेज में। फोकलोर हमारा ले लो, हमारी संस्कृति ले लो, हमारी भाषाएं ले लो अलग अलग प्रांत की। और आप अगर संगीत देखो डिफरेंट डिफरेंट जगह का, गुजरात का ले लो, साउथ का ले लो, आप नॉर्थ, इवन कश्मीरी म्यूजिक में एक बात है हर जगह की। तो मैं समझती हूँ हमारा संगीत बहुत रिच है, और इसी वजह से मैं जहाँ भी जाती हूँ हमारा संगीत सब जगह सुना जाता है। कुछ तो कशिश है उसमें। मेरा एक ऐसा एक इंसिडेंट आया लाइफ में कि मैं 60s में, मैंने जैसे कहते हैं ना गोपी कृष्णा और सितारा दीदी को प्रेजेंट किया अफ्रीका में, 70s में मैं पाकिस्तान जाके मेहदी साहब को यहाँ ले आई। और उस जमाने में इतना हंगामा बॉम्बे में हुआ, तो जो भी अभी जानते हैं कि एक ऐसा दौर आया था कि सब गजल सुनते थे और मेहदी साहब के दीवाने थे। पहला शो हमने लता जी के हाथ से ओपन कराया था, दूसरा शो हमने राज कपूर साहब और नौशाद साहब के हाथ से कराया था। और मैं ये कोई कहना नहीं चाहूँगी, लेकिन उसके बाद हिंदुस्तान में ऐसा गजलों का एक दौर शुरू हुआ कि बहुत सारे नाम उभर आए और अभी तक वो दौर चला।
0: कम से कम एक अच्छी शुरुआत जो भी करता है और उसका कोई अनुसरण करता है तो
1: अच्छी बात है ना। और मुझे, मैं इतनी खुशकिस्मत रही कि इस दौरान जब मैं लाहौर गई तो वहाँ के ये मायने मेरे चार गाने किए, और मुझे मशहूर शायर का कलाम गाने का मौका मिला, जैसे फैज़ अहमद फैज़, नदीम कासमी, अली रजा और अहमद फराज। यहाँ मैं चाहूँगी कि ये मेरे पति देव का भी बड़ा पसंदीदा गाना है, आप जरूर सुनवाइए। फैज़ अहमद फैज़ की रचना और बोल है, आज यूं मौज दर मौज गम थम गया।

0: कमल बारोड़ जी, आपने बहुत सारे गीतकारों की रचनाएं गाई हैं, लेकिन किस गीतकार से आप सबसे ज्यादा प्रभावित हुई?
1: इंदिवर जी से। इंदिवर जी बहुत ही अच्छा लिखते थे और फिल्मों के लिए तो लिखते ही थे, लेकिन जब हम ऐसे प्राइवेट महफिल में बैठते थे या कहीं कहीं डिनर में मिलते थे तो हम इंदिवर जी को कहते थे, आप फिल्मी कविताएं सब छोड़ो, ये गाने छोड़ो, आप अपनी जो खास चीज़ें आपने लिखी जो छुपा के रखी हैं वो कविराज निकालिए और हमें सुनाइए। और वो आप तजुब करेंगे, ऐसी ऐसी रचनाएं हमें सुनाते थे कि हमारी तो शाम बन जाती थी। बहुत अच्छा लिखते थे और बहुत पढ़ते थे, उनके पास इतनी बड़ी लाइब्रेरी है और उसमें इतनी सारी किताबें रखी हैं, तो फिल्मी गीत तो बहुत सहजता से अच्छे बोल लाके वो जो कहना सिचुएशन कहना चाहती थी वो कह पाते थे, लेकिन उनके प्राइवेट कलेक्शन में भी उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हैं।
0: मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या खाली वक्त में, भाई संगीत का तो आनंद आदमी कभी भी ले सकता है, खाली वक्त में जब आपको मौका मिलता है तब आप किस तरह का संगीत सुनना पसंद करती हैं?
1: मुझे थोड़ा क्लासिकल बेस वाला संगीत हमेशा पसंद है और इसीलिए मैं गज़लों को ज़्यादा सुनती हूँ। अच्छा, गीतनुमा गज़लें लाइट सुनने के लिए ठीक रहती हैं, लेकिन जिसको गज़ल कहा जाए उसमें जब तक कुछ मुश्किल थोड़ी बातें ऐसी ना हो, बोलों की भी सुंदरता हो, रागों का भी उसमें जो ढलना प्रॉपर हो, तो वो मैं घंटों सुन सकती हूँ, वो मुझे बहुत आनंद देता है।
0: ये बात तो सही है कि अच्छा संगीत इंसान घंटों सुन सकता है और तृप्ति नहीं होती, और इसीलिए अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी पसंद का एक और बढ़िया सा गीत आप हमारे सुनने वालों की नजर करें।
1: आनंद जी भाई ने मेरे लिए चार खास गाने कंपोज किए थे, इंदिवर जी ने लिखे थे, और उसमें से एक गाना सुनाना चाहूंगी, प्यार भरा दिल तोड़ गए।

0: कमल बारोट जी, आपने बहुत सारे संगीतकारों के निर्देशन में गीत गाए हैं, तो कोई रोचक संस्मरण आपको याद आता है?
1: कभी कभी हम 3-4 गाने भी दिन में रिकॉर्ड करते थे। मेरी भी जिंदगी में ऐसा हुआ है कि मैं भी इतनी मतलब लोग कहते हैं हमने 7 गाने गाए, 10 गाने गाए, लेकिन मैंने एक बार 4 गाने गाए थे, तो 2 गाने एक तरफ था, फिर जब शाम को आके 2 गाने यहाँ किए, और एक गाना ऐसा था जिसमें हम लता जी, रफ़ी साहब थे, मुकेश जी थे और मैं, फिल्म थी मैं शादी करने चला, अपने म्यूजिक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो गाने का माहौल इतना सुंदर हुआ था और इतने एक ही साथ सब सिंगर्स के साथ, मैं कभी भूल नहीं सकती वो। और मुकेश जी का तो ऐसा था, मुझे बहुत छेड़ते थे और मुझे कहते थे कि, अभी पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहते थे कि हमारी इंडस्ट्री में कम खूबसूरत सिंगर्स हैं, उसमें से कमल जी है। मेरा चेहरा लाल हो जाता था और हमेशा छेड़ते रहे। बहुत अच्छे इंसान थे, जितने अच्छे गायक थे उतने ही अच्छे वो इंसान थे।
0: शुरू में आपने जिक्र किया स्टेज का
1: जी,
0: कि आपने बहुत सारे आर्टिस्ट, हालांकि बहुत नामी गिरामी आर्टिस्ट हैं, लेकिन स्टेज पर उनको इंट्रोड्यूस करने की परंपरा भी आपने शुरू की
1: जी।
0: तो ये सिलसिला अंदाजन कितने सालों से चल रहा है और क्या अभी भी आप?
1: 30-35 साल से चल रहा है भैया। मैं मॉरिशस गई थी तब, मैं कहते हैं ना कि बहुत ही छोटी थी, लेकिन उस जमाने में हमने 60 शोज किए। और आज लोग जो मॉरिशस जाते हैं विजिट करते हैं, उनको पता है कि इतना छोटा आइलैंड है, 40 माइल्स लॉन्ग आइलैंड है। और उस जमाने में छोटे छोटे छोटी छोटी जगहों में जाके हमने शो किया था, लेकिन एक था कि नहीं इंडियन और क्लासिकल सब डांस और पाए का शो, ये नहीं कि ऐसे कुछ एंटरटेन करने के लिए शो बना दिया। बाकायदा 6-6 महीने शो की तैयारियां होती थी।
0: अच्छा।
1: आजकल का शो और उस जमाने का शो में ये फर्क है। आज क्या होता है कि आर्टिस्ट खुद स्टेज पे आके डांस करते हैं, उस जमाने में हीरोइन नहीं आती थी, तो हमें वो आर्टिस्ट स्टेज के पसंद करके रिहर्सल करा के फिर उसी पॉपुलर गाने की रिहर्सल उन पे करा के वो गाने हम वहाँ पेश करते थे।
0: तो हम ये कह लें कि आप हमारे सांस्कृतिक दूत का काम बरसों से कर रही हैं।
1: तो बड़ी अच्छी बात कही आपने।
0: इंडियन म्यूजिक को, इंडियन आर्ट को,
1: कोशिश कर रही है।
0: तो अंदाजन कितने मुल्क आप घूम चुके होंगे, कौन कौन से मेजर जो कंट्रीज हैं?
1: जी मैं इंग्लैंड बहुत सारे शो हमने किए हैं, फिर हम हॉलैंड गए हैं, फिर हम जिम्बाब्वे गए हैं, ईस्ट अफ्रीका में हमने शो किए हैं, मॉरिशस में किए हैं, हिंदुस्तान में सब जगह किए हैं। तो ये तो चालू है, अभी भी बात चल रही है, शायद हम ईस्ट अफ्रीका जाएं कोई अच्छे कलाकार के साथ।
0: कैसे रिस्पांस रहता है लोगों का?
1: बहुत अच्छा रहता है। और वो जो स्टेज का जो एक ओवेशन है ना, मैंने आपको बताया कि मैं आशा जी को 78 में आरडी बर्मन और आशा जी को लेके गई थी, और उस जमाने में पहली बार हमने ये प्रयोग किया था मेरे पति देव ने कि हम लाइटिंग के साथ, उस वक्त नया नया था ये सब, आजकल तो कहाँ बात लेजर और सब पहुँच गई है। हमने इतना अच्छा शो बनाया था कि उस वक्त वहाँ पे हिंदुस्तान के जो फिल्मी इंडस्ट्री के नामी लोग हैं वो शूटिंग के लिए वहाँ आए हुए थे और सब शो में आए आशा जी का। और यश चोपड़ा ने मेरे पति देव को कहा था कि आपने तो पोएट्री खड़ी कर दी स्टेज पे, आई थिंक इट वॉज अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट। तो ये एक नशा है, स्टेज का एक नशा है अच्छी चीज पेश करने का। और आरडी भी कह रहे थे कि इट्स हैपनिंग ऑन द स्टेज, यू नो।
0: कमल जी, अभी आपने अपने पति का जिक्र किया, मैं जानना चाह रहा हूं कि जीवन साथी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है जिंदगी में, और खास तौर से जब वो कलाकार हो तो वो ऐसे ही जीवन साथी चाहता है कि जो उसकी कला को समझे और उसको कदम कदम पर उस तरह का सपोर्ट करे कि वो जिस फील्ड में उसमें और आगे जा सके।
1: मैं बहुत लकी रही हूँ, उन्होंने हमेशा मेरी जो विश है उनको सराहा है, और इसीलिए मैं ज़्यादातर 6 महीना यहाँ 6 महीने वहाँ रहती हूँ। इसका यही कारण है कि वो कहते हैं कि तुम एक कलाकार हो और तुम ज़्यादा दिन बाहर नहीं रह सकती हो। उन्होंने 15 साल तो मेरे साथ रहे कि हमने सारी ये कहते ना हमारी एक्टिविटीज़ रखी, और अभी भी वो कहते हैं कि जहाँ तुम्हारी खुशी वहाँ मेरी खुशी।
0: अब ये मुझे बताइए कि संगीत तो आपका पहला शौक हो गया
1: जी,
0: उसके बाद में दूसरे शौक और कौन कौन से हैं?
1: बहुत सारे हैं, मैं पढ़ती बहुत हूँ।
0: अच्छा।
1: और बचपन में तो मुझे तैरने का बड़ा शौक था, और कुकिंग का इतना शौक नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बना लेती हूँ मैं तो समझे ना आप। तो और कुछ बनाने का, कुछ कहते हैं ना क्रिएशन का शौक है, स्टेज पे करूं मैं या स्मॉल स्क्रीन पे करूं या खुद गाऊं। अगर आवाज साथ नहीं देती है तो मैं फिर ऐसी प्रवृत्ति में रहती हूं कि जहां मेरे मन को एक कहते ना

0: खाना मिले।
1: तो ये बताइए मुझे, आपने अपनी बातचीत में जिक्र किया बार बार ईस्ट अफ्रीका का,
0: जी
1: तो वहाँ कौन सी जगह जहाँ आपका बचपन बीता, क्या पैदाइश आपकी वहीं की है?
0: जी मैं दार इस्लाम की रहने वाली हूँ, और आपको बताऊँ कि दार इस्लाम इतनी खूबसूरत जगह है कि लोग टहिटी बहामास छुट्टियों में जाते हैं ना, और हमारी वहाँ का जो हमारा समुद्र है नीला पानी सफेद रेत पाम ट्रीज एक किस्म से स्वर्ग है, वो इतनी खूबसूरत जगह है।
1: कमल जी फिल्मों में तो आपने गाया ही, लेकिन पार्श्व गायन से हट करके गैर फिल्मी रचनाएं भी गाई होंगी, उनके बारे में बताइए।
0: बहुत सारे गाने गाए हैं मैंने, पहले तो यहाँ मैं ये जिक्र करूँगी कि मेरा पहला LP म्यूजिक इंडिया ने किया था, वो पुरुषोत्तम उपाध्याय ने बनाया था, और वो LP का नाम था झनकार, उसमें 8 रचनाएं थी। और दूसरा मैंने थोड़े कुछ 8 साल पहले एक एल्बम निकाला था आदाब, जो शेखर सेन ने म्यूजिक दिया था, उसकी एक रचना आप सुनाइए। और बोल है निगाहें नीची किए

0: कमल जी, जिंदगी में पुरस्कारों का और प्रोत्साहन का बहुत महत्व होता है, वाहवाही का, शाबाशी का, इन सब के अपने अपने महत्व हैं। तो आपको पुरस्कार भी मिले होंगे और उपलब्धियां भी रही होंगी जिंदगी में,
1: ढेर सारे मिले हैं, बहुत खुशकिस्मत।

0: मेरे ख्याल में गलत व्यक्ति को इन्होंने दे दिया है, लेकिन मिला जरूर है मुझे। अच्छा। मैं 5 साल की थी तब मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। जब मैं दार इस्लाम में थी तो मुझे गोल्ड मेडल मिला था, फिर मैं जब यहाँ आई तो मुझे साइकिल कॉन्टेस्ट में मुझे बड़ी शील्ड मिली और वो भी एक किस्म का प्राइज था। फिर सुरसिंगार संसद की तरफ से फिल्म तानसेन बनी थी, जिसमें मैंने महेंद्र कपूर के साथ एक क्लासिकल ड्यूएट गाया था, उसके लिए मुझे एक ट्रॉफी मिली थी। और लीलूड़ी धरती के लिए मुझे गुजरात गवर्नमेंट का 2 consecutive years बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला।
1: अब चूंकि ये प्रोग्राम का आखिरी पड़ाव आ चुका है
0: जी,
1: आप क्या कहना चाहेंगी, कोई बात मन में रह गई हो जो आप हमारे सुनने वालों से कहना चाहती हैं?
0: जी, मैं जरूर ये कहना चाहूंगी कि अवार्ड्स तो लाइफ में मिलते रहते हैं, शायद और भी मिलेंगे आगे, लेकिन सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूंगी कि भाइयों और बहनों, आप मेरे गानों को सुनिए, जैसा पहले आप मुझे प्यार देते थे वैसा ही प्यार अब भी दीजिए, तो शायद कुछ और गाने गाने का मेरा दिल करेगा और आपके सामने मैं वो पेश कर सकूं।
1: क्या बात है, इस वक्त तो आपके किसी गीत में खोने को जी चाहता है।
0: बॉम्बे में जब भी मॉनसून का मौसम होता था, काले काले बादल मुंबई शहर पे आ जाता था, तो आपका रेडियो स्टेशन ये गाना जरूर बजाता था और वो गाना है गरजत बरसत सावन आयो।

0: कमल बारोड़ जी, आपने हमारे इस प्रोग्राम के लिए, सेल्यूलॉइड के सितारे के लिए वक्त दिया और इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत और दिलचस्प बातचीत आपसे हुई, इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और यही शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं आपके प्रति कि जो सक्रियता आपने कला के क्षेत्र में अभी भी बनाए रखी है वो इसी तरह से बनी रहे और इसी तरह से आपको सफलताएं मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपने मुझे आज स्टूडियो में बुलाया, इतना सारा मान दिया, सम्मान दिया, लोगों के सामने फिर से बोलने का मौका दिया, तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद।

सेल्युलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका कमल बारोट से कमल शर्मा की बातचीत। तकनीकी सहयोग था माणिक राव गायकवाड़ का और विविध भारती के लिए इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित।

कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। 11 बजे हैं। कार्यक्रम विवरण लीजिए, सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय।

अब से थोड़ी देर बाद 11:05 पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे दिन में 12 बजे। 12:30 पर आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर। आज के कलाकार होंगे सुजात सिंह खींची एंड पार्टी। दिन में 1 बजे हिंदी में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी जयपुर से रिले करेंगे। ग्रामीण महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा घर आंगन 1:05 पर। चर्चा होगी अपने शौक को उड़ान दे, स्वास्थ्य और तकनीक। दिन में 2 बजे मिड डे न्यूज और 2:15 पर दोपहर समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा तराने नए पुराने, समय रहेगा दिन में 2:30।

शाम 4:58 पर हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी। युवा साथियों का कार्यक्रम होगा युवाणी शाम 5 बजे। चर्चा होगी जीन एडिटिंग तकनीक, इंसानी रोबोट कैसे काम करते हैं, जानकारी दी जाएगी हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी के बारे में। पीएम 15 सूत्री कार्यक्रम में आप जानेंगे विद्यालयीन शिक्षा की उपलब्धता को सुधारना। कार्यक्रम विवरण आप सुनेंगे शाम 5:55 पर। शाम 6 बजे हिंदी में समाचार, 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 6:20 पर संस्कृत में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। देशभक्ति फिल्मी गीत आप सुनेंगे शाम 6:10 पर। शाम 6:30 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार, 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी जयपुर से रिले करेंगे। खेती और गृहस्थी यह कार्यक्रम होगा शाम 7 बजे। चर्चा होगी राष्ट्रीय कृषि बाजार, बच्चों को दे कृषि का ज्ञान, कुटीर उद्योग और किसान। फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा गुलदस्ता रात्रि 8 बजे।

रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे न्यूज एट 9 हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। राजस्थानी लोक संगीत आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर। चर्चा का विषय है कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे, समय रहेगा रात्रि 9:30। शास्त्रीय संगीत का समय रहेगा रात्रि 10 बजे। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में

अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। लीजिए कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए गुलजार के बोलों को अनु मलिक की धुन पर। फिल्म का नाम है जाने मन और आवाज दी है सोनू निगम ने।

आप सुन रहे हैं महबूबा फिल्म का गीत, आवाजें हैं उदित नारायण और साथियों की। गीत रचना है आनंद बख्शी की और संगीत रचना है इस्माइल दरबार की।

आप सुन रहे हैं चित्र पर संगीत। सुनिए जान फिल्म का दो गाना, युगल आवाज है अलका याग्निक और उदित नारायण की। बोल आनंद बख्शी के हैं और धुन तैयार की है आनंद मिलिंद ने।

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति और बाबुल सुप्रियो को सुनिए। फिल्म का नाम है जीना सिर्फ मेरे लिए। शब्द रचना समीर की है और संगीत रचना नदीम श्रवण की।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत, मीरा का मोहन। सुनिए इस फिल्म का गीत, आवाजें हैं अनुराधा पोडवाल और सुरेश वाडकर की। बोल इंदिवर के हैं और धुन तैयार की है अरुण।

अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण को सुनिए, फिल्म का नाम है जाने होगा क्या। शब्द रचना समीर की है और संगीत रचना निखिल विनय की।

जीना मरना तेरे संग। फिल्म के इस गीत के साथ ही अब आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। आइए सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम उमंग में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: आप कौन हैं, आपकी क्षमताएं क्या हैं और आपके संस्कार क्या हैं? इन सब का निर्धारण आपके द्वारा किए गए कार्यों के संचय से होता है। आपकी सफलता, आपका व्यवहार और आपके कार्यों का समाज पर प्रभाव ही वो स्वर है जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी पहचान की घोषणा करता है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। लिखते हैं,
2: 14 अप्रैल 2026 का उमंग प्रोग्राम बेहद पसंद आया, जिसमें आपने हाथ से लिखने की आदत के बारे में बताया। ये सही है कि इस डिजिटल युग में हाथ से लिखना बहुत कम हो गया है। ऐसे तो हाथ से लिखने से बहुत से फायदे हैं, जैसे कि याददाश्त तेज होती है, दिमाग शांत होता है, रचनात्मकता बढ़ती है, एकाग्रता सुधरती है, समझ गहरी होती है और हाथ की कसरत भी होती है।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से। संदेश भेजने वाले हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, पूजा, प्रेम, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी।
3: और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा।
2: कृष्णा पार्क दिल्ली से याकूब आसमा फकीर, यूसुफ आसमा फकीर, असलम आसमा फकीर और अकरम आसमा फकीर।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं इस श्रृंखला की अगली कड़ी। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं वर्षा वन यानी रेन फॉरेस्ट की
2: जी।
3: तो विमलेश जी, अब श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं।
2: जी, श्रोताओं, कल हमने ली थी वर्षा वन की सामान्य जानकारी। आगे हम आज चर्चा करेंगे क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया के प्रमुख वर्षा वनों की।

0: तो करते हैं शुरुआत अमेजन वर्षावन से।
1: जी जरूर, श्रोताओ आपने टीवी चैनलों में अमेजन वर्षावन के रोमांचकारी दृश्यों को जरूर देखा होगा। समाचार पत्रों या अन्य संचार माध्यमों के द्वारा भी इसके बारे में कुछ न कुछ जानकारी तो अवश्य प्राप्त की होगी।
0: जी
1: आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं।
0: श्रोताओ अमेजन वर्षावन दुनिया का सबसे बड़ा वनस्पति और जीव समृद्ध वर्षावन है। ये लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और हाँ, इसे समुद्र के बाद पृथ्वी का सबसे बड़ा फेफड़ा भी कहा गया है।
1: ऐसा इसलिए कहा गया है श्रोताओं कि धरती की कुल ऑक्सीजन का लगभग 20% ऑक्सीजन हमें इसी वर्षावन से मिलता है।
0: जी
1: जहाँ तक इसके स्थान की बात है तो यह दक्षिण अमेरिका या लैटिन अमेरिका में फैला हुआ है, मुख्य रूप से ब्राजील में,
0: लेकिन इसके कुछ भाग पेरू और कोलंबिया में भी फैले हुए हैं। यहाँ भारी वर्षा होती है लगभग 2000 मिलीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक।
1: और श्रोताओं जहाँ तक इसमें पाए जाने वाले जीव जंतुओं की बात है, यहाँ उनकी लाखों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जानते हैं कुछ दुर्लभ और रोचक जीवों के नाम। तो सबसे पहला जीव है जगुआर। जी हाँ, अमेजन वन का सबसे बड़ा शिकारी, पानी में तैरने और शिकार करने में माहिर।
0: दूसरा है गोल्डन मंकी, बिल्कुल सोने के सुनहरे रंग का दिखाई पड़ता है, केवल अमेजन के जंगलों में ही मिलता है। एक और विशेष मेंढक यहाँ मिलता है, उसे पॉइजन डार्ट फ्रॉग भी कहते हैं। ये बेहद चमकीले रंग वाला मेंढक होता है। इसकी त्वचा में जहरीला पदार्थ होता है जिसे छूते ही तबीयत बिगड़ सकती है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। पुराने समय में यहाँ के आदिवासी लोग युद्धों में जहर का इस्तेमाल तीरों पर करते थे।
1: और आपने श्रोताओं एनाकोंडा सांप के बारे में तो अवश्य ही सुना होगा। ये दुनिया का सबसे लंबा और भारी सांप है जो पानी में रहता है और बड़े जानवरों का शिकार करता है।
0: एक और चींटी की अनोखी प्रजाति यहाँ पाई जाती है जिसे बुलेट एंट कहते हैं। ये दुनिया की सबसे दर्दनाक डंक वाली चींटी है। कहते हैं इसके डंक मारने पर भाला मारने या तीर लगने जैसा दर्द होता है।
1: तो ये थी कुछ रोचक वन्य जीवों की जानकारी। श्रोताओं अमेजन का जंगल यह औषधीय वनस्पतियों का बहुत बड़ा भंडार है।
0: जी
1: आइए अब जानते हैं कुछ रोचक तथ्य अमेजन वर्षावन के बारे में। तो विमलेश जी,
0: जी जी जी, एक सबसे रोचक तथ्य ये है कि अमेजन वर्षावन ज्यादातर अमेजन नदी के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। मालूम है श्रोताओं, वैसे दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, लेकिन जल की मात्रा के दृष्टिकोण से दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। एक रोचक तथ्य आपको बता दें कि अमेजन नदी में पुल नहीं के बराबर है। लेकिन ऐसा क्यों?
1: ऐसा इसलिए कि भारी वर्षा के कारण अमेजन नदी उफान से भरी रहती है।
0: जी।
1: इसका कोई निश्चित तटबंध नहीं है। कभी कभी
0: इसकी धारा पतली हो जाती है तो कभी कभी बहुत चौड़ी, कभी 2 किलोमीटर ही रहती है तो कभी कभी 10 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। इसलिए यदि यहाँ पुल भी बनाए जाते हैं तो लंबे समय तक नहीं टिकते, क्योंकि दुविधा ये रहती है कि पुल की लंबाई या चौड़ाई कितनी रखनी है।
1: इसलिए यह तय पाया गया श्रोताओं कि अमेजन नदी में पुलों से बेहतर नौकायन ही है, और नौकायन कब हो इसका निर्णय नदी के उफान या पानी के कम होने पर किया जाता है।
0: जी तो श्रोताओं ये थी हमारी आज की जानकारी अमेजन वर्षावन के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो आज का प्रश्न है, अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं?
1: 8800440559 यानी हमारे IVRS नंबर पर, और audio@cieet.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और श्रोताओं अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम द क्रो।
0: एक प्रसिद्ध लोक कथा पर आधारित ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्यपुस्तक में मुद्रित है, जिसके द्वारा ये संदेश दिया गया है कि हमें तुरंत किसी की प्रशंसा से प्रभावित नहीं होना चाहिए, लेकिन तथ्यों की जांच कर लेनी चाहिए और प्रशंसा सच में की जा रही है या नहीं ये भी जांच लेना चाहिए।
2: CIET NCERT presents the series Singing the Poem. Under this series, let us listen to the program The Crow.
3: Hello children.
4: Hello ma'am.
5: Hello ma'am.
3: Hello, hello. How are you all?
4: We are fine ma'am.
5: I am fine ma'am.
6: How are you ma'am?
3: I am good. Thank you so much Vanya. All right. So children, today I am going to share something with you. Are you ready?
4: Yes, ma'am.
3: All right. You all know that pets are special members of our family, isn't it?
4: Yes, ma'am.
6: Pets are so lovely.
3: Right, Soha.
7: Ma'am, I have a dog. It loves me so much.
3: Riddhi, that's very good. But how do you

0: Lavish, Vanya and Riddhi. Music composition and guidance, Ajit Horo. Sound recordist, Mayank Kumar. Assistance in production, Meenakshi Kukreti. Directed and produced by Vimalesh Chaudhary. Dear friends, if you want to give your feedback on our programs, you are most welcome. Contact us on our toll-free number 8800440559. We may be contacted as well on our email address. Our email ID is audio@ciet.nic.in. This program was brought to you by CIET NCERT, New Delhi, India. अभी आपने सुना कार्यक्रम दी क्रो और अब सुनते हैं कार्यक्रम एक पौधा राजू का।
1: इस कार्यक्रम में एक बच्चे के बारे में मनोरंजक ढंग से बताया गया है कि कैसे उसने एक पौधा लगाया, उसकी देखभाल की और अपने मित्रों को भी उसने पौधा लगाने के लिए किस प्रकार प्रेरणा दी।

0: एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो
1: दीदी दीदी
0: अरे राजू स्कूल से आ गए तुम।
1: हाँ दीदी।
0: अरे ये तुम्हारे हाथ में इतने सारे फूल कहाँ से आए?
1: दीदी सामने के बगीचे में कुछ फूल लगे थे, मुझे अच्छे लगे तो मैंने तोड़ लिए।
0: ये क्या राजू, कल पड़ोस के माली काका भी तुम्हारी शिकायत कर रहे थे, कह रहे थे कि तुमने उनके बगीचे में लगे पौधे उखाड़ दिए, क्या ये सच है राजू?
1: दीदी वो तो मैंने।
0: राजू पौधों में भी जान होती है, पता है ना तुम्हें?
1: हाँ दीदी ये तो मैंने पढ़ा है, मगर
0: मगर क्या? अच्छा अब इधर आओ, ये देखो दीवार पर लटकी ये तस्वीर, ये तुम्हारे बचपन की है ना?
1: हाँ दीदी ये तस्वीर तब की है जब मैं बहुत छोटा सा था, अब तो मैं कितना बड़ा हो गया हूँ।
0: बिल्कुल ठीक, उसी तरह पौधे भी बढ़ते हैं, हमारी तरह पौधों को भी भोजन और पानी की जरूरत होती है।
1: भोजन और पानी?
0: हाँ राजू तुम ऐसा क्यों नहीं करते, एक पौधा लगाओ।
1: हाँ दीदी ये तो बहुत अच्छा रहेगा, कल मैं एक पौधा लगाऊंगा।
0: अरे कल क्यों? आज शाम को जब दादाजी बगीचे में घूमने जाएंगे तो तुम भी उनके साथ जाना पौधा लगाने।
1: ये ठीक है दीदी।

0: अच्छा तो राजू बेटा तुम पौधा लगाना चाहते हो?
1: जी दादाजी।
0: देखो बेटा उसके लिए ये जगह ठीक है, यहाँ अच्छी धूप भी आएगी। चलो बेटा पहले ये कंकड़ पत्थर हटाकर ये जगह साफ कर देते हैं।
1: ठीक हो गया।
0: राजू बेटा ये लो खुरपी और इस जगह पर एक छोटा सा गड्ढा खोदो, पर ध्यान रखना कहीं खुरपी हाथ में ना लग जाए।
1: अच्छा दादाजी अभी खोदता हूँ, लाइए खुरपी दीजिए।
0: हाँ ये लो बेटा, इतनी देर में मैं तुम्हारे लिए माली काका से पौधा ले आता हूँ।

0: वाह, ये पौधा कितना सुंदर लग रहा है।
1: देखा बेटा, ये पौधा माली काका तुम्हारे लिए खुद लेकर आए हैं। क्यों माली काका, मैं सच कह रहा हूँ ना?
2: हाँ राजू बेटा, इस पौधे को गड्ढे में रखकर इसकी जड़ों को मिट्टी से ढक दो।

0: लो माली काका, ये तो मैंने कर दिया।
1: शाबाश राजू बेटा, शाबाश।
0: मगर ये तो बताओ माली काका, ये कौन सा पौधा है?
2: बेटा ये गेंदे का पौधा है।
0: गेंदे का पौधा?
2: जी।
0: गेंदे का पौधा तो सामने वाले बगीचे में भी है, पर उस पर तो कितने सारे फूल लगे हैं।
2: फूल तो बेटा एक दिन इस पौधे पर भी आएंगे।
1: हाँ राजू बेटा, पर उसके लिए तुम्हें बहुत लगन और मेहनत से इसकी देखभाल करनी होगी।
2: हाँ।
0: देखभाल? वो कैसे?
2: देखो बेटा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हें रोज पौधे को पानी देना होगा और कभी कभी खाद भी डालनी होगी।
0: अच्छा।
2: और पौधे के आसपास की उगी हुई जो घास होती है ना, उसको हटाना होगा।
0: ये तो मैं जरूर करूँगा।
2: हाँ तो ठीक है बेटे। अच्छा आज तो अब बस।
1: राजू बेटा
0: जी?
1: अच्छा अब घर चलें?
0: जी धन्यवाद माली काका।
2: अरे बेटा
1: चलो बेटा।
2: जी
0: चलिए।

0: बोलो जी।
1: राजू कहाँ चला गया?
2: राजू कहाँ चला गया?
3: रात को तो यहीं सोया था।
2: अरे हाँ, लगता है बागीचे में गया होगा।
1: पता नहीं लड़के को क्या हो गया है, जब से इसने पौधा लगाया न खाने की चिंता न खेलने की।
2: जब देखो बागीचे में जाकर पौधे की देखभाल में लगा रहता है।
4: देखो दीदी, उस पौधे में कितने सारे फूल लगे हैं।
5: हाँ, कितने सुंदर लग रहे हैं। अच्छा राजू, क्या मैं एक फूल तोड़ लूँ?
4: नहीं दीदी, मैंने इतनी मुश्किल से गड्ढा खोदा, पौधा लगाया, खाद डाली और रोज पानी से सींचा, और अब ये फूल आ गए हैं, तो आप इसे तोड़ना चाहती हैं?
5: दीदी, कितने सुंदर लग रहे हैं ये फूल, आप क्यों तोड़ोगी भला?
1: शाबाश राजू, लगता है तुम समझ गए।
5: हाँ दीदी, मेहनत से लगाए हुए पौधे से अगर कोई एक भी फूल तोड़ ले तो कैसा लगेगा?
4: दीदी, ये तो बहुत ही गलत काम है। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम एक पौधा राजू का, और अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 में।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

सुजान सिंह खिची एंड पार्टी की गई इस लोक रचना के साथ ही आवाज का लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के सुर ही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। दिन के एक बजने को है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी जयपुर से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिलीज किए जाएंगे।

0: गौरतलब है कि ग्राम विकास चौपालों के माध्यम से मुख्यमंत्री ग्रामीणों से सीधा संवाद कर रहे हैं, साथ ही सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में फीडबैक भी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री का कल डूंगरपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। वे 84 क्षेत्र के धम्बोला गांव में ग्राम विकास चौपाल करेंगे। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव अम्बरीश कुमार ने लोगों से घबराहट में पेट्रोल डीजल की खरीद और भंडारण नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि राज्य में पेट्रोल डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है, लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ईंधन की बढ़ती मांग के बावजूद पर्याप्त स्टॉक है और आपूर्ति व्यवस्था सुचारू बनी हुई है। राज्य में सहकारिता उपभोक्ता भंडार और क्रय विक्रय सहकारी समितियों की ओर से चलाए जा रहे सभी दवा बिक्री केंद्र और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र आज खुले हैं। ये केंद्र सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। सहकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने बताया कि प्रदेश भर में कुल 538 दवा केंद्र संचालित है, जिन पर लगभग 2000 तरह की दवाइयां उपलब्ध है। वहीं ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर कई स्थानों पर मेडिकल स्टोर बंद रखे गए हैं। एसोसिएशन ने ऑनलाइन दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने की मांग को लेकर यह बंद रखा है। जयपुर में जीएसटी चोरी और फर्जी बिल मामले में वाणिज्यिक कर विभाग की प्रवर्तन शाखा ने बड़ी कार्रवाई की है। सघन जांच के दौरान अवैध आईटीसी के जरिए करीब 13.5 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी के आरोप में मुरलीपुरा निवासी नितेश कुमार सिंघल को गिरफ्तार किया गया है। उसने विभिन्न फर्मों के जरिए फर्जी बिलिंग कर जीएसटी चोरी की थी। प्रदेश में प्री डीएलएड परीक्षा कड़ी सुरक्षा और एआई आधारित निगरानी के बीच ली जा रही है। दो पारियों में हो रही इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को सघन जांच के बाद प्रवेश दिया गया। सभी केंद्रों की लाइव फीड जयपुर स्थित कमांड सेंटर तक पहुंच रही है, जहां आईटी और एआई विशेषज्ञ रियल टाइम निगरानी कर रहे हैं। परमवीर चक्र से सम्मानित हवलदार मेजर पीरू सिंह की जयंती आज श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर झुंझुनू स्थित उनके स्मारक स्थल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों और नागरिकों ने मां भारती के वीर सपूत को नमन किया। गौरतलब है कि 1948 में जम्मू कश्मीर में दुश्मनों का सामना करते हुए हवलदार पीरू सिंह ने असाधारण वीरता का परिचय दिया था। दुश्मनों की चौकियों को ध्वस्त करते हुए वे गंभीर रूप से घायल होकर वीरगति को प्राप्त हुए। उन्हें मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही है। दिन के साथ ही रातें भी काफी गर्म हो गई हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए लू का दौर जारी रहने की चेतावनी दी है। 2 जिलों में हीटवेव का ऑरेंज और 14 में येलो अलर्ट बताया गया है। कल चित्तौड़गढ़ 46.3 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म रहा। इसके अलावा श्रीगंगानगर, अलवर और पिलानी में भी पारा 45 डिग्री से ऊपर रहा। राजधानी जयपुर, फलौदी, चित्तौड़गढ़ और कोटा में रात का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस मापा गया। सिरोही को छोड़कर लगभग सभी जिलों में दिन का तापमान 40 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से आगंतुक महात्मा गांधी के एआई आधारित 3D अवतार से बातचीत कर सकेंगे। आधुनिक तकनीक से तैयार ये 3D अवतार बापू के विचारों और व्यक्तित्व को जीवंत रूप में प्रस्तुत करेगा। ये संग्रहालय का तीसरा एआई आधारित इंटरैक्टिव होलो बॉक्स होगा। इससे पहले संग्रहालय में सरदार वल्लभ भाई पटेल और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के एआई होलो बॉक्स भी शुरू किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 MHz पर। ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम घर आंगन।

सब अपनो ध्यान रखा, साथ ही साथ अपने घर का जगह बड़ा बुजुर्ग है, अपना जगह बच्चा है, सबको ख्याल रखा और आपा भी ई गर्मी में बच के रवा और सभी खुश रवा, प्रसन्न रवा, आनंदित रवा। एक साथ ही कार्यक्रम में था सबको स्वागत है, तो था सब में मेरी मोकली मोकली राम राम। कार्यक्रम में मैं थारे लिए कई सारी जी की जानकारियां बे ले रहा, इरे साथ साथ मीठा मीठा लोक गीत सुनार थारो मनोरंजन भी करवावा हाँ। तो आज की आपने जी की जानकारी है बा ये है, एक तो यह है कि अपना जो स्वास्थ्य है वो तकनीकी के साथ जुड़ने से अपन के लाभ भी का मिले है और कौन सी जी की चुनौतियां है अपने सामने आई है भी के बारे में अपनी बहनों ने जानकारी देवांगा। एक साथ साथ बहनों जब आप जन्म लेवा हाँ तो अपना कई सारा जो शोक है, कई सारी जी की इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं अपने मन में हुए, लेकिन परिस्थितिवश कई बार के वह की इच्छाएं और अपना शोक है वह आपा दबा लेवा, लेकिन जब भी अपन कोई इसी सकारात्मक परिस्थिति मिले तो अपना शोक है अपन पूरा करना चाहिए और बा में नियमितता अगर आप रखा तो अपना हर शोक है वो पूरा हो सके है। एक बारे में भी अपने बहना ने बतावांगा। तो एक कार्यक्रम की शुरुआत करा एक मीठे से।

तकनीकी से जो स्वास्थ्य है वो जुड़ने के बाद एक तरीके से क्रांतिकारी परिवर्तन हुए है। आपस में दोनों को बहुत ही ज्यादा एक गहरो जो संबंध बन गयो आधुनिक।

सटीक और सुलभ और सस्तो इन बना दियो अपना स्वास्थ्य ने। और हालांकि अत्यधिक जो आप स्क्रीन टाइम या फोन कंप्यूटर को जो इस्तेमाल कर रहे हैं या गजेट्स की जो लत है अपना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव एक कारण पड़ो है। और जो या एक तकनीकी जो आई है इसु कई सारा नकारात्मक प्रभाव भी पड़े है, लेकिन अगर आप सकारात्मकता की बात करा तो कई सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी होगी और जो आपनों इलाज है वो भी बेहतर तरीके से और एक पूरी गहरी छानबीन के साथ होने लगे। और जो रोग है बांको पहले से ही पतो लाग जावे, जो मशीनरी है बांसे अगर चेकअप करो जावे तो इसे कह कि इलाज जो करना में अपन समय मिल जावे कराने के लिए और बहुत सारी जी की सुविधा है वह भी मिलने लगी। जिया कि आप टेली मेडिसिन

की बात करा तो इंटरनेट और मोबाइल एप्स के जरिए दूर दराज रा इलाका में बैठा विशेषज्ञ सु आपा परामर्श लेन में यो आसानी होगी। इसे एक साथ साथ ही जो निदान है यानी कि जो उपाय है इलाज है वो भी सटीक तरीके से AI MRI CT स्कैन जिसी तकनीक के सु बीमारियां री शुरुआती अवस्था में ही अपन पतो लाग जावे। और बात करा आपा वियरबेल्स की कि स्मार्ट वॉच और फिटनेस बैंड्स अपन दिल री धड़कन यानी कि अपनी जो हार्ट बीट है ऑक्सीजन को स्तर है और नींद रो जो पैटर्न है पर भी लगातार नजर रखने में अजीजा काम आवे। बिक साथ साथ चिकित्सा डेटा ने डिजिटलाइज करण सु मरीजा री मेडिकल हिस्ट्री भी सुरक्षित रहने लगी और इसु इलाज भी आसानी से होने लग गया। स्वास्थ्य के लिए कई सारी जी की तकनीकी चुनौतियां भी आपन देखने मिल रहा है कि आपने जो बिगड़ती जीवन शैली यानी कि आज जो आपा अगर सुबह की शुरुआत की अगर बात करा तो मोबाइल फोन से कंप्यूटर से हुआ है क्योंकि आज हर जो काम है जो कोई भी काम हो वो या तो कंप्यूटर से या फोन से ऑनलाइन होने लग गयो तो हर एक काम की जो शुरुआत है बस स्क्रीन टाइम से ही हुआ है। तो ज्यादा देर कंप्यूटर और स्मार्टफोन रो इस्तेमाल सु अपने जी की शारीरिक गतिविधियां यानी कार्य जो क्षमता है बा कम होने लगी जिसु शरीर के अंदर मोटापो चर्बी बढ़न लगी खराब शारीरिक मुद्रा री समस्या भी बढ़न लगी यानी कि आपनो जो डील डोल है वो बिगड़न लगो शरीर जो बेडोल होने लगो वजन बढ़ना से जो बॉडी को जो एक शेप हो बा शेप खराब होने लगी और चर्बी बढ़ना सु कोलेस्ट्रॉल और कई सारी जी की बीमारियां है अपने बॉडी में हावी होने लगी। तो ए चुनौतियां भी हैं तो आ चुनौतियां जठे के कई को फायदो है तो बठे आपन ए चीजें भी देखने मिले। तकनीकी अपना जीवन ने कई सारा लाभ भी देवे तो बठे ई बहुत सारी जी की अपन समस्या को सामनो भी करनो पड़े यानी कि बहुत सारी चुनौतियां भी सामने ल्यार अपने सामने खड़ी कर दी। भी कड़ी में अगर आप बात करा तो ज्यादा समय सोशल मीडिया और गेम खेलन सु टाबरा और युवाओं में अवसाद तनाव और एकाग्रता में कमी जिसी मानसिक स्वास्थ्य समस्या भी अपन देखने मिले है। भी साथ ही स्क्रीन सु नीली रोशनी नींद का चक्र ने भी प्रभावित करे है और अगर नींद पूरी तरीके से अपन नहीं ले आ तो अपनी बॉडी बहुत ज्यादा प्रभावित हो इस क्योंकि 7-8 घंटा की नींद पूरी करने से अपने जो की बॉडी है बा दूसरे दिन के लिए तैयार हो जावे भी में एनर्जी ऊर्जा है बा जावे तो दूसरे दिन आप तैयार रहा कि आपने दूसरे दिन के काम करना है। लेकिन अगर नींद पूरी नहीं हुए तो पिछले जो अपनो पेट है वो खराब होने लग जावे अपनो जो पूरी जो शारीरिक तंत्र है वो प्रभावित होने लग जावे और तो ऐ सब चीजा तकनीकी है बिन अगर आप अच्छे से इस्तेमाल करा तो वो अपन लाभ भी देवे लेकिन अगर इको इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करके आप अनकंट्रोल यानी कि बहुत देर तक भी चीज पर लगे रहा और अपने जो शरीर को ध्यान नहीं रखा तो कई सारी बीमारियां भी अपने बॉडी में आ जावे। डिजिटल हेल्थ ने सरकारी बढ़ाओ स्वास्थ्य में सुधार और जागरूकता ल्याण खातर आ सारी स्वास्थ्य सुविधाओं ने जनता तक पहुंचाने खातर भारत सरकार के द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन चलायो जा रहे है। इरे तहत नागरिका ने डिजिटल आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट प्रदान करो जावे ताकि बारा सारा मेडिकल रिकॉर्ड एक स्थान पर डिजिटल रूप से सुरक्षित रखा जा सके तो वो तकनीकी को एक बहुत बड़ो फायदो है। कुछ भी आप अगर बात करा पर तकनीकी रो इस्तेमाल सीमित और सही तरीके से करके इन अपना स्वास्थ्य ने बेहतर बनाना को एक बेहतरीन माध्यम भी बनाया जा सके है और इको इस्तेमाल अगर आप सीमित नहीं करके असीमित और गलत तरीके से करा तो ये अपना स्वास्थ्य ने बेहतर नहीं खराब करण में भी बहुत बड़ो इको हाथ है। तो जो तकनीकी जो आई है जो एक टेक्निक जो आई है हर चीज के लिए जो अपा डिजिटल जो भी यूज में लेवा हाँ तो भी को अपा सदुपयोग करा तो अपने लिए बहुत ज्यादा लाभदायक हो है। और जो स्वास्थ्य में अगर तकनीकी बात करा तो आने के बाद में अपनो जो इलाज है वो बेहतर होने लग गयो और कई सारा जगह फायदा है वह अपन मिलन लग गया। और आज आप देखा कि जो डाणिया के अंदर या दूर दराज के इलाका में लोग रह रहे हैं वहाँ को भी मतलब जो तकनीकी से जुड़ने के कारण कई सारा जगह लोग हर जगह इस चीज से अनभिज्ञ है वहाँ को भी इलाज अच्छे तरीके से होने लग गयो और कई सारी जिकी अपनी गर्भवती महिला है जिकी जब बांको एक तरीके से वह बच्चा ने जन्म लेती देती भी टाइम ही
वहाँ की मृत्यु हो जाती है।

ये तकनीकी आने के कारण कई सारी जी की माया है वह अच्छे से बेहतर तरीके से आपका बच्चा ने शिशु ने जन्म दे सका है और खुद को स्वास्थ्य भी अच्छे तरीके से राख सका। एक साथ साथ जो कई सारी जी की बीमारियां हवा का जगह इंजेक्शन लागे है जो वह इंजेक्शन भी सही समय पर और सही तरीके से लागने के कारण जो शिशु मृत्यु दर है भी में भी बहुत कमी आई है और मातृ जी की मृत्यु दर है भी में भी बहुत ज़्यादा कमी आई है और माँ और बच्चा है दोनों स्वस्थ रहे और जो जो महिला बहन गांव में रहती और वह दूर इलाका में रहती वह हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाती बैंक के लिए भी ये सारी सुविधा है एम्बुलेंस की जो सुविधा है वह सरकार कर रखी है। साथ ही साथ बने जब वह डिलीवरी कराने हॉस्पिटल के अंदर जावे तो बने और बहुत ज़्यादा सुविधा भी दी जावे बी के साथ साथ बने नगद राशि दे के भी बैंक स्वास्थ्य ने बेहतर बनाने के लिए सरकार है वो बहुत ज़्यादा लाभ भी देवे है। तो ऐसा सारा फायदा अपन ई तकनीकी के कारण ही मिले है। तो आप जो भी जो यूज करा हाँ जो भी चीज़ यूज करा हाँ तकनीकी जो आपने मिली है भी को आप अच्छे से एक तरीके से लाभ उठावा सदुपयोग करा दुरुपयोग नहीं करा ताकि आपनों जीवन है और आपना आने वाले जो बच्चा है अपना आने वाली जो पीढ़ी है बाको भी बेहतर स्वास्थ्य जो हो सके और आप भी अच्छी तरीके से जो इलाज है या अपनों स्वास्थ्य जब बिगड़ जावे तो आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से फायदा उठा सकें।

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बहनों, हर एक मानस है जब धरती पर जन्म लेवे है तो बार मन में कई सारी इच्छाएं शोक हुए है और ऐ शोक और इच्छा जीवन री परिस्थितियां ने देख रहे मन रे किसी कोणर माई दब जावे। लेकिन अपन अपना शोक न पूरन पूरो करण रो जुनून यदि होवे

भी कर सका हाँ, क्योंकि शोक अपन ऊर्जा देवे नहीं, अगर जो जीने के लिए एक सकारात्मकता अपना अंदर लियावे, अपन आनंद देवे, खुशी देवे। रोजमर्रारी भाग दौड़ में अक्सर आपा अपने पसंदीदा कामन पीछे छोड़ देवा हाँ, और जो अपना जो शोक है वह भूल जावा आपा, और सोचा कि जो अपना घर परिवार है, अपना बच्चा है, बंका शोक पूरा करने में अपनी जिंदगी है बा लगा देवा। अपना जो शोक है जिंदा रखने से एक तरीके से जो तनाव है अवसाद है।

भी कलिए कुछ दिन के अंदर थोड़ो जो आध घंटो एक घंटो ई चीज ने जरूर देवा। पूरा दिन में कम से कम 15-20 मिनट या 30 मिनट आध घंटो देने से अपना जो शौक है वह भी पूरा हो जावे और आप भी के जरिए जो एक तरीके से जो अपनो आनंद है, मन को आनंद है, मन की जो इच्छा है वह भी आप पूरी कर सका हाँ। और एक जो नई एनर्जी है वह अगला दिन के लिए अपना अंदर आ जावे। बगीचे रमाई बागवानी कर सका, पेड़ पौधा लगाने को अगर अपन शौक है तो आप बिन पूरा कर सका हाँ। संगीत सुनने को शौक है तो वो पूरा कर सका हाँ। लिखने की अगर आदत है तो बिक खातर भी आप थोड़ा टेम है वो काट सका हाँ। और काटनो ही चाहिए जद ही शौक पूरा होए। जी हाँ, आप हर काम खातर शेड्यूल बनावा हाँ भी तरीके से ही अपना जो शौक रह खातर टेम काटनो चाहिए। इर खातर भी समय तय करनो चाहिए कि आपा इतो टाइम है वो ई चीज ने देवांगा ताकि अपनो जो नियमितता से जो यू काम है वो पूरा हो सके। और आदत आपने जीवन में घनी जरूरी है। शौक की वजह से ही आपने जिंदगी में कई सारा बदलाव भी आ सके है। जिया कि मानसिक तनाव अगर है वो तो आप चुकी अपने मन की इच्छा पूरी करने के लिए यानी कि मन पसंदीदा अगर कोई काम अगर आप करा हाँ तो भी मैं मन ने घनी शांति मिले है और आपा दिन भर भी भाग दौड़ ने

मन पसंदीदा काम या शौक न समय देवा तो बिशु अपनी सोच हमेशा सकारात्मक रहे और जिंदगी है वह निरस को नहीं लगे। तो कई दिन अगर यो काम अगर आप लगातार कर रहे हाँ और कई एक दिन ये हुआ कि टेम को नहीं मिले और समय को निकाल पावा तो खुद ने दोस्त न माना बल्कि अगले दिन फिर सुबह दिन शुरुआत करा और करनी भी चाहिए नियमितता। अगर कोई चीज में लावा तो अपनो जो काम को काम है वो पूरा हो जावे और अपनो मन पसंद जो काम है वो भी पूरा हो जावे, शौक भी पूरा हो जावे और अपने जो इस चीज ने गंभीरता से अगर आप लेवा और जो शौक है मन री आवाज हुआ है बिने रोज 30 मिनट अगर आप देवा तो कितना भी अगर आप बिजी हो अगर पढ़ने को शौक है तो आप आधे घंटे को टेम है वो सुबह या शाम निकाल सका हाँ, जल्दी उठ के पढ़ सका हाँ, नियमित रूप से

अभ्यास चाहिए, रियाज चाहिए। जहाँ कि कोई बच्चा ने गाने को शौक है तो वो बिना लगातार रियाज करनी ही पड़ेगी, जद ही वो भी काम में सफल हो सके। वो भी अपन नियमितता से अगर अपन पढ़ना को शौक है या और भी कोई सिलाई कढ़ाई बुनाई को महिला बहनों शौक हुए तो भी काम ने छोड़ा नहीं, बल्कि धीरे धीरे यो शौक है वो बिना एक हुनर बना लेवा और इस आपा 2 रुपये की कमाई भी कर सका हाँ, अपना शौक को शौक पूरा हो जावे और 2 रुपये आपा अपने लिए कमा सका हाँ, अपने स्वाभिमान ने जिंदो रख सका हाँ। और एक तरीके से कह सका हाँ कि मन को जो आनंद है, मन की जो खुशी है वह इन शौक के माध्यम से आपा पूरी कर सका हाँ। शौक ने जॉब नहीं बनानी चाहिए, बल्कि पहले इन्हें मजे और आनंद के लिए आपा करा और फिर इन्हें कौशल बनावा, अपना आप मौको अपन मिलतो रहेगो और आपा एक दिन इन्हें हुनर बना सका हाँ। लेकिन इसके लिए अपन अभ्यास चाहिए, नियमितता चाहिए और लगातार ये काम ने करता करता आपा इतो अच्छे तरीके से काम कर सका, इतो परफेक्टली आपा ये काम

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
1: बहनों, गर्मी बहुत ज्यादा है और लू और तापमान है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे है, तो अपन अपनो स्वास्थ्य को ध्यान रखना चाहिए। सबसे ज्यादा देखो जो गर्मी को समय में

अगर बॉडी के अंदर एकदम से नियंत्रित हुए तो आपनो स्वास्थ्य है वो जल्दी ही मतलब ये तो प्रभावित को नहीं हुए। तो सुबह उठते ही 2 गिलास गर्म पानी है, गुनगुनो पानी है, बापन जरूर पीनो चाहिए। और जितो तो आप पानी पीवंगा अपनी बॉडी है बा बीती ही मेंटेन रहेगी। चाय कॉफी है बा गर्मिया में आप कम कर देवा तो और भी ज्यादा बढ़िया हुआ है।

शोर शराबो है वो बिल्कुल ही नहीं हुए, और जो अपनी बॉडी है वह भी एकदम से ऊर्जावान हुए, क्योंकि आप पूरी तरीके से पूरी नींद ले की सोएड़ा जब उठा तो पूरी एनर्जी के साथ उठा और भी मैं थकान भी को नहीं आवे, तो वो जो समय है वो सबसे बेहतर हुआ है। तो वीक अंदर ही आपने कुछ जो समय है वो आप खुद का शरीर ने देनो बहुत ज़्यादा जरूरी है। टहलने के लिए आप 30 मिनट को समय है वो जरूर देवा, अगर आपने गंजे गनी तो आप गली में ही घूम लेवा। और एक साथ साथ जो सूर्य की उगने से पहले अगर आप उठा तो बहुत ज़्यादा बढ़िया टाइम हुआ है, और 15 मिनट उगते सूर्य एक भी टाइम आप अपने बॉडी ने जरूर देवा, जिससे विटामिन डी है वह अपन मिले। और जो अगर घर के अंदर सीढ़ियाँ हैं तो सीढ़ियाँ पर चढ़नो जरूरी हुआ है, सीढ़ी पर अगर आप चलें तो भी से आपनों जो दिल है वो स्ट्रोंग हुआ है, मजबूत हुआ है।

ऊपर नीचे अगर जावा तो जो शरीर को व्यायाम है वो भी हुआ है। बिक साथ साथ सलाद छाछ दही है बिन आपा अपने खाना के अंदर जरूर शामिल करा। सस्ती और सबसे अच्छी चीज है जो अपना शरीर ने बहुत ज्यादा फायदो देवे। बिक साथ ही जो प्रोटीन है वो जरूर अपा लेवा, दाल है बिन अपना खाना में शामिल करा। साथ ही साथ जवार बाजरे रागी की रोटी है मैं ले सका, मोटो अनाज है वो जरूर लेना चाहिए ताकि बिसे पेट है वो साफ रहे। चीनी कम और तली भुनी जी की चीजें है बस आपा दूरी बना लेवा गर्मी के अंदर बिल्कुल। और जो किताब यानी कि दिमाग की जो सेहत है बस किताब और ध्यान से ही एकाग्रता बढ़े अपना अंदर। पढ़ने को शौक है तो अपा जरूर आधा घंटो एक घंटो जरूर निकाला पढ़ने के लिए। इससे अपनों एक तो जो दिमाग को स्ट्रेस है वो दूर हुआ है, तनाव कम हुआ है। बिक साथ ही थोड़ी देर के लिए अपन ध्यान 5 मिनट के लिए ध्यान है वो जरूर करना चाहिए। आंख बंद करके लंबी सांस लेके भी सके कि अपना जो टेंशन या तनाव जो हुआ है वो गायब हो जावे है। और जो हंसी मजाक है घर को जो माहौल है वो आनंददायक बनाएड़ो रखा, हंसी मजाक करा सबके साथ बोला ताकि अपना मन में जो भी कुछ चल रहे है वो दूर हो जावे। दिमाग के अंदर अगर कोई तनाव है तो वो भी दूर दूर हो जावे। बोलने से बतलाने से बातचीत करने से मन हल्को हो जावे है। भी के साथ साथ जो अपना जो चेकअप है वो जरूर अपन साल में एक बार जरूर कराना चाहिए। जो बीपी शुगर है 30 साल के बाद अगर जांच करवाता रहा तो अपन पता लग जावे कि अपना जो खून की जांच है भी में हीमोग्लोबिन विटामिन वगैरह है, दांत में कीड़ो आंखियां कमजोर हो रही है, तो ऐ सब चीज़ों को जांच कराने से पता लग गए। तो अगर कोई रोग हुआ तो भी रोग होने से पहले ही अगर आप जांच करावा तो अपन पता लग जावे कि आपने कौन सी चीज है बा ज्यादा प्रभावित हो रही है तो भी कोई इलाज आप करा सका। हाँ स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, जो कह रहे स्वास्थ्य से बढ़िया कुछ भी कोनी संसार में। स्वास्थ्य अच्छा हुआ तो हर चीज अपना अच्छी लगे, और अगर अपना स्वास्थ्य अच्छा नहीं हुआ तो अपना अगर कुछ भी पड़े रहो ना खाने को मन करे ना पहनने को मन करे ना कट जाने को मन करे। तो स्वास्थ्य ने अच्छा रखने के लिए थोड़ो समय आधा घंटो एक घंटो अपन अपने लिए जरूर निकालना चाहिए। वो समय बहुत ज्यादा कीमती हुआ है, और जो लोग अपना स्वास्थ्य खुद के स्वास्थ्य के लिए अगर समय निकाल रहे हैं तो वह स्वास्थ्य ने बेहतर बनावे और साथ ही साथ जीवन

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: बहनों, लू और डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी के तोड़ के लिए कुछ जगह शरबत है वह बनार अगर आप पीवा तो अपने शरीर ने भी बहुत ज्यादा फायदा मिले। जहाँ की बेल को शरबत, पक्को बेल है बिन तोड़ के बी को गुदो निकाल के पानी और गुड़ मिला के बिन छान लेवा, इससे अपना पेट की गर्मी, लू और अगर कोई दस्त की समस्या हो रही है तो बाबी खत्म हो जाए। और 40 की उम्र के बाद के लिए तो यो अमृत का समान है। बी के बाद में दूसरे अगर आप शरबत की बात करा तो सत्तू को घोल, यानी कि 2 चम्मच चना को सत्तू, बिक मायने नींबू, कालो नमक, भुनेड़ो जीरो और पानी मिला के बी को अगर आप एक तरीके से शरबत बनावा तो बी से एक तो आपा ने अगर थकान है तो तुरंत जो एनर्जी है ऊर्जा बा मिले, बी के साथ ही साथ पेट ठंडो रवे, शुगर भी कंट्रोल रवे। तीसरे शरबत की आप बात करा आम पन्ना, कच्चो आम उबाल के गुद्दो भी को जो हुआ है और भी के अंदर पुदीनो, कालो नमक, गुड़ और भुनेड़ो जीरो मिला के शरबत बनावा तो यो लू को रामबाण इलाज है। अपना जिका दादा दादी नाना नानी यानी अपना बुजुर्ग हा वे आम पन्नो है वो गर्मिया के अंदर बहुत पीता जिस के बाद लू वगैरह है वे बिल्कुल ही कौन लागती, और इससे विटामिन सी है वा भी अपन मिले है। साथ ही साथ बात करा सौंफ के शरबत की, 2 चम्मच सौंफ रात में भिगो के रख देवा, सुबह मसल की बिन छान लेवा और भी कंदर मिश्री मिलार जो पानी डाल है भी शरबत बनावा तो इससे आंखियां की जलन और पेशाब में अगर जलन हुए तो दोनों ही में बहुत ज्यादा फायदा मिला है। बात करा धनिया पानी की, 1 चम्मच धनिया पाउडर मिश्री रात ने भिगो के रख देवा, सुबह छान की बिन पीवा तो शरीर की जिकी सारी गर्मी है वह बाहर हो जावानी की ठंडक प्रदान करे। जो शरबत है वह अपन कद पीना यानी कि सुबह 11 बजे से शाम का 4 बजे के बीच एक गिलास दोपहर में घर निकलने से पहले जरूर पीवा, जिससे कि है कि अपना जो गर्मी से अपन राहत मिले, लू से बचावे, साथ ही साथ शरीर ने भी

को प्रयोग नहीं करा क्योंकि वो फायदे के जगह अपन नुकसान देवे। इसलिए दही छाछ को जो प्रयोग है दोपहर में अपन 2 बजे से पहले पहले 1 बजे से पहले पहले ही करना चाहिए, जिससे जितो अपन लिक्विड अपनी बॉडी में देवा वित्त ही शरीर ने ठंडक प्रदान करे। खीरो और ककड़ी है, प्याज है, प्याज लू को रामबाण इलाज है। हर खाना में अपन सलाद है वो लेना चाहिए, प्याज लू को लगन दे यानी कि लुआ सा अपन बचावे। पुदीने की चटनी यानी कि धनियों कच्चो आम कालो नमक रोटी के साथ अगर आप की चटनी बना के खावा, पुदीनो बहुत ज़्यादा ठंडो हुए है और ठंडक प्रदान करे और इसकी चटनी है बहुत ज़्यादा स्वाद लगे। साथ ही साथ एक अंदर हरे धनियों और कच्चो जो आम है यानी कि आमिया है भी ने काट के छील के अगर भी की चटनी एक साथ बनावा तो बहुत ज़्यादा स्वाद लगे। गरम मसालो अचार तलेड़ी चीज चाय कॉफ़ी ये अपन बिल्कुल भी कम कर देवा, इसके कि अपनी बॉडी गर्म हुए है और गर्मी के अंदर गर्म बॉडी हुए तो बस जल्दी ही बीमारियां को घर बन जावे। साथ ही साथ जो गर्मी आवे जना अपनी स्किन यानी कि अपनी त्वचा भी प्रभावित हुए और गमोरियां की जिसकी समस्या है अड़ाई वगैरह की जिसकी समस्या है वह भी होने लग जावे तो मुल्तानी मिट्टी है गुलाब जल में घोल के लेप बनावा और 15 मिनट जठे भी आपने गमोरिया वगैरह हो रही है तो एक प्रयोग करा। इसके कि मुल्तानी मिट्टी बहुत ज़्यादा ठंडक प्रदान करे है और यो कोई गमोरिया ने सुखाने को काम भी करा है। साथ ही साथ नीम की अगर बात करा तो नीम तो बहुत ज़्यादा गुणकारिक है और आयुर्वेदिक पेट भी है। नाणक का पानी में नीम ने उबाल लेवा खुजली फुंसी जिसी जी की समस्या है वह खत्म हो जाए। साथ ही साथ नारियल को तेल है रात में हल्को लगा लेवा तो स्किन फटेगी को नहीं और मॉइस्चराइज भी रहेगी। साथ ही साथ गुलाब जल में थोड़ा सा चंदन पाउडर घोल के चेहरे

साइंटिफिक अगर आप बात करा तो प्याज है वो हीट न सोखा है, यानी कि गर्मी है बिना सोखा है। तो बहनों अब अपना कार्यक्रम को समय है वो पूरा होने में है, तो आप अपने बहना से लेवा सीख और बरंग सुकरा। राम राम।

ग्रामीण महिलाएं सुनीति कार्यक्रम घर आंगन। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 2 बजने को है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से पहले मेडी न्यूज, फिर 2:15 पर दोपहर।

0: बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच आज कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। दोनों नेता कई विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। आज की बातचीत से भारत इटली की मित्रता को और बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को दर्शाने के लिए रोम में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे इटली के प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था में गहन परिवर्तन हो रहे हैं, भारत इटली साझेदारी उच्चतम राजनीतिक और संस्थागत स्तरों पर नियमित आदान प्रदान से निर्देशित है। दोनों नेताओं ने कहा कि उनका सहयोग इस साझा समझ को दर्शाता है कि 21वीं सदी में समृद्धि और सुरक्षा राष्ट्रों के नवाचार करने, ऊर्जा परिवर्तन का प्रबंधन करने और कूटनीतिक संप्रभुता को मजबूत करने की क्षमता पर निर्भर करेगी। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता दोनों दिशाओं में व्यापार और निवेश के प्रवाह को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यूबैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस अत्यंत उपयोगी बैठक में दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। यह समझौता ज्ञापन भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, कोरिया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग के बीच हुआ। रक्षा मंत्री ने कहा कि वे दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: ये परीक्षण आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास DRDO की टेस्ट रेंज में एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों तरह से किए गए। इस दौरान मिसाइल प्रणाली को एक एडवांस्ड इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से संचालित किया गया। इन परीक्षणों से विभिन्न परिस्थितियों में मिसाइल की सटीक मारक क्षमता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है। इस मिसाइल को हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के साथ मिलकर विकसित किया है। पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत पहल की बढ़ती उपयोगिता को दर्शाती है। इससे देश के भीतर रक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं

0: राजेश कुमार बल।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूएलपीजीएम V3 मिसाइल के सफल विकास परीक्षणों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की है। उन्होंने टैंक रोधी भूमिका के लिए हवा से जमीन मोड और ड्रोन हेलीकॉप्टर तथा अन्य हवाई लक्ष्यों के लिए हवा से हवा मोड में इसकी प्रभावशीलता के बारे में जानकारी दी। श्री सिंह ने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा कि इस तरह के आंकड़े एकत्र करने में कोई बुराई नहीं है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उत्तर बंगाल का सर्वांगीण विकास है। उन्होंने कहा कि वो विकास परियोजनाओं की समीक्षा और सरकारी योजनाओं के प्रभावों की निगरानी के लिए हर महीने एक बार उत्तर बंगाल का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल विकास मंत्री, उत्तर बंगाल सचिवालय उत्तरकन्या सिलीगुड़ी में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जनता दरबार का आयोजन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जनता दरबार के बाद दिन में 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अधिकारियों के साथ प्रशासनिक समीक्षा बैठक होगी और उसके बाद उसी दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक विकास मंत्री क्षेत्र के सभी सांसदों और विधायकों के साथ विकास कार्यों को गति देने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस 2026 के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र के महानिदेशक नवीन कुमार सिंह ने आज कहा कि देश के डिजिटल अर्थव्यवस्था से वर्ष 2030 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद GDP में लगभग 20% के योगदान देने की उम्मीद है। वे नई दिल्ली में फिक्की के साइबरकॉम के 7वें संस्करण के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मध्य प्रदेश के भोपाल में नोएडा की 33 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर त्वरित, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। महिला आयोग ने 7 दिन में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबू धाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का अंतिम संस्कार आज हरिद्वार में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति बताया।
2: मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी का जाना पूरे राज्य के लिए और देश के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है और उन्होंने सेना के अधिकारी के रूप में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं दी, अभूतपूर्व योगदान दिया। उसके बाद भारत सरकार में मंत्री के नाते और राज्य में मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने शुचिता, पारदर्शिता और अनुशासन और समय की पाबंदी, ऐसे बहुत सारे अनुकरणीय जो कार्य है अपने समय में किए, वो हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा

0: चंडीगढ़, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू की स्थिति बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान के अधिकांश जिले भी इस समय भीषण लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के 2 जिलों में लू की स्थिति को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जबकि 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। ज्यादातर जिलों में दिन का पारा 42 से 46 डिग्री वहीं रात का तापमान 46 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन को लेकर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित रखने, जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ छाया और पेयजल का प्रबंध करने को कहा गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: पंजाब और हरियाणा में भी भीषण गर्मी जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
2: चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरेंद्र पाल ने आकाशवाणी को बताया कि आने वाले 3-4 दिनों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान बढ़ेगा। दोनों राज्यों के पश्चिमी जिलों में लू की स्थिति रहेगी। पंजाब में ये जिले अमृतसर, फिरोजपुर, तरनतारन, मानसा, संगरूर, बठिंडा और मुक्तसर होंगे और हरियाणा में हिसार, रोहतक, झज्जर, भिवानी, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा गर्मी महसूस होगी। पिछले 24 घंटों में पंजाब में फरीदकोट 47.3 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा में रोहतक 46.9 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म जिले रहे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से बीजिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों में बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 101 अंक गिरकर 75,100 जबकि निफ्टी 24 अंक की गिरावट के साथ 23,594 पर कारोबार कर रहा था। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल ULBGM-V3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का।

0: लता मंगेशकर और मुकेश का गाया गीत अभी आपने सुना, फिल्म थी पारस मणि।
1: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान हमारी आवाज़।

0: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की युगल आवाजों में भी आप सुन रहे थे उपासना फिल्म का गीत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चूरू से तराने नए पुराने।
1: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

कुमार सानू और अलका याग्निक के गाए फिल्म सिर्फ तुम के इस गीत के साथ ही अब आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम तराने नए पुराने यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय दिन के 3 बजे हैं। अब हमारी आज की पहली सभा यही संपन्न होती है। शाम 4:58 पर दूसरी सभा में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी आज की दूसरी सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं। सभा की शुरुआत में युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम

0: कार्यक्रम युववाणी सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। केशव देव तंवर की ओर से
1: और आपके साथी पंकज शर्मा की तरफ से नमस्कार साथियों।
0: तो आज का कार्यक्रम है आपके लिए खास। बुधवार का दिन और शाम के 5 बज चुके हैं और आप श्रोता सुनने के लिए बेकरार हैं कार्यक्रम युववाणी।

0: जी हाँ दोस्तों, आपका और हमारा प्यार ही है जो हम आपसे जुड़े हुए हैं आकाशवाणी चूरू के माध्यम से, और आप सुन रहे हैं इस वक्त कार्यक्रम युववाणी। और आज के इस कार्यक्रम में हम आपसे चर्चाएं करेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित। तो आज हम पहला विषय लेंगे, जीन एडिटिंग तकनीक क्या है, और इस बारे में हम आपसे बातें करेंगे।
1: जी हाँ दोस्तों, जीन एडिटिंग तकनीक, जैसा कि आज का हमारा थीम है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। हम सभी जानते हैं कि विज्ञान का जो क्षेत्र है वो अनंत विस्तार है, और यहाँ संभावनाएं जो हैं वो अनंत हैं। हमारे जो वैज्ञानिक हैं, हमारे जो रिसर्चर हैं, जो दिन

0: रात मेहनत कर रहे हैं, वो ऐसी क्रांतिकारी तकनीकें निकाल के ला रहे हैं जिससे मानव जीवन सुगम हो और बहुत सारी समस्याएं, भले वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, अनुसंधान के क्षेत्र में हो या सामरिक महत्व के क्षेत्र में हो, सभी में फायदा, किफायत और सुगमता ऐसी तकनीकों के माध्यम से हमें मिलती रहे। उन्हीं में से एक तकनीक जीन एडिटिंग तकनीक, या जिसे बोलते हैं हम जीनोम एडिटिंग, यह एक क्रांतिकारी तकनीक है जो वैज्ञानिकों को किसी जीव के डीएनए में सटीक और नियंत्रित तरीके से बदलाव, यानी जीन को जोड़ने, हटाने या बदलने की अनुमति देती है। यह तकनीक बिल्कुल एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह है जो फाइंड एंड रिप्लेस के कमांड की तरह काम करता है। जीन एडिटिंग जो कार्य प्रणाली है, इसका उपयोग, इसकी चुनौतियां हमारे सामने किस प्रकार आती हैं, कैसे इसको काम में लिया जाता है और कैसे ये हमारे लिए काम करती है, ये जानकारी हम हमारे साथियों के साथ साझा करेंगे।
1: जी, आणविक कैंची होती है, इसके लिए सबसे लोकप्रिय प्रणाली CRISPR-Cas9 यानी CRISPR-Cas9 है। इसमें Cas9 एक आणविक कैंची की तरह काम करता है जो डीएनए के एक विशिष्ट हिस्से को काटता है।
0: साथियों, जैसा हम समझ रहे हैं कैंची शब्द, हम कहीं भी देखते हैं एक सामान्य रूप से, तो कैंची जो है वो आमतौर पर काटने के काम में आती है, भले ही हम सिलाई के उपयोग से देखें, किसी टेलर मास्टर की दुकान में देखें
1: या फिर किसी डॉक्टर के पास
0: देखें जो शल्य चिकित्सा करते हैं, उसी तरह इसको आणविक कैंची बोलते हैं। इसमें डीएनए के विशिष्ट हिस्से को अलग किया जाता है। एक गाइड या तकनीक होती है आरएनए, ये जो तकनीक है ये आणविक कैंची को डीएनए के सटीक स्थान तक पहुंचने में मदद करता है। सामने ये भी तो चुनौती रहती है ना कि अगर किसी विशिष्ट हिस्से को काटना है तो विशिष्ट हिस्सा कौन सा उसकी पहचान कैसी होगी, तो उसमें जो गाइड का काम करता है वो है आरएनए।
1: जी, मरम्मत की बात करें तो डीएनए कटने के बाद कोशिका का प्राकृतिक तंत्र उस टूटे हुए हिस्से की मरम्मत करता है जिससे वैज्ञानिक वहां नया आनुवंशिक कोड जोड़ लेते हैं।
0: अनुवांशिक शब्द जहां आता है, हम ये मानते हैं कि इस चीज को हम पीढ़ी दर पीढ़ी से जोड़ के देते हैं।
1: सही बात है।
0: अब ये बात है कि ये जो तकनीक है, इस तकनीक का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं या कौन से क्षेत्र में ये तकनीक हमारे लिए उपयोगी है। खास तौर से ये तकनीक जो है वो चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस तकनीक के माध्यम से हम कैंसर, स्किल सेल एनीमिया और हीमोफीलिया जैसी अनुवांशिक
1: जो जेनेटिक बोलते हैं,
0: हाँ, जो पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे ऊपर शब्द हमने काम में लिया था और
1: जैसे कईयों को समझ में नहीं आया, हाँ, तो हम जैसे दादा का कोई बीमारी है दादा, हाँ, के, हाँ, तो वो उसके बेटे में लगना, हाँ, फिर उनके पोते में आना, ये
0: अनुवांशिक होती। तो कैंसर, स्किल सेल एनीमिया और हीमोफीलिया जैसी अनुवांशिक जेनेटिक, जिनको हम बोलते हैं कि बीमारियों के स्थायी इलाज में यह तकनीक बेहद कारगर साबित हो रही है। विश्व पटल पर आज इस तकनीक से हजारों लाखों लोगों को इन बीमारियों के इलाज में सुविधा हो रही है,
1: लाभ मिल रहा है।
0: जो लाभ देने वाले डॉक्टर हैं, जो हमारे रिसर्चर हैं, उन सबको यह तकनीक आगे बढ़ने में निरंतर मदद कर रही है।
1: और जैसे आपने बताया था चिकित्सा के क्षेत्र में, तो इसी के साथ हम बात बताना चाहते हैं कि जो कृषि है, अपना
0: एग्रीकल्चर है,
1: उसमें भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे कि ऐसी फसलें विकसित की जा रही हैं जो अधिक उपज देती हैं,
0: बिल्कुल
1: कीट प्रतिरोधी होती है और जलवायु परिवर्तन या सूखे का सामना करने में भी सक्षम होती है।
0: जी हाँ दोस्तों, अगर हम अपने क्षेत्र की बात करें, हमारे क्षेत्र में जो बरसात है वो बहुत कम होती है, गर्मी ज्यादा पड़ती है, उष्मा जो है उसका प्रभाव ज्यादा रहता है। कम पानी में, कम लागत में अच्छी उपज दे सके, ऐसी तकनीक जिसके द्वारा ऐसे बीज सीड जो है उनका निर्माण
1: होता है,
0: हाँ, तो हर बार हम देखते हैं कि एक बात आती है कि फला बीज जो है वो कम पानी में और अच्छी उपज दे रहा है, तो निश्चित रूप से ऐसी जो सीड्स हैं उनको तैयार करने में इस तकनीक का बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही साथ हम बात करें हमारे पशुधन की, तो पशुओं में भी जो अनुवांशिक सुधार है,

0: और व्यवसायिक रूप से जहां उपयोग होता है, भले ही वो मांस के लिए हो या दूध उत्पादन के लिए हो, उनको बढ़ाने में भी इस तकनीक का बहुत सहयोग, बहुत ही सुरक्षित तरीके से इसका उपयोग जो है वो किया जा रहा है।
1: इस जो प्रमुख तकनीकें हैं उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे कि क्रिस्पर कैस 9 के अलावा वैज्ञानिक अनुसंधान और चिकित्सा में ZFNS यानी जिंक फिगर न्यूक्लियस और टेलेंस जैसी तकनीकों का भी उपयोग किया जा रहा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे संबंधित जो संसाधन है उनकी हम अगर बात करें तो जीन एडिटिंग जो तकनीक है उसकी मूल बात और ये काम कैसे करता है, इसके लिए इसका जो अपन त्वरित सारांश देखें या अपने को यूं लगे कि आज जो डिजिटल दुनिया है तो इसमें जीन एडिटिंग से संबंधित जानकारी अगर हमें लेनी हो तो अमेरिकन जीन टेक्नोलॉजी जो है वो अपन इसको देख सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म में, उस पे जीन एडिटिंग से जुड़ी समस्त जानकारियां हमें आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी।
1: साथ ही आनुवंशिक संचालन के विभिन्न अनुप्रयोगों के वैज्ञानिक और तकनीकी विश्लेषण के लिए
0: PUBMED PubMedCentral.gov पर शोध पत्र जो है वो भी अपन पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा इस तकनीक की निगरानी और नवाचार के लिए जो कदम उठाए गए हैं वो आप DST की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं।
1: जी
0: दोस्तों, जीन एडिटिंग जो है वो विज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकती है। इसके नैतिक और सुरक्षित जो पहलू है उसको लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिकों के बीच चर्चा जो है वो जारी है।
1: देखिए, हमने एक खूबसूरत सी बात की थी जीन एडिटिंग तकनीक के बारे में, बातें और भी करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गाना।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू। क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक, कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर,
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: दोस्तों, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चूरू से कार्यक्रम युववाणी, और आज का हमारा सेगमेंट होता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी थीम पर आधारित।

0: हमने पहले बात की थी जीन एडिटिंग तकनीक के बारे में, और अब हम चर्चा करेंगे इंसानी रोबोट कैसे काम करते हैं। पर
1: जी हाँ दोस्तों, सब जगह एक बात दिमाग में आती है कि कोई भी काम हो उस काम को आसान कैसे कर सकते हैं, उस काम में लगने वाला समय और जो परिश्रम है उसको कैसे घटाया जा सकता है। पूरी दुनिया में सभी इस बात पे जोर देते हैं कि ये जो समस्या हमारे सामने आ रही है इसका हम निदान कैसे कर सकते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में इस समस्या के समाधान के लिए अलग अलग प्रकार के रोबोट डिजाइन किए गए हैं। हम बात करें इंसानी रोबोट कैसे काम करता है, जहां इंसान के द्वारा कोई काम किया जाता है उसमें हम अगर रोबोट की मदद लेते हैं वहां हम ये कह सकते हैं कि ये इंसानी रोबोट है। अब जब इंसानी रोबोट की परिकल्पना दिमाग में आती है तो साथ ही ये चिंताएं भी घर करती हैं कि ये काम कैसे करता है, इसका जो काम है उसका प्रभाव कैसे होगा, जो आने वाली चुनौतियां उससे कैसे निपटेंगे। इंसानी रोबोट से अलावा अगर हम औद्योगिक साइड में जाएं तो वहां पे पैकेजिंग का काम है, लोडिंग का काम है, ये सब चीजें जो रोबोट है वो आसानी से कर रहे हैं। जहां तक इंसानी रोबोट की हम बात करते हैं, ये इंसानों की नकल करने, उनके जैसे काम करने के लिए हार्डवेयर यानी सेंसर और मोटर्स और साथ ही साथ सॉफ्टवेयर यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तालमेल से काम करते हैं। ये इंसानी वातावरण और उपकरणों के साथ आसानी से बातचीत कर सके, इस प्रकार से इनको डिजाइन किया जाता है।
0: साथ ही बात करें कि इंसानों जैसी बनावट और मूवमेंट के बारे में बात करें तो एक्सक्यूटर्स ये रोबोट के मांसपेशियों और जोड़ों की तरह काम करते हैं। बिजली, हाइड्रोलिक सिस्टम और न्यूमेटिक सिस्टम की मदद से ये रोबोट को इंसानों की तरह
1: चलने मुड़ने
0: और कोई वस्तु पकड़ने में भी बिल्कुल मदद करते हैं।
1: साथ ही हम बात करें इन हमारे शरीर में जैसे इंद्रियां होती हैं ना, उसी प्रकार से रोबोट की हम बात करें तो कैमरा और माइक्रोफोन, ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी होती हैं। इंसान की तरह आंखें और कानों की तरह सुनने के लिए, देखने के लिए, या यो कहें कि पर्यावरण को देखने और आवाज सुनने के लिए जो कैमरा और माइक्रोफोन है, ये इंसान के कान और आंख जैसे काम करते हैं, वैसे ही इंसानी रोबोट में कैमरा और माइक्रोफोन जो है काम करते हैं।
0: साथ ही इसमें सेंसर्स लगे हुए होते हैं जो स्पर्श को महसूस करने यानी टच सेंसर कहते हैं, और दबाव मापने और संतुलन यानी बैलेंस बनाए रखने के लिए विभिन्न उन्नत सेंसर लगे होते हैं।
1: जी हाँ दोस्तों, हम देखते हैं कि सेंसर जो है वो आज के समय हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान ले चुका है। छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़े साधन में सेंसर जो होते हैं वो अपनी महत्व, अपना जो महत्व है वो अलग हमें जाहिर होता है कि सेंसर जो है वो यहाँ काम कर रहा है। भले ही किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी हो उसमें सेंसर का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण होता जा रहा है। साथ ही साथ हम बात करें दिमाग की, जैसे ब्रेन इंसान के शरीर में जो महत्वपूर्ण अंग होता है वो होता है उसका मस्तिष्क, उसका दिमाग, वैसे ही अगर इंसानी रोबोट की बात करें तो ब्रेन और जो एआई है, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम बोलते हैं, ये रोबोट के दिमाग का जो मुख्य हिस्सा होता है वो होता है एआई। इसके जरिए क्या होता है कि जो रोबोट है ना वो अपने आसपास के माहौल को देखकर खुद जो है वो डेटा प्रोसेस करके निर्णय लेने की क्षमता अपने आप में डेवलप करता है।
0: साथ ही हम बात करें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP।
1: हाँ बिल्कुल,
0: इसकी मदद से रोबोट इंसानी भाषा को समझकर बिल्कुल इंसान की तरह बोलकर या लिखकर भी जवाब दे सकते हैं।
1: रोबोट्स और इंसानों की बनावट और कार्य प्रणाली है ना, इनमें जो अंतर है या समानता है इनको समझने के लिए या इनके ऊपर जो विस्तृत लेख हैं और जो गाइड्स हैं उनको हमारे जो श्रोता हैं वो अगर देखना चाहें, सुनना चाहें, समझना चाहें, पढ़ना चाहें तो मानवाकार रोबोट विकिपीडिया पे आपको ये गाइड उपलब्ध है। रोबोट कैसे कार्य करता है क्यूरा पे ये गाइड है, और ह्यूमन रोबोट कैसे काम करते हैं ये क्यूरो पे फिर आपको ये गाइड मिल जाएंगी। यहाँ आप जाके लॉगिन करके क्लिक करके मानव रोबोट से जुड़ी समस्त जानकारियां, कैसे काम करता है, कैसे असेंबल होता है और लाभ और जो मेरिट डिमेरिट है उन सब के

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर,
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
3: आरबीआई कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: जी हाँ दोस्तों, इस म्यूजिकल अंतराल और जो संदेश हमने अभी सुने हैं, इसके बाद हम वापस बात करते हैं चुनौतियों की। हम बात कर रहे थे विज्ञान आधारित, हमारा आज का ये सेगमेंट है। सामान्य चुनौतियों के साथ साथ विशिष्ट चुनौतियां भी हमारे सामने हैं, और उन्हीं चुनौतियों में एक बड़ी चुनौती है पर्यावरण प्रदूषण। आज हम बात करें, तकनीक का युग बढ़ रहा है निश्चित रूप से, लेकिन साथ ही साथ कल कारखाने, मोटर वाहन, इनसे निकलने वाला धुआं जो है वो हमारे वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। हमारे वायुमंडल में जो गैसें हैं उनको प्रदूषित कर रहा है। मानव स्वास्थ्य और हमारा जो जीवन है, जिसमें हमारे पशुधन और हमारी प्रकृति, पेड़ पौधे सब सम्मिलित हैं, उन सब को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे में कोई ऐसी तकनीक इजाद की जाए, ऐसी तकनीक जो है वो हमारे सामने आए, हम ऐसी तकनीक का निर्माण करें जिससे वायु

0: प्रदूषण, हमारा जो पर्यावरण प्रदूषण है उसको हम कम कर सके और हमारी भागीदारी जो है वो इसमें सुनिश्चित कर सके। इन तकनीकों पर हम अगर विचार करते हैं तो एक तकनीक हाइड्रोजन फ्यूल तकनीक जो है वो एक ऐसी तकनीक है जो इस थीम पर, इस सोच पर बिल्कुल सटीक बैठती है। आज पूरी दुनिया के वैज्ञानिक कहीं ना कहीं हाइड्रोजन फ्यूल तकनीक पर बड़ी तेजी से लगे हुए हैं। ये एक ऐसी तकनीक है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के माध्यम से उपयोगी फ्यूल यानी ईंधन का निर्माण करती है, जो पर्यावरण के लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही सहायक है, प्रदूषण रहित तकनीक है। ये तकनीक आने वाले समय में पूरी दुनिया का परिदृश्य बदलने की क्षमता रखती है।
1: सही बात बोल रहे हैं आप कि हाइड्रोजन फ्यूल तकनीक एक ऐसी आधुनिक ऊर्जा तकनीक है जिसमें हाइड्रोजन गैस का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है।
0: बिल्कुल।
1: और इसे स्वच्छ यानी क्लीन एनर्जी और भविष्य की ऊर्जा माना जा रहा है।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि इसके उपयोग से प्रदूषण बहुत कम होता है। हाइड्रोजन पृथ्वी पर सबसे हल्का और प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला एक तत्व है।
0: हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी है, ये एक स्वच्छ और शून्य उत्सर्जन तकनीक है। हम बात करें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो रासायनिक प्रक्रिया है, इससे बिजली बनाने की जो तकनीक है उसी को हम हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी बोलते हैं। इस प्रक्रिया का एकमात्र उप उत्पाद यानी बायो प्रोडक्ट जो है वो क्या है, वो ये है कि पानी और जो गर्मी है ये दो चीजें इस तकनीक के उप उत्पाद यानी बायो प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलती हैं, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। अब बात करेंगे ये तकनीक काम कैसे करती है। तो ये जो तकनीक है ये हाइड्रोजन ईंधन सेल यानी फ्यूल सेल बिल्कुल एक बैटरी की तरह काम करती है। और इसमें जो घटकों की अगर बात करें तो इसमें एनोड होता है, कैथोड होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। ये कैसे काम करते हैं, एनोड जो है ना वो एक ईंधन सेल के रूप में मतलब होता है। इस हिस्से में हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रवेश करती है, जहां एक उत्प्रेरक इसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों में तोड़ देता है। हाइड्रोजन को प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों में तोड़ देता है। उसके बाद नंबर आता है कैथोड का। यहां हवा जो है ना हवा से ऑक्सीजन प्रवेश करती है। अगले चरण में इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो एक विशेष प्रकार की झिल्ली होती है जो प्रोटॉन को तो अपने में से गुजरने देती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको बाहरी सर्किट के माध्यम से जाने के लिए मजबूर करती है। और ये जो प्रवाह होता है ना इस प्रवाह से विद्युत जो है वो उत्पन्न होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो चरण है वो है जल उत्सर्जन। अंत में क्या होता है कि जो बचे हुए प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन होती है, ये सब मिलकर शुद्ध जल जो होता है उसका निर्माण करते हैं।
1: तो हाइड्रोजन तकनीक के लाभ भी बहुत सारे हैं।
0: बिल्कुल।
1: लाभ शून्य प्रदूषण, इसके उपयोग से कार्बन उत्सर्जन या जहरीला धुआं नहीं निकलता है, केवल शुद्ध पानी बाहर आता है। तो एक तो पानी की समस्या का भी समाधान होगा,
0: साथ ही साथ सबसे बड़ी जो समस्या पर्यावरण प्रदूषण की थी उसमें यह तकनीक अत्यंत उपयोगी है। जैसा कि अभी आपने बताया कि इससे क्या होता है,
1: शुद्ध पानी
0: के साथ साथ कार्बन उत्सर्जन या जहरीला धुआं बिल्कुल नहीं निकलता है,
1: पर्यावरण को अच्छा।
0: बिल्कुल।
1: और तेज ईंधन बनना।
0: हाँ,
1: जैसे आजकल इलेक्ट्रिक वाहनों की तुलना में हाइड्रोजन टैंक को पूरी तरह बनने में केवल कुछ मिनट लगते हैं।
0: बिल्कुल। हम देखते हैं कि आज अगर इलेक्ट्रिक वाहनों की बात करें तो 2 से 4 घंटे जो हैं वो कम से कम चार्जिंग में लगते हैं। अगर बात करें पेट्रोल या डीजल की तो अगर सप्लाई बाधित होती है तो हम देखते हैं कि लंबी लाइनें
1: लग जाती हैं। सही है।
0: तो ये जो हाइड्रोजन फ्यूल है ना इसको ईंधन में भरने में बहुत ही कम समय लगता है, तो ये समय के हिसाब से भी बहुत ही उपयोगी है।
1: फिर बात करें तो उच्च दक्षता हाइड्रोजन फ्यूल सेल पारंपरिक दहन इंजनों की तुलना में अधिक कुशल होते हैं।
0: बिल्कुल। बात करें इसके प्रयोग की, हाइड्रोजन फ्यूल जो तकनीक है इसका हम कहाँ उपयोग कर रहे हैं, तो इस वक्त हम खास तौर से जो परिवहन है उसमें इसका प्रयोग कर रहे हैं, और उनमें भी जो भारी ट्रक हैं, जो

0: और आधुनिक जो कार्य हैं जिनको हाइड्रोजन से चलाने की जो तकनीक है उसके अनुसार डिजाइन किया जा रहा है, इनमें हम इसको काम ले रहे हैं। इसके साथ ही बिजली जो उत्पादन है जिनमें जैसे पावर प्लांट है या रिमोट है, जैसे दूरस्थ ग्रामीण रूरल एरिया जो होता है ना, इसमें प्राथमिक या बैकअप बिजली स्रोत के रूप में इसका उपयोग होता है। अब ये जो तकनीक है, इस तकनीक को धरातल पर उतारने में कुछ चुनौतियां भी हमारे सामने मुंह बाई खड़ी
1: है। वो तो होनी है।
0: इनमें सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है उत्पादन लागत। हाइड्रोजन फ्यूल तकनीक जो है उसका उत्पादन जो है आज के जो परंपरागत स्रोत हैं उनसे महंगा है। इस कारण से इस तकनीक को सुचारू करने में हमारे सामने चुनौती आ रही है लागत की। साथ ही साथ जो बुनियादी ढांचा है, जैसे हम फिलिंग स्टेशनों की बात करें तो आपको पेट्रोल डीजल है इनके भरपूर मिलते हैं, इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है उनके भी आज की समय में अच्छे मिलने लगे, लेकिन जो हाइड्रोजन फ्यूल तकनीक है इसके जो फिलिंग स्टेशन है उनका नेटवर्क अभी बहुत ही सीमित है, इसलिए हमारे सामने ये भी परेशानी जो है वो महसूस हो रही है।
1: देखिए, आपने जो चर्चा की है हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में काफी अच्छी चर्चा है, और आने वाले समय में
0: बिल्कुल
1: हम इस तकनीक का उपयोग अवश्य रूप से करेंगे।
0: हाँ, और हाइड्रोजन फ्यूल तकनीक जो है इससे संबंधित विस्तृत वैज्ञानिक पहलुओं को समझने के लिए हम इंटेलिजेंट एनर्जी जो है उसकी साइट पर जाकर उस संदर्भ में अपन इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं।
1: तो दोस्तों, आप बने हुए हैं हमारे साथ आकाशवाणी चुरू से, और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी, और आज के इस कार्यक्रम में हम आपके साथ हैं केशव देव तंवर
0: और आपका साथी पंकज शर्मा।
1: तो आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गाना।

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: दोस्तों, आज के युवानी कार्यक्रम में आप सुन रहे थे विज्ञान और प्रौद्योगिकी थीम पर आधारित कार्यक्रम था और इसमें हमने चर्चाएं की थी जीन एडिटिंग तकनीक क्या होती है, इंसानी रोबोट कैसे काम करते हैं, साथ ही आपको जानकारी दी हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी के बारे में।
2: उम्मीद करते हैं ये जो जानकारियां हैं ये आपके जीवन में उपयोगी होंगी और आप इनके बारे में और ज्यादा जानकारी लेते रहेंगे, इनको काम में लेते रहेंगे।

0: तो दोस्तों ये था आज का कार्यक्रम युववाणी। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर youthexpresschuru@gmail.com पर। फिलहाल इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत केशव देवता और
1: पंकज शर्मा को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी चुरू से किया गया। आइए सुनते हैं कार्यक्रम विवरण में हमारे केंद्र से आज और कल की पहली सभा में प्रसारित किए जाने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय के बारे में। शाम 6:10 पर आप सुनेंगे देशभक्ति फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। शाम 7 आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती और गृहस्थी। चर्चाएं होंगी राष्ट्रीय कृषि बाजार, बच्चों को दे कृषि का ज्ञान और कुटीर उद्योग और किसान। साथ ही आप सुनेंगे कुछ लोक रचनाएं भी। शाम 7 सुनिए खेती और गृहस्थी कार्यक्रम और इसके बाद रात्रि 8 आपके लिए होगा कार्यक्रम फिल्म संगीत का गुलदस्ता। नौ बजकर 15 मिनट पर सुनिए राजस्थानी लोक संगीत। 9:30 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे आकाशवाणी दिल्ली से कार्यक्रम चर्चा का विषय है। रात्रि 10 सुनिए हमारे केंद्र से शास्त्रीय संगीत और 10:30 पर गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुगम संगीत।

गुरुवार की पहली सभा में सुबह 6:10 पर चिंतन कार्यक्रम में सुनिए सकारात्मकता लाती है आभार की भावना। वंदना कार्यक्रम आप सुनेंगे 6:15 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार आप सुनेंगे 6:45 पर। भक्ति संगीत का कार्यक्रम श्री रामचरितमानस गान आप सुनेंगे 7:20 पर। कल आप सुनेंगे 382 अध्याय नंबर। सात बजकर 30 पर कार्यक्रम होगा नमस्कार चोरू। चर्चाएं होंगी नेशनल एंटी टेररिज्म डे के बारे में, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर भी आपसे जानकारी दी जाएगी। योजनाओं के बारे में जानकारी भी हम इस कार्यक्रम में देते हैं, जिसमें आप सुनेंगे सकारात्मक सोच ही आपको सकारात्मक बनाती है। जानकारी दी जाएगी पीएम 15 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल का उन्नयन। आठ बजकर 30 पर सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम। 9:10 पर देश गान। 9:15 पर लोक संगीत का कार्यक्रम मरुवाणी। 9:30 फेसबुक कमेंट्स पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम दिल से दिल तक आप सुनेंगे 9:30 पर। दिन में 11:00 सुनिए विविध भारती के कार्यक्रम।

그럼 몸베이 캔드루스 11:05 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। दोपहर 12:00 सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 12:30 पर माटी के स्वर कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे सुजान सिंह खींची और साथियों से कुछ लोक रचनाएं। 1:05 पर महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा महिला जगत, चर्चाएं होंगी व्यायाम से बढ़ती है एकाग्रता, स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व। 2:30 पर आप सुनेंगे तराने नए पुराने फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम।

कार्यक्रम विवरण में भी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज और कल की पहली सभा में प्रसारित किए जाने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय की जानकारी। एफएम पर आपने ट्यून किया है अपना मनपसंद रेडियो चैनल आकाशवाणी चुरू। शाम के 6 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारियों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार को 20 बिलियन यूरो तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
1: टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हमारी पार्टनरशिप का इंजन है। AI, क्वांटम, स्पेस और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी जैसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानने में के मामले में एकजुट हैं। सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। ये संबंध स्वतंत्रता, लोकतंत्र और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण के मूल्यों पर आधारित हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन के मंत्री ली जोंग चुल से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों पक्ष संयुक्त विकास, संयुक्त उत्पादन और संयुक्त निर्यात के अवसर पैदा करने के लिए आपसी प्रयासों का लाभ उठाने पर सहमत हुए। दोनों देशों के नवाचार इकोसिस्टम को आपस में जोड़ने वाली महत्वाकांक्षा काइंड एक्स पहल की क्षमता को पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए एक रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम

ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर भी चिंता व्यक्त की गई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। ये आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में

0: केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं है बल्कि राष्ट्र को एकजुट करने का एक सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मुंबई प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी है, जबकि कोलकाता प्लेऑफ में जाने के लिए अगले दोनों मैचों में जीत के साथ साथ दूसरी टीम के परिणाम पर भी निर्भर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by V.C. Pramod. India and Italy have decided to elevate their bilateral ties to a special strategic partnership and enhance cooperation in areas of trade, investment and new technologies. Prime Minister Narendra Modi made the announcement following delegation-level talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said the two sides deliberated extensively on enhancing bilateral ties.
2: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
1: Mr. Modi said India-Italy Joint Strategic Action Plan 2025-2029 provides a practical and futuristic framework for bilateral ties. He said both sides are working on establishing an India-Italy Innovation Center. He added that the India-Italy Defense Industrial Roadmap has paved the way for co-development and co-production of military hardware.
2: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
1: Mr. Modi also said both countries are united in viewing terrorism as a serious threat to humanity and noted that their joint efforts against terror financing have set an important global example. Speaking on the occasion, Italian Prime Minister stressed the importance of ensuring freedom of navigation in the Indo-Pacific region. Prime Minister Modi also called on Italian President Sergio Mattarella and held discussions on further expanding the bilateral partnership. Mr. Modi reached Italy yesterday on the fifth and final leg of his five-nation tour after concluding his visits to Norway, Sweden, the Netherlands and the UAE. Union Education Minister Dharmendra Pradhan has stressed the need for heightened vigilance and foolproof security arrangements to ensure a safe, secure and fair conduct of the upcoming NEET UG re-examination. Mr. Pradhan said this while chairing a high-level review meeting with Central Security and Intelligence Agencies in New Delhi today. The NEET UG re-examination for admission to undergraduate medical education will be held on the 21st of June. The Defence Research and Development Organisation DRDO has successfully completed the final developmental trials of the unmanned aerial vehicle launched precision guided missile V3, marking a significant achievement for the country's defence sector. On the occasion, Defence Minister Rajnath Singh termed it as a strategic milestone achieved towards Atmanirbharta in defence sector. The Gujarat government has extended its support to One Nation, One Election Bill. State's Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi stated this after Joint Parliamentary Committee on One Nation, One Election held discussions with a delegation of various political parties in Gandhinagar on the second day of its visit today. Defence Minister Rajnath Singh today met South Korea.

हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्मी देशभक्ति गीत। आदमी और इंसान फिल्म का ये देशभक्ति गीत महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजें, साहिर का गीत, रवि का संगीत।

कार्यक्रम की शुरुआत में आपने सुना साहिर लुधियानवी का लिखा ये देशभक्ति गीत। रवि का संगीत था, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजें थी। फिल्म का नाम था आदमी और इंसान। आइए आपको सुनाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म बादल से।

बादल फिल्म के इस देशभक्ति गीत के साथ ही देशभक्ति फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। FM 100.7 MHz और न्यूज़ोन AIR ऐप पर आप हैं आकाशवाणी चूरू के साथ। शाम के 6:20 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार।

0: सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य रोमनगरे इटली देशस्य प्रधानमन्त्रिणा जॉर्जिया मेलोनी इत्यनया सह वार्तालापं कृतवान्। उभौ देशौ द्वैपाक्षिक सम्बन्धं विशेषतः सामरिक सहभागित्वेन उन्नतिं कर्तुं निर्णयम् अकुर्वताम्। प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना उक्तं यत् उभौ देशौ भयोत्पादनं मानवतायै गभीर प्रतिरोधरूपेण पश्यतः। DRDO इति संघटनेन ड्रोन प्रक्षेपितस्य मानवरहित स्पष्टता निर्देशित प्रक्षेपास्त्रस्य परीक्षणं सम्पूरितम्। रक्षामन्त्रिणा एतद् व्यूहात्मकं सोपानत्वेन वर्णितम्। सर्वोच्चन्यायालयेन केन्द्रस्य जातिगणनायाः निर्णयस्य विरोधे याचिका अस्वीकृतम्। अपि च IPL क्रिकेट क्रीडायां ईडन गार्डन्स् इत्यत्र मुम्बई इण्डियन्स् दलं कोलकाता नाइट राइडर्स् दलं सम्मुखीकरिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य रोमनगरे इटली देशस्य प्रधानमन्त्रिणा जॉर्जिया मेलोनी इत्यनया सह प्रतिनिधिस्तरीया वार्ता कृता, यस्योद्देश्यं प्रमुखक्षेत्रेषु भारत इटली देशयोः द्वैपाक्षिक सम्बन्धान् इतोप्यधिकं सुदृढं कर्तुमासीत्। व्यापारस्य निवेशस्य तन्त्रज्ञानस्य रक्षायाः स्वक्षोर्जायाः सामरिक सहभागित्वस्य च क्षेत्रेषु सहकारस्य संवर्धनम् एव अस्य सम्मेलनस्य केन्द्रबिन्दुः आसीत्।
1: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
0: उभौ नेतारौ परस्पर हितस्य क्षेत्रीयस्य वैश्विकस्य च विकासेषु अपि चर्चितवन्तौ। भारत इटली देशयोः मध्ये चर्चां प्रतिबिम्बितं यत् वर्धमानं सामरिक सहभागित्वम् आर्थिक सहयोगस्य विस्ताराय जनानां सम्बन्धेषु च महत्त्वं प्रदत्तम्। प्रतिनिधिस्तरीया वार्तायाः अनन्तरम् उभौ नेतारौ संयुक्तं वक्तव्यं प्रदत्तवन्तौ। प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना घोषितं यत् भारत इटली देशयोः द्वैपाक्षिक सम्बन्धं विशेष सामरिक सहभागित्वेन वर्धयितुं निर्णयः कृतः। श्रीमोदी अवदत् यत् उभौ पक्षौ सहकारं वर्धयितुं विस्तृतं चर्चां कृतवन्तौ। भारत इटली नवान्वेषण केन्द्रस्य स्थापनार्थं च कार्यं कुर्वन्तौ स्तः। सः अवदत् यत् भारत इटली रक्षा औद्योगिक मार्गचित्रं सैन्योपकरणानां सह विकासस्य सह उत्पादनस्य च मार्गं प्रशस्तम्। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् उभौ देशौ नौवहन क्षेत्रेषु पत्तनानाम् आधुनिकीकरणे, रसद क्षेत्रे, नील अर्थव्यवस्थायां च मिलित्वा कार्यं करिष्यतः।
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स, मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और

स्थितिः भवितुमर्हति। अत्रान्तरे असम, मेघालय, केरलम्, माहे, उपहिमालयीय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, करैकल, अंडमान निकोबार द्वीप समूहेषु च श्वः यावत् प्रचंड वृष्टेः अपेक्षा अस्ति। अन्ते क्रीडा वार्तायां, आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां कोलकाता नाइट राइडर्स दलं कोलकाता नगरस्य ईडन गार्डन्स इत्यत्र मुंबई इंडियंस दलं सम्मुखी करिष्यति। क्रीडायाः आरम्भः सायं सार्ध सप्तवादने भविष्यति। राजस्थान रॉयल्स दलेन गतरात्रौ जयपुरे लखनऊ सुपर जायंट्स इत्यमुं दलं सप्तस्तोभैः पराजितम् इति वार्ताः।

नमस्कार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत राज्य में 5000 से अधिक नए आवास बनाए जाएंगे। सहकारी मॉडल पर आधारित देश की पहली भारत टैक्सी सेवा अगले महीने से जयपुर में शुरू होगी और राज्य के अधिकांश भाग भीषण गर्मी और लू की चपेट में, अगले 3 दिन लू से राहत के आसार नहीं। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को आज खारिज कर दिया। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा है कि इस तरह के आंकड़े एकत्र करने में कोई बुराई नहीं है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। देश के अलग अलग हिस्सों में रेलगाड़ियों में लगी आग की हालिया घटनाओं की जांच में कई मामलों में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता का पता चला है। सूत्रों ने बताया कि रेलवे ने इन घटनाओं को गंभीरता से लिया है और रेलवे सुरक्षा बल मामले की गहन जांच कर रहा है। इनमें राजस्थान की भी 2 घटनाएं शामिल हैं। पाली के अमरपुरा स्टेशन के पास एक घटना में एक अज्ञात व्यक्ति ने एक कोच के अंदर कपड़े में आग लगाने की कोशिश की जिससे आग लग गई। इसी तरह कोटा में राजधानी एक्सप्रेस में लगी आग की शुरुआत भी बाथरूम क्षेत्र से शुरू हुई बताई जा रही है। भारतीय रेलवे ने आग लगने की हालिया घटनाओं के मद्देनजर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। रेलवे ने कहा है कि अमरपुरा जैसी घटनाओं में रेलवे कर्मचारियों की त्वरित कार्रवाई से बड़ी दुर्घटनाओं को टालने में मदद मिली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ग्राम विकास चौपाल की कड़ी में आज बांसवाड़ा के चुड़ादा गांव में रात्रि चौपाल में ग्रामीणों के साथ संवाद करेंगे। वहीं कल सुबह गांव का पैदल भ्रमण कर लोगों से बातचीत करेंगे। गौरतलब है कि ग्राम विकास चौपालों के माध्यम से मुख्यमंत्री ग्रामीणों से सीधा संवाद कर रहे हैं, साथ ही सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में फीडबैक भी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री का कल डूंगरपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। वे 84 क्षेत्र के धम्बोला गांव में ग्राम विकास चौपाल करेंगे। पेट्रोलियम कंपनियों ने कहा है कि प्रदेश में पेट्रोल डीजल और एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और किसी भी प्रकार की चिंता की जरूरत नहीं है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज प्रमुख तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी की उपलब्धता की समीक्षा बैठक की। कंपनियों के राज्य स्तरीय समन्वयक मनोज गुप्ता ने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद प्रदेश में पेट्रोल और डीजल और एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति बनाए हुए हैं। सभी आउटलेट पर ईंधन वितरण सुचारू रूप से चल रहा है। श्री गुप्ता ने नागरिकों से घबराहट में ईंधन का अनावश्यक भंडारण नहीं करने का अनुरोध किया है।

0: साथ ही ईंधन उपलब्धता से संबंधित प्रामाणिक और सत्यापित जानकारी के लिए केवल तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करने को कहा है। बैठक में IOCL, BPCL, HPCL, GOBP और नायरा सहित प्रमुख तेल कंपनियों के अधिकारी मौजूद रहे। इस बीच राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने आज प्रेस वार्ता में कहा कि अन्य देशों की तुलना में हमारे यहां हालात बेहतर और नियंत्रण में हैं। श्री राठौर ने आमजन से अपील की कि वे पेट्रोल और डीजल का आवश्यकता के अनुसार सोच समझ कर उपयोग करें।
1: कोई स्टॉक खत्म नहीं है, बराबर मिल रहा है, वितरण व्यवस्था भी बराबर है, पेट्रोल पंप्स पर भी उपलब्ध है। फिजूल खर्ची नहीं होना चाहिए और आपके माध्यम से मैं देश की जनता का भी आह्वान करना चाहूंगा कि इन परिस्थितियों में संयमित तरीका अपनाएं, व्यवस्थित रूप से उपयोग में लें, आवश्यक काम सभी करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो जरूरी है वो सब काम करें, लेकिन व्यर्थ एक्सपेंसेस से बचें, फालतू अपव्यय से बचें, इसका जरूर ध्यान रखने की जरूरत है।
0: प्रदेश के आंगनबाड़ियों में अब बच्चों को उपमा की जगह पौष्टिक न्यूट्री पुलाव परोसा जाएगा। उप मुख्यमंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने आज शासन सचिवालय में इस नए न्यूट्री पुलाव के सैंपल का स्वाद चखा। उन्होंने कहा कि ये पुलाव बच्चों के स्वाद के ज्यादा अनुकूल है। उप मुख्यमंत्री ने विभाग को इसे जल्द आंगनबाड़ियों में उपलब्ध करवाने को कहा है। इसके साथ ही उन्होंने नाश्ते में दिए जा रहे मुरमुरे के स्थान पर भी समान दरों में कोई अन्य बेहतर और पौष्टिक विकल्प तैयार करने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत विभिन्न नगरीय निकायों में करीब 5000 नए आवास बनाए जाएंगे। इसके लिए हरेक लाभार्थी को स्वयं का पक्का आवास बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज जयपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के लिए गठित राज्य स्तरीय सैंक्शनिंग और मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक ली। बैठक में बताया गया कि योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से 1.5 लाख रुपए और राज्य सरकार की ओर से 1 लाख रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। इसके तहत कुल 125 करोड़ 60 लाख की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इन आवासों के लिए अंतिम मंजूरी केंद्र सरकार की 26 मई को होने वाली CSMC बैठक में मिलेगी। प्रदेश में स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 की तैयारियों के तहत विभिन्न शहरों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं। जोधपुर नगर निगम द्वारा मुख्य मार्गों और सार्वजनिक स्थलों पर वॉल पेंटिंग की जा रही है। इसके तहत राजस्थानी संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण पर आधारित कलाकृतियों के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है, जिससे पुराने कचरा पॉइंट अब आकर्षक सेल्फी पॉइंट में बदल गए हैं। पाली नगर निगम द्वारा शहर को सुंदर बनाने के लिए सिटीजन फीडबैक अभियान चलाया जा रहा है। निगम आयुक्त नवीन भारद्वाज ने नागरिकों से QR कोड स्कैन कर फीडबैक देने और शहर को बेहतर रैंक दिलाने में सहयोग की अपील की है। सहकारी मॉडल पर आधारित देश की पहली भारत टैक्सी सेवा अगले महीने से जयपुर में भी उपलब्ध होगी। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने आज जयपुर में आयोजित सारथी संवाद कार्यक्रम में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिल्ली, मुंबई और लखनऊ के बाद अब जयपुर में भी ये अनूठी सेवा शुरू होने जा रही है। ये आमजन को किफायती और सुरक्षित सफर का विकल्प देगी। श्री दत्त ने कहा कि इस सहकारी सेवा में कोई बाहरी कंपनी मालिक नहीं होगी, बल्कि टैक्सी चलाने वाले चालक यानी सारथी ही इसके वास्तविक मालिक होंगे। इससे चालकों को निजी कंपनियों की मनमानी और हिडन चार्जेस से मुक्ति मिलेगी। इस अवसर पर मौजूद टैक्सी चालकों ने भी इस स्वदेशी सहकारी पहल की सराहना की। पश्चिम मध्य रेलवे मुख्यालय ने कोटा मंडल के 3 रेलवे स्टेशनों को जंक्शन स्टेशन घोषित किया है। रेल प्रशासन की इस घोषणा के बाद अब

0: गंगापुर सिटी रामगंज मंडी और गुडला स्टेशनों को जंक्शन के नाम से जाना जाएगा नई रेल लाइनों और कॉर्ड तथा बाईपास के लाइन से शुरू होने से इन स्टेशनों का दर्जा बढ़ाया गया है रेलवे अधिकारियों ने बताया कि इन स्टेशनों के वर्तमान अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल कोड पहले की तरह यथावत रहेंगे केवल उनके नाम के आगे जंक्शन शब्द जोड़ा गया है राज्य में अधिकांश भाग भीषण गर्मी और लू की चपेट में है इससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है दोपहर के समय सड़कें सूनी नजर आ रही हैं वहीं बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है प्रशासन की ओर से गर्मी से बचाव के लिए विभिन्न स्थानों पर छाया के प्रबंध किए गए हैं और सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है लोगों के साथ साथ पशु और पक्षियों को गर्मी से बचाने के लिए जगह जगह पीने के पानी की व्यवस्था की गई है मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में कई के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया है बीते 24 घंटों में 46.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म दिन रहा वहीं बीकानेर में सबसे गर्म रात दर्ज की गई जहां पारा 31.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया अलवर कोटा चित्तौड़गढ़ फलौदी बीकानेर और चूरू में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा गया वहीं राजधानी जयपुर में तापमान 42.5 डिग्री रिकॉर्ड हुआ और ब्यौरा हमारे संवाददाता से
1: प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। ज्यादातर जिलों में दिन का पारा 42 से 46 डिग्री वहीं रात का तापमान 46 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन को लेकर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित रखने जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ छाया और पेयजल का प्रबंध करने को कहा गया है जितेंद्र द्विवेदी आकाशवाणी समाचार जयपुर
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर भेज सकते हैं नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं ये सुझाव 29 मई तक स्वीकार किए जाएंगे और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत राज्य में 5000 से अधिक नए आवास बनाए जाएंगे सहकारी मॉडल पर आधारित देश की पहली भारत टैक्सी सेवा अगले महीने से जयपुर में शुरू होगी और राज्य के अधिकांश भाग भीषण गर्मी और लू की चपेट में अगले 3 दिन लू से राहत के आसार नहीं इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ नमस्कार

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से चूरू जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख श्रवण कुमार शर्मा ने तैयार किया है। चूरू जिले के तालछापर अभयारण्य और उसके आसपास के करीब 22 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय की ओर से इस बारे में अधिसूचना जारी की गई है। ये ESZ चाडवास, देवानी, रामपुर, सूरवास और छापर कस्बे में स्थित है। अभयारण्य में काले हिरणों और प्रवासी पक्षियों के कुदरती रहवास को खनन और प्रदूषण से बचाने के लिए ये अधिसूचना जारी की गई है। इसके अनुसार क्षेत्र में व्यावसायिक खनन, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों और भारी निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध रहेगा। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा की अध्यक्षता में अभयारण्य इको सेंसिटिव जोन मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक हुई। श्री सुराणा ने बताया कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के अंदर तक किसी नए होटल, रिसोर्ट बनाने और व्यावसायिक निर्माण की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने सभी विभागों से आपसी तालमेल के साथ काम करते हुए अभयारण्य क्षेत्र की जैव विविधता और कुदरती वातावरण के संरक्षण के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा। जिले में इन दिनों मकान सूचीकरण और गणना का काम चल रहा है। जनगणना 2027 के तहत जिले के 21 क्षेत्रों में प्रगणक घर घर पहुंचकर

0: मकानों से संबंधित जरूरी जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं। जनगणना के दौरान प्रगणकों को लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। जिला कलेक्टर ने भी नागरिकों से जनगणना कर्मियों को आवश्यक सहयोग देने और मांगी गई जानकारी सटीक तरीके से उपलब्ध कराने की अपील की है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिले के 2000 से अधिक परिवारों को मकान बनाने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक सहयोग दिया गया है। जिन लोगों के पास खुद का आशियाना नहीं था, उन्हें इस योजना से काफी मदद मिली है। गौरतलब है कि इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को शहरी क्षेत्र में आवास निर्माण के लिए विभिन्न किस्तों में 2.5 लाख रुपए तक की, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 1.25 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता उनके बैंक खातों में दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना का लक्ष्य 2028-2029 तक बढ़ाया गया है। जिले में सुकन्या योजना बालिकाओं के लिए लाभदायक साबित हो रही है। इसके तहत नवजात से लेकर 10 साल तक की बालिकाओं का बैंक खाता खोला जाता है। इसमें कम से कम 250 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए सालाना तक का निवेश किया जा सकता है, जो पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। खाता खोलने की तारीख से 21 साल या बेटी की शादी के समय मैच्योरिटी राशि ली जा सकती है। जिले में 853 से अधिक बालिकाओं के खाते पोस्ट ऑफिस में खोले जा चुके हैं। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत जिले में 21 मई को आवेदन शिविर लगाया जाएगा। रतन नगर नगरपालिका सभागार में ये शिविर लगेगा। राज्य बीमा और प्रावधायी निधि विभाग के सहायक निदेशक गणपत राम चौधरी ने बताया कि योजना के तहत पात्र आवेदकों को 3000 रुपए महीने का लाभ मिल सकता है। वित्त विभाग ने श्रमिकों, रेहड़ी पटरी पर सामान बेचने वालों और लोक कलाकारों को संबल प्रदान करने के लिए ये योजना शुरू की थी। चूरू में पिछले दिनों प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ नगर परिषद की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई। नगर परिषद आयुक्त अभिलाषा सिंह ने बताया कि शहर के अलग अलग व्यवसायिक क्षेत्रों में औचक निरीक्षण कर करीब 600 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग्स जब्त किए गए। उन्होंने व्यापारियों, थोक विक्रेताओं और आम नागरिकों से सिंगल यूज प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग पूरी तरह बंद करने की अपील की। इसके स्थान पर कपड़े, जूट और पेपर बैग के इस्तेमाल पर जोर दिया। चूरू में पिछले दिनों इनोवेटिव बूट कैंप आयोजित किया गया। राजकीय लोहिया महाविद्यालय के आई स्टार्ट इंक्यूबेशन सेंटर में इस आयोजन में जिले भर के 50 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान विभिन्न सत्रों में विद्यार्थियों को तकनीकी ज्ञान के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का दक्षता कोर्स करवाया गया। भीषण गर्मी और लू की दौर से जिले भर में आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। कई स्थानों पर पानी के परंपरागत स्रोत टाके, जोहड़ और तालाब सूखने से पानी की समस्या हो रही है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जा रही है। इसके साथ ही चूरू जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर, पेश है प्रादेशिक समाचार।

0: समाचार सुप्रीम कोर्ट जाति आधारित जनगणना रा केंद्र रा फैसला ने चुनौती देवन वाली अर्जी खारिज कीनी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 रातेत राज्य में 5000 बत्ता नुआ मकान बनाया जावेला सहकारी मॉडल माथे आधारित देश री पहली भारत टैक्सी सेवा आवता महीना जयपुर में आई शुरू भेला और प्रदेश रा घनखर हलका में लू रा हालात आवता तीन दिन लू रा थपेड़ा लागता रहवन री शंका समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर अरब समाचार विगतवार सुप्रीम कोर्ट जनगणना 2027 रा तहत जातिगत गणना करावन रा केंद्र सरकार रा फैसला ने चुनौती देवन वाली अर्जी खारिज कर दीनी है मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत री सदारत वाली पीठ कहो कि पिछाड़ी तबकारी जनता रा भला सारू जतन करण बाबत सरकार ने वारी तादाद री जानकारी भेवणो जरूरी है पीठ कहो कि ओ मुद्दों सरकार रो नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आवे है ये विचे प्रदेश में जनगणना 2027 रा तहत मकाना री लिस्ट बनावण रो काम चाल रियो है पाली जिला रा दूर दराज हलका और ढाणिया में प्रगणक घर घर जार HLO ऐप रे जरिए जानकारी भेळी कर रिया है ये डिजिटल सर्वे रा तहत हर मकान री असली लोकेशन दर्ज करी जा रही है और जनताओं 33 सवालों रा जवाब लिया जा रहा है प्रशासन जनताओं प्रगणका ने सही और पूरी जानकारी मुहैया करावन री अर्ज कीनी है देश रा न्यारा न्यारा हलका माए लाडला दिना रेलगाड़ियां माए लाई लागण रा वाकया माए सामाजिक तत्वा रा शामिल भेवन रीठा पड़ी है आमाए राजस्थान री दो घटनावा शामिल है पालीरा अमरपुरा टेसन के नवी एक घटना माए एक अनजान जना रे एक डिब्बा माए कपड़ो बाड़बारी कोशिश करण रीठा पड़ी है जिन कारण वहां डिब्बा माए लाई लागी ही कोटा माए राजधानी एक्सप्रेस माए लागी लाई रेल रा घुसलखाना स्वरूप हेवन री शंका है रेलवे मुसाफिरान ने सावचेत रहता थका शंका लायक हरकत री जानकारी रेलवे रा हेल्पलाइन नंबर 139 माथे संपर्क करण री राय दीनी है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ग्राम विकास चौपाल रातेत आज बांसवाड़ा रा चुड़ादा गांव माए रात्रि चौपाल लगार गांव वाला सागे बातचीत कर रहा है मारो काल समारे गांव रो पैदल दौरो कर लोगों बातचीत करण रो कार्यक्रम है ध्यान जोग है कि ग्राम विकास चौपाल रे जरिए मुख्यमंत्री गांव वाला सागे सीधी बातचीत कर सरकार कानियों जनता रा भला सारू चलाई जा रही योजनावां रो फायदो मिलन रे बारे में जानकारी हासिल कर रहा है मारो काल डूंगरपुर जिला रा 84 हलका रा धंबोला गांव में ग्राम विकास चौपाल लगावन रो कार्यक्रम है पेट्रोलियम कंपनियां रे मुजब प्रदेश में पेट्रोल डीजल और रसोई गैस रो जरूरी स्टॉक मौजूद है मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज तेल कंपनियां रा नुमाइंदा सागे पेट्रोलियम उत्पादों और LPG री उपलब्धता रे बारे में मीटिंग कीनी कंपनियां रा राज्य स्तर रा समन्वयक मनोज गुप्ता बतायो कि सरकारी तेल कंपनियां प्रदेश में पेट्रोल डीजल और रसोई गैस री लगातार पूर्ति कर रही है श्री गुप्ता जनताओं घबराहट में गैर जरूरी ईंधन भेड़ो नी करण री अरज कीनी इन बीच प्रदेश में राज्यसभा सदस्य और भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कहो है कि दूजा देशों की तुलना में भारत में हालात बेहतर और काबू में है व जनताओं जरूरत रे मुजब तेल री खरीदी करण री अरज कीनी
1: कोई स्टॉक खत्म नहीं है बराबर मिल रहा है वितरण व्यवस्था भी बराबर है पेट्रोल पंप्स पर भी उपलब्ध है फिजूल खर्ची नहीं होना चाहिए और मैं आपके माध्यम से मैं देश की जनता का भी आह्वान करना चाहूंगा कि इन परिस्थितियों में संयमित तरीका अपनाएं व्यवस्थित रूप से उपयोग में लें आवश्यक काम सभी करें कोई दिक्कत की बात नहीं है जो जरूरी है वो सब काम करें लेकिन व्यर्थ एक्सपेंसेस से बचें फालतू अपव्यय से बचें इसका जरूर ध्यान रखने की जरूरत
0: प्रदेश रा आंगनवाड़ी केंद्र माए अब बच्चा ने उपमारी ठोड़ पौष्टिक न्यूट्री पुलाव खिलायो चावेला उप मुख्यमंत्री और महिला और बाल विकास मंत्री दिया कुमारी आज जयपुर माए नुआ न्यूट्री पुलाव रो नमूनो चाख्यो। वे कहो कि प्रदेश रा बच्चा सारू ओ पुलाव स्वाद रे मुजब है। उप मुख्यमंत्री इन बेगोई आंगनबाड़िया माए बच्चा न दिया जावन वाला भोजन माए शामिल करन बाबत कहो। दिया कुमारी बच्चा ने नाश्ता माई मुरमुरा रिठौड़ी समान दर वाला दूजा बेहतर और पौष्टिक आहार रो विकल्प तैयार करन रा हुकम ही दीना। ए समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रिया हो। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 रातेत राज्य माए करीब 5,000 नुआ मकान बनाया जावेला। इन रातेत हर पात्र जना ने खुदरो पक्को मकान बनावन सारू केंद्र सरकार री ओर 1.5 लाख और राज्य सरकार री ओर 1 लाख रुपया री सब्सिडी दी जावे है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज जयपुर माए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 सारू बनाई ची राज्य स्तर री सैंक्शनिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी री मीटिंग माए अहलकारों जानकारी लीनी। ई योजना रा तहत 125 करोड़ 60 लाख रुपया री सब्सिडी दी जावेला। प्रदेश माए स्वच्छ सर्वेक्षण रा तहत न्यारी न्यारी ठोड़ा साफ सफाई रा खास अभियान चलाया जा रहा है। जोधपुर माए नगर निगम री ओर खास गेला और जनता रे आवन जावन री ठोड़ा भीता माथे राजस्थानी संस्कृति और पर्यावरण ने बचावन रा संदेश जुड़ी चित्रकारी करी जा रही है। पाली माए शहर ने

0: वालो बनावन सारू नगर निगम री ओरू सिटीजन फीडबैक अभियान चलायो जा रियो है। निगमरा कमिश्नर नवीन भारद्वाज जनताओं क्यूआर कोड स्कैन करर फीडबैक देवन री अपील कीनी है। जयपुर माय सहकारी मॉडल माथे आधारित भारत टैक्सी सेवारी शुरुआत आवता महीना रा पहला सप्ताह माय करण रो प्रस्ताव है। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक आज जयपुर रा अपेक्स बैंक माय राखी जिया सारथी संवाद कार्यक्रम माय आ जानकारी दीनी। दिल्ली मुंबई और लखनऊ पाछे अब जयपुर माय जनता न किफायती और सुरक्षित सफर रो सुबितो मुहैया करावन सारू आ सेवा शुरू करी जावेला। श्री दक कहो के ई सेवा माय कोई बाहरी कंपनी मालिक नहीं भेला जिनू ड्राइवरा ने गैर सरकारी कंपनियां री मनमानी छुट्टी मिलेला। पश्चिम मध्य रेलवे कोटा मंडल रा गंगापुर सिटी रामगंज मंडी और गुड़ला टेसना रे जंक्शन भेवन रो ऐलान कीनो है। रेलवे रा अहलकारा ने मुजब अब आठ टेसना रा नाम सागे जंक्शन जोड़ियो चावेला। इन सारू जरूरी बदलाव रा हुकम जारी कर दिया गया है। अरब मौसम प्रदेश माय पड़ रही जबरदस्त गर्मी बीच घनखट होना दिन री बगत पारो 42-46 डिग्री सेल्सियस बीच जबकि रात री बगत 26-31 डिग्री सेल्सियस बीच दर्ज करियो जा रियो है। जनता सागे जनावरा और परिंदा नई गर्मियों बचावन सारू न्यारी न्यारी ठोणा पीवन रा पानी री व्यवस्था करीची है। मौसम विभाग आवता दिना कई ठोणा लू बाजन सारू चेतायो है। इविचे लाडला 24 घंटा माय श्री गंगानगर 46.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सागे राज्य माय सबों गर्म ठोर रहो। बीकानेर माय रात्रि बगत सबों बत्तो 31.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज करीचियो। अलवर कोटा चित्तौड़गढ़ फलौदी बीकानेर और चूरू माय बत्तों बत्तो तापमान 44 डिग्री सेल्सियस ने पार कर गयो। राजधानी जयपुर में आई 42.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान नापीचियो। इबीच गर्मियों बचाव सारू प्रशासन री ओर न्यारी न्यारी थोड़ा छाया रा प्रबंध करी चिया है और सड़क माथे पानी रो छिड़काव करियो जा रियो है। और ब्यूरो माणा खबर नवीसू।
1: प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही है। ज्यादातर जिलों में दिन का पारा 42 से 46 डिग्री वहीं रात का तापमान 46 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन को लेकर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित रखने, जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ छाया और पेयजल का प्रबंध करने को कहा गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर अस्पताल में लू रा मरीजों रा इलाज उन जुड़िया सगला जरूरी इंतजाम करन रा हुक्म दीना है। भरतपुर जिला में सेवर रा सरसों अनुसंधान संस्थान री ओर मेरा गांव मेरा गौरव अभियान रा तहत रणधीरपुर गांव में किसान संगोष्ठी राखी ची। इनमाए कृषि वैज्ञानिक किसाना ने खेती बाड़ी रा बेहतर तरीका प्राकृतिक खेती और मिट्टी रो स्वास्थ्य बेहतर बनावन रे बारा माए जानकारी दीनी। खेती बाड़ी रा जानकार किसाना ने मिट्टी री ताकत बचार राखन सारू जैविक खाद गोबर री खाद और ढेंचा सरीखी हरी खाद काम लेवन बाबत कहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए 31 मई ने विचार बतावेला आ ई कार्यक्रम री 134वीं कड़ी फैला। ई सारू आप ई मुफ्त नंबर 1800117800 माथे 29 मई ताई राय दे सको हो। नंबर ओ जू सुन ले राव सा 1800117800। नरेंद्र मोदी ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम रे जरिए ही विचार भेजा जा सके है। संस्कृति मंत्रालय वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता सारू प्रविष्टियां जमा करावन री आखिरी तारीख 31 मई ताई बता दीनी है। आहोड़ फिल्मा बनावन वाला रचनाकारा और जनता ने समकालीन प्रारूपा रे जरिए वंदे मातरम री भावना ने नुआ सिराऊ पेश करन री प्रेरणा देवे है। होड़ रील्स एआई आधारित फिल्मा और नानी फिल्मा री श्रेणिया माई फैला। हनुमानगढ़ जिला में तलवाड़ा कने भूरानपुरा गांव में स्वास्थ्य विभाग नकली दूध बनावन रो कारखानों पकड़ियो है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा बतायो के मौकाओं मोटी तादाद में नकली दूध और अमानक सामग्री नष्ट कराई ची। आखिर में खास समाचार एक कर फिर सुन ली रहो। सुप्रीम कोर्ट जाति आधारित जनगणना रा केंद्र रा फैसला न चुनौती देवन वाली अर्जी खारिज कीनी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 रा तहत राज्य में 5000 बत्ता नुआ मकान बनाया जावेला। सहकारी मॉडल माथे आधारित देश की पहली भारत टैक्सी सेवा आवता महीना जयपुर में आई शुरू फैला। और प्रदेश रा घनखर हलका में लू रा हालात आवता तीन दिन लू रा थपेड़ा लागता रहवन रा आसार। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। आप किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्राम भारती।

0: कार्यक्रम खेती और गृहस्थी सुनने वाला सगला किसान भाई बहन ने भाई तेजे कनिशो
1: और पंकज भाई का न्यू मोकला मोकला
0: राम राम राम राम पंकज भैया राम राम
1: राम ही राम भाई जी।
0: तो आ दिनाम तो मड़ी की एक थोड़ा सा तावड़ियो ज्यादा ही है हो
1: थोड़ा सा तो के काम तो एकदम पूरो परवान पर है। देखो गर्मी को बहुत भी है
0: तो तावड़ियो ज्यादा है तो आपने चाहिए कि भाई एक तो आपने खुद को बचाव रखा गर्मी से लू ताप घात को लपड़ो ज्यादा रहे आजकल है तो पानीपात कन रखा गाबो सिर पर रखा सुती गाबा पेरेड़ा रखा जोर तो है जदी बाहर नहीं निकला
1: बाहर में भी बिता ही निकला जितो काम है जो काम सजता है वो उठा के ग्राम बढ़ जाओ
0: बिल्कुल बिल्कुल और ध्यान और रखा गए भाई थोड़ा सो के नमी वाला स्थान पर रुकने की कोशिश करा थमने की कोशिश करा छाया आसे पासे हो तो बैठे को ध्यान रखा पानी पात करने पूरो रखा कि एक एंकमा एक बार तावड़ो लाग जाए करे ने तो फिर 15-10 दिन
1: चांका सिर को नहीं आवे
0: बिल्कुल सागी चांका ढील आवे को नहीं तो ध्यान और रखनो है कि एक तो ज्यादा हो ज्यादा जहाँ छाराबड़ी कोई नींबू वगैरह पानी कोई कैरी को पानी जूस वगैरह मानो है पानी खूब पियो छाराबड़ी खूब पियो है ना
1: भाई थे हाँ। बात बता रहे हो ना एक छोटी सी संखी याद आ गई के बाजरो घणो बलवंत है छाछ बड़ी गुण खान बाजरो घणो बलवंत है छाछ बड़ी गुण खान और राबड़ी पीवे आ मरुदरा निरोगा रहवे प्राण
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: देखो तो राबड़ी की महिमा बड़ी है
0: आजकल तो खाटाड़ो राबड़ है जो को आप मान के चलो दिन नींद की दवाई है
1: प्रकृति को अपन दीड़ो अमृत है वो इस समय को बहुत ही बढ़िया व्यंजन
0: बिल्कुल प्याज घेर के राबड़ सरकाओ छा मिला गए तो ए बढ़िया चीज है फिर इनके साथ साथ गर्मियों अपन बचाव करने के लिए आपनों छोटे टावरा को आरबे के साथ साथ पशुआ को गर्मियों बचाव जरूरी है पशुआ ने दिन में 3 बार ज्यादा पानी पियो
1: हाँ 30 लेकर तो भी पानी हाँ, पूछना जरूरी है
0: एक बांगी की एक छया को खास ध्यान रखो क्योंकि छोटा बच्चा हिम्बे और धिनोड़ी जी की हिम्बे है ना तो बन की एक तावड़ो से तंदेर कौन लगे
1: कौन लगे कौन
0: तो बढ़िया जिकी में सिद्धि लुआ की ओट हो ना बियान को छान छपरो हो कोई भी झोंपड़ो हो चाहे छान छपरो हो खुडी हो है ना

पशु भी गर्मी जाने अपना आदमी भी जाने पर आप थोड़ी सी छेड़छाड़ कर दी अपने जो वास्तविक जो अपने जीव

0: तो शरीर में नुकसान की स्थिति हो सके
1: बन सके।
0: हाँ, और अचानक धूप अचानक कोई ठंडा एकदम एकदम ठंडो मकान हो रही है बिगमा बड़ांगा ने, तो भी पहले आपा ने कहे के साधारण हवागमा थोड़ी देर बैठ के फिर बिगमा प्रवेश करना चाहिए। नहीं तो कहे के देखो अधिक सर्दी अधिक गर्मी और दोनों चांस के मिलन हो जाने जद कहे के गड़बड़ हो सके। तो ध्यान रखने की बात है, छोटे छोटे में तो अपन बेरो ही है सारी बातों को कि है कि कई बार यहाँ थोड़ा सो आड़स हो जाएगा ठेसी जाके वहां के तोलिए की जरूरत है।
1: हाँ, लापरवाही
0: लापरवाही कारनामा की ताती निकल यार पछे के गए बैठो कानी देख बो कर गुम सुम हेड़ो। फिर कई बार क्या हुआ कि यूं उल्टी दस्त की स्थिति हो सके
1: पानी की कमी
0: पानी की कमी भी हुआ है उल्टी होनी शुरू हो जा दस्त होने शुरू हो जा
1: डायरिया
0: हो जाता भाई गंदगी वगैरह होती है ना मैं एजा का कीटाणु ज्यादा तो मैं एजा वगैरह हो जाता। तो ऐसी चीज को कह गए थोड़ा सो ध्यान रखना है हार्ड चीज नहीं खानी
1: दोरी पचे।
0: हाँ दोरी पचे बा नहीं खानी क्योंकि हरेक चीज दोरी पचन वाली गर्म हो
1: भाई। अब तो ठंडी तासीर की जगह चीज
0: ठंडी तासीर की चीज है खाओ ज्यादातर जी तरल के रूप में भोजन लिए जाने चाहे वो खिचड़ी के रूप में कड़ी रायतो राबड़ी छा
1: रायतो
0: जूस वगैरह इन की चीजों के बारे में ध्यान रखो।
1: फोगलिये को रायतो ही टाइम ठंडो चोखो रहे राबड़ी की थे बात ही कर दी। हाँ, कैरी को पानी है पुदीने को रस हाँ, है बील को शरबत है
0: बिल्कुल
1: ए सब चीजा जिकेन है वे आराम ली जाकर गर्मी के मायने शीतलता यानी आपने शरीर ने ठंड देने वाली चीज है सगड़ी सगड़ी
0: वाह बिल्कुल। फिर दूसरी बात नहीं आप करो हो रहा पंकज भाया के आपने जो खेती बाड़ी है खेती बाड़ी फायदेमंद जदि हो जदि भोपाल आपस में हो
1: बात भी सही है,
0: है?
1: हाँ।
0: और आपस में व्यापार करने के लिए एक योजना है राष्ट्रीय कृषि बाजार
1: बिल्कुल।
0: तो इनकी जानकारी थोड़ी सी कि मैं बताओ ने कि आपान करनो है कि कृषि बाजार वगैरह है कि
1: भाई देखो कहते थे एक बात बताई ने के खेती बाड़ी जकी अब्बा है किसान की रीढ़ और रीड मजबूत कद होवे जद आपा आपस में एक दूसरे को सहयोग करा एक मायने ओ है के भाई आपने एरिया के मायने जकी खेती बाड़ी को धान है नाज है ठीक है ने वो नाज आपा राजी कुशी काट के और बात आवे जद बेचने की या दो रुपया आंटी माने की तो बिक के लिए एक अयाल को प्लेटफार्म आपन मिले जटे अपन आपनो जो को उत्पाद है बिको उचित मूल्य मिले तो जका भी क्षेत्र विशेष का कृषि उत्पाद है जके एरियम जो भी नाज हो मान लियो बाको व्यापार जको है या बाकी सही कीमत मिले इके लिए ई नाम या राष्ट्रीय कृषि बाजार नाम को एक प्लेटफार्म या व्यापार मंच मान लियो जके ने भारत सरकार शुरू करियो इन अखिल भारतीय स्तर को इलेक्ट्रॉनिक व्यापार मंच कैस का
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: वो के करे के देश भर की जितनी भी कृषि उपज मंडी है बन से ने एक डिजिटल नेटवर्क को जोड़ दे
0: जी
1: यूं के वे के किसान जको ने वो आपकी उपज के लिए और सौ बेहतरीन जको मूल्य है या ऊंची जकी कीमत है बा भी ई नाम या राष्ट्रीय कृषि बाजार के मां ले सके और बिन बिचौलिया की भी जरूरत
0: कोनी
1: समझ गया
0: भाई अट्ठे ही एक बचाव है किसान को।
1: हाँ
0: के सिद्धो व्यापारी मतलब जकन जरूरत है भी तने आपनो उत्पादन सिद्धो पहुंच गया
1: हाँ
0: बीच में कोई बिचौलिया नहीं होने कोनी
1: कोनी
0: तो वो कहेगा आपन भी की जकी आय है वो ठीक हो जा।
1: हाँ
0: अब आप लोग मुनाफा हो तो लोग खा जाए बीच
1: में
0: कदे बाड़ाड़ो ले जा कदे वो मुनाफा कमाने ले जा है ना तो पूछती पूछती केवड़ो घटता नहीं पूछते अभी वो लाभ आपने मिले को
1: मिले को नहीं सिकाली बात है वो गस्तो गस्तो गस्तो ही जा। अब आज की योजना है कि योजना को उपयोग आप क्या करा और ये योजना में के विशेषता है
0: बिल्कुल
1: तो इन आप एक राष्ट्र एक बाजार के नामों भी बोल सका।
0: हाँ

0: प्लेटफार्म ऑफ प्लेटफार्म पीओपी के रूप में काम करे वो की करे के किसाना ने जबकि आपकी भौतिक रूप मौजूद जकी फसल है बात तो आप जहां बेच सका भाई मान लो आपने खेत में काटी चाहे बगाम में बेच दो शहरा के बेच दिया कटे बेच दिया इसके अलावा पूरे देश भर में मतलब जितनी कृषि उपज मंडी राष्ट्रीय कृषि बाजारों जुड़े दिए बाक मायने भी अपनी फसल ने बेचने की सुविधा दे अपन यू लागे के भाई मान लो जयपुर की मंडी में अपन ने दाम सावल मिल रही या लखनऊ की मंडी में दाम सावल मिल रही
1: बिल्कुल
0: तो अपा अपनी फसल ने राष्ट्रीय कृषि बाजार के माध्यम बठे बेच का अपन 2 रुपया सावल मिल जाए। दूसरी बात के इको जो को लाभ है ने वो और सागे सागे व्यापार है वो पारदर्शी है मतलब ई नाम के जरिए किसान जे ऑनलाइन बोली मान लियो क्योंकि बिग माइन आप धान जो को है वो आपने बता दियो तो जो को खरीदार है वो इन खरीदेगो गुणवत्ता को परीक्षण अब जे मान लियो आप अपनी फसल जकी है बा ई नाम के जरिए बेची
1: बिल्कुल
0: ऑनलाइन बोली करके रकम तय करके बेची तो इको सब मोटो फायदो तो है कि जो ही आपनी डील फाइनल हुई मतलब आपनी फसल की बिक्री तय हुई उतने फसल को जको भी प्रतिफल है जको भी जितने पिस्सा में अपन बेचिए सीधी भाषा में बे जगह रुपया ही वे आपने बैंक खाते का माइन पारदर्शी ई भुगतान जगह ई पेमेंट बोला भी के जरिए अपना
1: खाता बिल्कुल बिल्कुल
0: तो फसल भी गिर पिस्सा मिल गया कोई जोड़ झपाड़े
1: जोड़ झपाड़ कौन रहे बिल्कुल।
0: दूसरी बात के उसको पोर्टल है ई पोर्टल के ऊपर व्यापार जुड़ेड़ी जकी चीजा है मतलब धान तो है ही है एक सागे सागे और बहुत सारी इसी चीजा ही ठीक है ने कृषि उत्पाद है फसल है और के बोला आपा रा बायोमास बोला ना जकाने कृषि का अवशेष
1: अवशेष बिल्कुल
0: सब सब चीजा को व्यापारी के ऊपर उसके।
1: अच्छा पंकज भाई एक बात और देखिए
0: हाँ
1: अब के एक आपने या अब देखोगे तेल की कमी चल रही है दुनिया में आपने भी चल रही है भाई बारह आनो बंद हो रहे तो कमी तो नहीं होनी
0: पूरी दुनिया का मैं नहीं
1: तो मैं ये सुनी कि आपने तेल में मिलाने वास्ते वो के इथेनॉल हो कौन सो बना हुए वो आपने गन्ने और कृषि का
0: कृषि उत्पाद है
1: हाँ कृषि को जो अवशेष बच्चे गेहूं तैयार
0: हो बिल्कुल बिल्कुल तो वो जो पोर्टल है ना ई पोर्टल के ऊपर लगभग लगभग 247 ज्यादा कृषि उत्पाद फसल और कृषि अवशेष से अन्य व्यापार के लिए जोड़ रखे
1: बताओ
0: 247
1: बताओ 250 हो गया
0: लगभग
1: हाँ
0: भाई
1: कहने की बात है कि पहले देखो स्वामी विवेकानंद यहाँ क्या करता के भाई भारत सोने की चिड़िया यही को नहीं भारत में जब कद भी कोई भी आदमी समझदार आदमी के भाई ठोकर मारेगा उन्हें बटे रुपया निकलेगा तो भाई आज निकलना
0: काम करनी है जमीन के जरिए जमीन
1: भाई आज काम करने आदमी है तो कोई क्यों बेच रहे है हर चीज बिक्री है गोचाऊ लेके कांकरों लेके रेत माटी राख कोयलो सब कुछ बिक्री है
0: कोई चीज बाकी नहीं
1: बेचनी होती
0: बेचनी होती है
1: मेहनत करनी आदमी चाहिए
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: भाई आज के दिन थोड़ा बहुत काम करने आदमी है जो को भूखो कौन मर सके
0: कौन मर सके आज की योजना अपन बात करी है ना
1: हाँ।
0: राष्ट्रीय कृषि बाजार इसकी अगर ज्यादा जानकारी कोई ने लेनी हो तो जकी आधिकारिक वेबसाइट है बिक ऊपर जासका किसान है व्यापारी है या अन्य कोई भी हितधारक है वो आपको ऑनलाइन पंजीकरण करवा सके या ज्यादा जानकारी लेने के लिए ईनाम पोर्टल पर जा सके सागे सागे सरकारी पात्रता और आवेदन प्रक्रिया जानने के लिए माई स्कीम को जो को पोर्टल है वो आप देख सका ई योजनाओं जुड़ेड़ी सारी जानकारी आप ले सका
1: बिल्कुल तो पंकज भाई बड़ी ठावड़ी जानकारी दी किसानों के एक आय दुगुनी करने वास्ते खुद ने प्रयास करना पड़े
0: बिल्कुल
1: खुद ने नया नया तरीका निकालना पड़े अब ये है कि आप कह दें मार तो कोई दूसरो आय दुगुनी कर जाए तीन गुणी कर जाए दूसरो कदे कोई करेगी बा क्या करे ने खुद मरे स्वर्ग मिले है
0: ना
1: खुद काम कर सी ने खुद नई नई तकनीक देख सी सरकार की बड़े बड़े उद्योगपतियां की योजनाओं देख सी और बैंक मायने लाभ की स्थिति अपन प्राप्त हो सी,
0: जब
1: आप काम धाम सही हो सी।

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक।

कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: तो अभी पंकज भाई आप वो गीत रो सुनो संदेश पहले ढगलाराम पार्टी रो गए लो। देखो ठावड़ो संदेश सिंह में दियो के घी डूड़े जी सो पण बहुत डूड़े तो जी दोरो
2: और अब सी वक्त लगो है ना वो भी तातेड़ में देखो पानी की महिमा ही नारी है।
1: आपने तो ये लगे है कि भाई पानी मिल जाए लेकिन दूर दराज
2: जगह नहीं है
1: बटे बहुत दूर दूर पानी लेना पड़े।
2: सही है
1: पीने खातर पानी क्योंकि जदी तो कहे जाए ना जली जीवन है तो ये खातर पानी की महत्ता बताइए
2: बूंद बूंद मचान की जरूरत है।
1: तो आके बातड़ी आप पानी वाली भी और सगड़ी बात भी टावरान भी बतावा कि भाई पानी ज्यादा ना डोलिया करो।
2: हाँ नाओ जद भी ज्यादा मत डोलिया करो पीओ जो ओक लगा के पीओ डोले ज्यादा है जो टोक दे आप बोलो डोलो मत सरो पानी जो है वो ज्यादा डोलो मत बचाने की जरूरत है पानी ने बचाने की जरूरत है। तो जैया टावरान आप घर बाद की बात बतावा पानी पात की बात बतावा भैया देखो अपना जो टाबर है टाबरा ने अगर आप खेती बाड़ी यू जुड़ेड़ी जानकारी भी देंगा तो भाभी अपने लिए अपने टाबरा के लिए आने वाले समय में बहुत उपयोगी है। अब देखो एक कारण वो है कि खेती बाड़ी के डूबे टाबर जद ही पड़सी जद भी ने इस चीज को ज्ञान हो सी इस चीज की जानकारी हो सी।
1: अरे एक बात बताऊ पंकज भाया के हालत आ हो रही है कि टाबरा ने अभी ध्यान को नहीं कर जगह बहुत बड़ा शहर है ना तो बच्चा ध्यान भी करी रोटी खा रहे हैं के चीज की बन रही है भी को नाम जाने के आ रोटी है
2: ना
1: आ सब्जी है लेकिन बन इन चीज को पतो को नहीं के भी आ रोटी कौन से अनाज की है गेहूं की है बाजरे की है रागी की है क्या की है सब्जी है तो बिकमा के चीज पड़े तो ए जानकारी इकट्ठे हुए कि आपना टावरा ने जब आप हर चीज बतावा कि भाई इन चीज ने भी किसान उगावे इन चीज ने भी किसान उगावे इन चीज ने भी किसान उगावे। अब आपने देख लियो दे पहनने का कपड़ा लेके सगलो काम किसाना को ही है
2: बिल्कुल
1: चाहे मसाला ले लियो चाहे दाड़िया ले लियो तेल ले लियो आटो ले लियो है और पहनने का कपड़ा तो कपास वगैरह उत्पादक किसान ही है। अब के है कि पशु आप रखा तो जगह चमड़े का जूता वगैरह है चंपल है जूता है जूती है
2: बेल्ट है पर्स है
1: हाँ बिल्कुल। तो ए के है कि सब उत्पादन
2: गड़न गड़े एक मैंने किसान को जो योगदान है वो सागर चाल सी
1: तो टावरा ने लाइन सिरे आप जब दिखाएंगे भविष्य दिखावा तो कह ज्यादा ज्यादा खेती जुड़ सी ने वो भूखो कौन मरे
2: सा कौन मरे।
1: अब खेती जुड़ेड़ो कोई भी काम धाम कर लियो कोई भी मतलब इम देख लियो अब आपने किए के खेती बाड़ी का स्कूल है भाई भी बहुत कम है। अब धीरे धीरे राज खोलना चालू करेंगे भाई खेती बाड़ी का स्कूल है जिसका गाँव का मायने भी होना चाहिए और गाँव में तो टावरा ने भी आधो ज्ञान तो खेती को पहले हो ही है
2: बिल्कुल क्योंकि आप खुद खेती बाड़ी परंपरागत जो अपनो व्यापार है या अपनो जो धंधो है वो खेती है
1: पशुपालन को खेती बाड़ी को है दरखता को आंको ज्ञान टावरा ने पहली हो है कि भाई दरख्त क्या छांगे जाए क्या तैयार करे जाए खेती बाड़ी में के फसल हो अपने क्या काटा क्या मतलब सारो काम ध्यान हो
2: बिल्कुल
1: निनाणु लेके खाई दरड़ा कशिया चीजा की जानकारी हो
2: बिल्कुल
1: उपकरण की जानकारी हो बिके अलावा पशुओं को इनू बांधनो और करनो नीरनो चारनो पशु के खाए के नहीं खाए दूध धार काटनो गोबर पोटो गेरनो
2: है
1: सारी चीजा है जी पशु की जानकारी देती है। तो ए के टावरा ने आपने बताना चीजें की भाई इस तरीके से की है की आप अगर काम आपने आऊ तो है ना सगलो तो अपनो जो जीवन है वो खोटी को नहीं हो
2: भाई। देखो खेती की जो आप जानकारी की बात कराना है तो सब पहली तो टावरा ने बागवानी की जानकारी करावा बागवानी की हो के घर के मायने ने छोटी छोटी सब्जी है जय मान लो टमाटर है थारे मिर्च है या लोयो है तोरू है कोड़ो है ए छोटे छोटे तोर के ऊपर बागवानी के रूप में घर के मायने
1: फूलों की खेती है
2: फिर चाहे कृषि फार्म या खेती बिग बन टावरा घुमा के जरूर लिया खेत खड़ा दिखा के लिया जब टाबर जो कौन है वो सीखेगो के फसल क्या उगाए जा क्या रुखाड़े जा क्या के उठे जा एक मन कौन सी परेशानी आवे के निदान होवे ये सब चीजा देख सी इके सागे सागे प्रकृतियों जुड़ाव रहे सी जैसे फूलों की जानकारी हो है तितलियां की है मोमांकियां की है मट्टी की जानकारी पानी को महत्व है कहीं आप मट्टी पानी का नमूना लिया कहीं आवा की जांच करावा कठे बांग की जांच हो है के तरीको है ये सगली जानकारी टाबरान आप देशियां ले जा सागे राख से जदी मिल सी
1: बिल्कुल
2: इके सागे सागे किताब कहानी जगह ने अभी बहुत महत्व रखे थे अभी बतायो ना कि जहाँ खेती बाड़ी जुड़ेड़ी स्कूल खुले लगे तो टावरा ने खेती किसानी जुड़ेड़ी किताबा ही किसाना का योगदान की और किसाना की जकी मन्नत है बांका किस्सा ही और अपनी खेती किसानी जुड़ेड़ी जकी ठावड़ी बाता है ठावड़ी जकी कहानी है वह आप अपने टावरा ने सुना सियां बता सियां जदी बन बेरो पड़ सी वह खेती बाड़ी बाको जको जुड़ा हुआ वो आगे बढ़ सी
1: बिल्कुल बिल्कुल अब खेतीबाड़ी हो की है के आपनो हर एक चीज को उत्पादन है अब टाबर शिक्षा लेके अगर पढ़ के लिख के नौकरी की नमी ने कर दी हो है तो जो तो ठीक है लेकिन व्यवसाय कोई करनो है तो देखो हर चीज है अब टाबर अपने दुकान पर कुरकुरो लियो चिप्स ली अपन सोचनो चाहिए की अपनी क्या की
2: ठीक बात है
1: कुरकुरो के चीज को बनियो चिप्स क्या बनी है ना इनको तरीको की है
2: बिल्कुल शानी बात
1: दाल है तो दाल को के तरीको है क्या तैयार करी है ना पांच तरीकों की है एक बिजनेस को गेलो भी खुले
2: बिल्कुल बिल्कुल पापड़ मंगोड़ी जकी है
1: और वो पंकज भाया खेती बाड़ी जुड़ेड़ो अड़ुआ ने वो आगे वहां के बढ़तो ही रहनो है
2: ठीक बात
1: वो घटे को नहीं
2: हाँ घटे को नहीं
1: हाँ क्योंकि जनसंख्या बढ़ सी ने जो ए काम दाम भी बढ़ सी मांग बढ़ती रही
2: हो नवाचार भी बढ़ रहे हैं सागे सागे तरीका भी बढ़ रहे हैं जो थे बतायो गए जे मानस बढ़ सी तो मांग भी बढ़ सी तो खेती का जका उत्पाद है बा उत्पादा के बारे में जानकारी जद मिलेगी जद आपा अपने टाबरन अपने सागे जोड़ सिया बा लेके चाल सिया आज तो नौबत आ है कि देखो मूंग को और मोठ को पत्तो देख के टाबर जकाई में अंतर कोन बता सके जका दिन ने ओ बेरो पड़ेगो के ओ मूंग है ओ मोठ है की खेती जकी है भाई इतने दिनाम होवे इतने पानी की जरूरत है जको मेजरमेंट पूरो टाबर जदी जाने को टाबर सागर है को और छोटे टाइम वो टाबर ने सागर रखने को मतलब यो है कि धीरे धीरे जानकारी तो मान लो बड़े बड़े टाबर में काम की लकब भी आवे ठीक है ना खेती बाड़ी का जका अड़ेवण है बाकी जानकारी मिले आज बहुत सारा टाबर ईशा ही जकाने गंडा सीखू आड़ती के बीच को कौन बेरो काम गंडा सीखू सीखू आड़ती को ठीक है ना
1: सही बात है
2: और बेरो पड़सी भी जद जद बांके मां की निकले
1: हां जो बांके आत्मा आशी खुद प्रैक्टिकल करके देख सी ने जद बेरो पड़ेगी आ चीज नहीं काम की होए
2: हां इको मतलब
1: हुआ है काम को है हां छोटो दंतियो बड़ो दंतियो दरांती
2: हां
1: कसी कुआड़ी कसिया हां दंताली ऐसा भी चीज है जिनकी कॉमन बात
2: है कसी रूम और फावड़ो बनावट एक सी दिखने में एक सी काम भी लगभग एक सौ लेकिन फिर भी कसी आपकी जगह काम आवे रूमो आपकी जगह काम आवे फाउड़ आपकी जगह काम आवे पर ए थेको जकी बात है मां की निकल सी जकी तो मेरो पड़ सी तो इली आपा अपने टाबरन अपने खेतीबाड़ी अपने जकी जानकारी है ब्यों जरूर जोड़ा ठीक है ना अब बातचीत आपा जारी रखा हेतालों को मनोरंजन करा दे और एक मीठी सी लोक रचना सुना दे
1: सुनाओ सर सुनाओ

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
1: तो संदेशों पहले आप चंपा मेथी की आवाज में आ एक लोक रचना सुनी। तो पंकज भैया के बातरी अपने गांव स्तर की कर रहा, गांव स्तर हो शहर स्तर हो, जिसका छोटा छोटा कुटीर उद्योग है बांको की एक अपने अर्थव्यवस्था में बहुत तकड़ो योगदान है।
2: हाथों करने वाला छोटा छोटा काम,
1: हाँ छोटा छोटा काम, वह कोई भी चीज का उसके आपने लकड़ी लेके रेत मट्टी राख कोयलो लकड़ी बर्तन बांडो और अपने अनाज से जुड़ी घनी सारी चीजा।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: पापड़ मंगोड़ी।

0: कटाई अचार को उद्योग चल रही है ना, कोई कुछ ही कर रहे है, कोई कुछ ही कर रहे है। तो छोटा छोटा जका मिस्त्री, हाँ मैं मिस्त्री कह करूँ के जो निर्माण कर रहे है छोटी छोटी चीजा को, वो के आपको काम दाम चलावे और भी को योगदान बहुत तकड़ो माने जाए।
1: बिल्कुल सही बात है
0: के लोगों की जरूरत की पूर्ति होगी, बिंगो काम चल गयो,
1: हाँ। कम लागत में।
0: और एक आदमी छोटो सो उद्योग चलाओगे तो 5-7 जना ने वो जरूर
1: रोजगार देगो।
0: यूं के अपनी रोजगार की पूर्ति हो, एक काम दाम चलाओगा आप दो लेके 100 तने आदमियों को काम दाम चले, बैंक आधार पर दुकानदार को चाल है, बैंक आधार पर सप्लायर को चाल है, है? क्योंकि काम दाम में जुड़ेड़ा लोग है ना, कोई सप्लाई कर रही है इन भाई तारकनो सामान लेके दूसरे तारी पहुंचा रही है,
1: हाँ, है चाले काम ही है, चाले हाँ,
0: बिम बहुत लोग जुड़ेड़ा है, कोई पैकिंग कर रही है, कोई सप्लाई कर रही है, कोई बना रही है ना, और कोई मसालों मिल रहा है, कोई कुछ कर रही है ना। तो वो जो को कुटीर उद्योग का काम है ना, वो खास तौर से जिठे आबादी है तो मोहल्ले मोहल्ले वाइज जी आ जाने, तो इनकी तो होड़ी बनी हो,
1: कोई फायदे की चीज है, फायदे की चीज है कि एक दूसरे के ऊपर निर्भरता भी तो रहे और एक दूसरे को सहयोग भी मिले। अपन कोई भी काम कर कमाई ना, जो कंटेंट की बात करा तो मान लो 10 चीज की अपन जरूरत पड़े, तो 10 चीज की जरूरत पड़े, 10 चीज 10 जना को अगर आप उठा सिया तो 10 जना भी व्यापार के मायने परोक्ष रूप में अपना सहयोगी हो गया।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: ठीक है।
0: अब इंक मान दियो के भाई कुटीर उद्योग और किसान, अब किसान को कुटीर उद्योग से के संबंध है? कुटीर उद्योग का मतलब हो गया लघु, लघु का मतलब हो गया छोटो, है? तो इंक मायने की है कि कोई भी चीज को किसानी से संबंधित कोई भी चीज को काम दाम है। एक जगह आप देखियो कि भाई लकड़ी जी पतली पतली लकड़ी हो ना, जिकी जलावन वाली हो, बांका मणिया की माला बनावे,
1: हाँ, बिल्कुल,
0: और शांतरी शांतरी माला बनावे
1: बनावे सा।
0: अब बिन रोजगार मिल गयो ठालो आदमी कौन रहे हो, दो पांच रुपया को व्यापार हो गयो,
1: हो गयो
0: कोई मतलब। आजकल देखो ते ऑनलाइन अपने
1: बेचन भी ज्यादा रामायण करने की जरूरत नहीं,
0: हाँ ऑनलाइन जगह बिक रहे गोबर का उपड़ा,
1: हाँ बिक रहे
0: हैं,
1: बिल्कुल।
0: एक अंक मतलब जो को कचरो है ने वेस्ट, आप बायो वेस्ट बोला जगह,
1: हाँ,
0: भाई कूटलू है, गुणो गाणो है, कोई बुई शिणियों वगैरह है, आलतू फालतू कचरो है, तो बिन ने एकदम सिंक्रोनाइज करके बिन को लकड़ी को गट्टो से बना दे, बहुत सारा काम धंधा है, पापड़ मंगोड़ी अचार वगैरह पे तो अपना है ही परंपरागत। किसान करना वो चाहिए कि आपने आसे पासे गांव के मायने जो को बेरोजगार टाबर है, जो को मजदूरी ढूंढ तो फिरे, बेन आप सरकारी महकमे से जानकारी करवा के बिन प्रशिक्षण वगैरह दिलवा के काम धाम करवा सका। अब आजकल घने काम धाम चल रहे, आटे का उद्योग है ना, तो जगह सिर आजकल की है कि चाकी चुकी बंद हो लगी, लोग बाग ज्यादातर आटो पैकिंग वालो आटो आवे, दुकान में लिया ने पीसनो करनो ने खड़ो कर पिसानो और सह खत्म, रसोई में थैली लागे मेल ली आपकी 5 किलो 10 किलो की अपना मौजूदा उद्योग है।
1: बिल्कुल
0: कई खाती को काम जानते हुए है ना, तो खाती के काम में घना ही आपने देखो फर्नीचर का बड़ा बड़ा उद्योग है अपने आस पास के शहर का, मैंने जगह विदेशा तक फर्नीचर है जो बन के जाए
1: जारी
0: है, तो एक है अपना जो कुटीर उद्योग निकल के फैक्ट्री
1: बन गई
0: चलता चलता छोटा छोटा रहता रहता बड़ा हो गया।
1: डिजिटल प्लेटफॉर्म वो जो आयो है अने भी कुटीर उद्योग की दशा दिशा दोनों ने बदल दी। मतलब अपने गांव में जो सरकंडो है ना, आप कुंचो बोल, कुंचे ने ज्यादा ज्यादा आप के काम लेता,
0: मूंज बना लेता,
1: आज के दिन ने बहुत सारी जगह जगह सरकंडे की लकड़िया ने तूली है नीचे की जगह लकड़ी है मोटी
0: डोको
1: बहु भांत भांत का प्रोडक्ट बना के और ऑनलाइन बढ़िया मजूरी दे
0: फर्नीचर बनने लगे देखो
1: हाँ
0: सरकने का जगह डोको है ने बिगा मुड़ा टेबल फर्नीचर के रूप में दे दियो देखो बढ़िया बढ़िया शानदार शानदार डिजाइनदार
1: बिल्कुल शानी बात है।
0: तो एक कमान जगह काम दाम शुरू करो वो बीस तरीके कमान लगे
1: कमाओ लगे सही बात।
0: अब गाँव के अंदर जगह कारीगर जूती बनाता चमड़े की है ना चंपल बनाता है ना वे हालांकि कम हो गया पर बे जे आपको काम करें तो आज चामड़े की जी चीज अपन लेवा खरीद के चाहे वो पर्स हो है, चाहे बेल्ट हो है, भी नहीं है कि ओरिजिनल चामड़े को
1: हजारा रुपया प्योर चामड़े को है तो भी कीमत मिले
0: भी कीमत हजारा रुपया में ये बहुत सारी चीजें है हाथ उमड़ेड़ो कपड़ो है अब बे पुराना मिस्त्री जका पहले बनाया करता खड्डी बोरा खेसला भाखलाड़ी पल्ली है और हाथों बनाता खदर को कपड़ो
1: कसीदाकारी का काम करता कपड़ा के ऊपर
0: अब हाथों बनेड़ो खदर को कपड़ो है जो को 1500-2000 मीटर में दुनिया ले जा बैंक आमान के चालो पूर्ति को नहीं हो रही
1: कौन हो रही
0: तो जक्का लोग बाग वो काम कर रहे हैं वे बंग भविष्य सुंदर है आगे क्योंकि वे आधुनिक ओरिजिनल चीज है बात दुनिया ताने पूर्ति कर रहे हैं और लोग बागान जगह पीछा लोग अब चाहिए ओरिजिनलिटी
1: हाँ
0: के माने जगह चीज मिले बस हचलती मिले
1: भाई अब पिसो जो को है
0: हाँ
1: वो हर आदमी की जदमोग
0: और
1: पिसो खर्च कर तो भी माने चुको है वो ज्यादा शर्मावे को नहीं है मतलब मुंजी पुनो पहले आप कहता ना कि फलानो आदमी मुंजी बोत आज के थान मुंजी जगह शब्द कमी सुनने मिले
0: भाई पहले फर्क हो के नुआड़ पश्चिमी सभ्यता का दुनिया चाल पड़ी तो जका खदर पहरिया करता जका चामड़े की जूती पहरिया करता पानी हेण में देखता तो गांव को जो गुआर सो दिखे
1: ठीक बात है
0: अब गुआर जब 30,000-35,000 रुपया कुंटल हो जब लोगान बेरो पड़े हो गुआर तो कीमिया चीज है
1: बात जोर की है बात
0: तो गुआर गुआर ने नाके नाके भाई नहीं करना चाहिए दोनों एक ही चीज है अब गुआर रहे को नहीं तो
1: कीमत होगी
0: हाँ कीमत होगी बाई चीजें कीमत होगी अब मूंज का माचा है आजकल देखो लुप्त प्राय हो गया क्योंकि मूंज तोड़ो कुटो बांटो बड़ लगाओ जदवा जाके तैयार हो
1: यहाँ की जकी भकड़ बाजे ने बिक मायने पिंडी कूटनो और मूंज है जकी के माले बड़ चढ़ानो और बिक मायने सुखानो भी ने
0: आजकल वही तो काम हो तो दिन के सुधिया उठते हैं पिंडी कूट गिरता और फिर 10 बजे 11 बजे बांटने पर बिछा गिर बांटनो चालू करता जो
1: बिल्कुल
0: चौकी ताऊ थी नींद और पगथली रहती है एकदम गिल्ली आतन तानी तो सर्दी गर्मी लागती को नहीं सारी
1: को लागती
0: और आतन तानी एक पिंडी बांट के नक्की मारता
1: सही बात है
0: और पचे थोड़ा सा होलेगा आस पास सिर बांगे बड़ लगा के तैयार कर लेता
1: शानी बात है।
0: तो मूंज स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया है मूंज अपने धार्मिक कार्य में भी आवे
1: है
0: तो आज चीजें जी की अब कुंचा का किताब चीज बन गई डोको काम आ गयो तूड़ी काम आ गई मूंज काम आ गई पानी की बारी बना
1: बन रही है
0: अब पानी की बारी जी की मिलने उड़ेगी अब आधुनिक रूप में अगर पानी की बारी में प्लास्टिक की डंडी लगा के जो और तूड़ी बेचा मी सब मुझे करे जा तो बात चले
1: सही बात है जोर जोर
0: तो वो आपने किया कि कुटीर उद्योग का ध्यान करना चाहिए जगह टाबर इनमें तरड़ा मार रहे हैं नौकरी पे खातर अपने काम धंधो करवा के देना चाहिए और इस तरीके की शिक्षा अपने टावरा ने देनी चाहिए। अब पंकज भाया गीतड़ो सुना चिमे खाओ गायड़ो

हसला क्यों यूं मधुमरो अरे बैठो चांच झुकाए कह तो थारी जोड़ी बिछड़ी कह गयो संबंधी सुका नहीं मारी जोड़ी बिछड़ी नहीं संबंध सुकाओ अरे नहीं तो मारी जोड़ी बिछड़ी अरे नहीं संबंधी सुकाव प्रीत लगी।

0: तो अभी आलोक रचना थे सुनी चिमे खां की आवाज में और अब पंकज भाया अपा रोटी टुकड़ा के सारे वहां और सगड़े सुनना शुरू करा
1: राम राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती और गृहस्थी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी केंद्र चूरू से किया गया। रात्रि के 8 बजे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हल्का याग्निक अभिजीत की गाए इस गीत के साथ। फिल्म का नाम राज, समीर का गीत, नदीम श्रवण का संगीत।

लीजिए सुनिए मोहरा फिल्म का ये गाना, पंकज उदास साधना सरगम की आवाज, इंदिवर का गीत, बिजू शाह का संगीत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चुरू से फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
1: लीजिए, सुनिए अमित कुमार, मोहम्मद अजीज, सपना मुखर्जी की आवाज में विश्वात्मा फिल्म का ये गाना, आनंद बख्शी का गीत, बिजू शाह का संगीत।

अमित कुमार और सपना मुखर्जी की आवाज में आपने सुना विश्वात्मा फिल्म का ये गाना। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीतकार थे बिजू शाह। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चुरू से फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता, केशव देव तंवर के साथ। कुमार सानू के साथ अलका याग्निक की आवाज, नवाब आरजू का गीत और संगीतकार अन्न मलिक, फिल्म का नाम हम सब चोर हैं।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: आइए आपको सुनाते हैं बेटा फिल्म का गीत, उदित नारायण अनुराधा पौडवाल की आवाज, समीर का गीत, आनंद मिलिंद का संगीत।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत अनुराधा पौडवाल उदित नारायण की आवाज लाल दुपट्टा मलमल का फिल्म से। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार आनंद मिलिंद।

0: लाल दुपट्टा मलमल का इस फिल्म के गाने के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता अब यही समाप्त होता है। FM 100.7 MHz और न्यूज़ोन AIR ऐप पर आप हैं आकाशवाणी केंद्र चूरू के साथ। रात्रि का 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से पहले समाचार संध्या और रात 9 बजे News@9।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम।

0: भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने दुर्लभ खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिन में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया।
1: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूँ।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया।

0: दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। श्री सिंह ने रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
1: 12 वर्षों के अंदर ही हम 40,000 करोड़ से ज्यादा का इस समय हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो 2 साल के अंदर 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट, डिफेंस आइटम्स के एक्सपोर्ट की जानकारी आपको मिल जाएगी। और हमारी गवर्नमेंट के रहते डिफेंस सेक्टर में एक मेजर चेंज आया है। भारत की पॉलिसी आज रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है, और मेरा भी यह व्यक्तिगत रूप से मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के किसी कीमत पर किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा, और इसी सोच के साथ भारत इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को तेजी के साथ बढ़ावा दे रहा है।
0: रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा, वहां से उन्हें देश से निकालने के लिए BDR के साथ इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने इसे नए तरीके को पहचानो हटाओ और देश से निकालो बताया। गुजरात सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि विधेयक को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए।
2: हमने आज JPC को गुजरात सरकार की ओर से खास तौर पे ये नम्र निवेदन किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन जल्द से पास हो, सभी राज्य के नागरिकों को एक समान हित मिले, सभी लोगों के काम जल्द हो पाए, मशीनरी सरकारी जो है उसका कम से कम समय बिगड़े, वही हित में आज हमने वन नेशन वन इलेक्शन को हमने हमारा सहयोग दिया है और हमने ये खास तौर पे विनती की है इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए।
1: इस बीच कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NEET UG पुनर्परीक्षा के सुरक्षित निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में 5 आरोपियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने एक अन्य आरोपी की CBI हिरासत भी बढ़ा दी है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने जम्मू कश्मीर में एक सशक्त नवाचार इकोसिस्टम के निर्माण के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई लैब अटल नवाचार मिशन के व्यापक सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे NewsOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। इससे भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अर्थशास्त्री इंगो पिटले ने कहा कि भारत की मजबूत उपभोक्ता मांग, सार्वजनिक निवेश और सेवा निर्यात में वृद्धि इसकी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रही है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 118 अंक बढ़कर 75,318 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 41 अंक की बढ़त के साथ 23,659 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 30 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 96.83 रुपए पर बंद हुआ।
1: और अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी कल तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल राजधानी में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि कल दिन के समय राष्ट्रीय राजधानी में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। सौम्य के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि ये राष्ट्र को एकजुट करने का सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हो रहा है। फिलहाल बारिश के कारण मैच रुका हुआ है। मैच रुकने तक मुंबई इंडियंस ने 8 ओवर में 4 विकेट पर 57 रन बना लिए थे। उधर मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 में आज अश्मिता चलिहा, देविका सिहाग और मालविका बंसोड महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वीसी प्रमोद विद द न्यूज एट 9।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं सीमा मिश्रा और साथियों से कुछ लोक रचनाएं।

राजस्थान लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सीमा मिश्रा और साथियों से कुछ लोग रचनाएं। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी चूरू से किया गया। रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। चिपला में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से कार्यक्रम चर्चा का विषय है।

जहां भारत अब सिर्फ एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर एक निर्णायक आवाज बनकर उभरा है। कूटनीति के नए आयाम, विश्व मंच पर बढ़ती भागीदारी और हर बड़े वैश्विक मुद्दे पर भारत की स्पष्ट और सशक्त उपस्थिति, इन सब ने मिलकर रचा है एक नए भारत का आत्मविश्वास। और इसी बदलती तस्वीर का एक महत्वपूर्ण पहलू है दुनिया भर से मिल रहे वो सम्मान जो भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा की गवाही देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले ये वैश्विक अलंकरण सिर्फ एक नेता की उपलब्धि नहीं बल्कि भारत की साख, सामर्थ्य

0: और विश्वसनीयता का प्रतीक हैं। स्वीडन और नॉर्वे से लेकर दुनिया के कई देशों तक हर सम्मान एक कहानी कहता है, भारत के बढ़ते कद की कहानी। चर्चा का विषय है कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैश्विक सम्मान, भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा। शुरुआत करते हैं बिल्कुल हालिया और ऐतिहासिक लम्हे से। मई 2026 का महीना भारत के राजनयिक इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्डिक देशों की यात्रा पर थे। तारीख थी 17 मई 2026 और जगह थी स्वीडन का गोथेनबर्ग शहर। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन की उपस्थिति में प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से नवाजा गया। साल 1748 में स्थापित हुआ ये ऐतिहासिक सम्मान किसी विदेशी शासनाध्यक्ष को मिलना ये दर्शाता है कि आज यूरोप की नजरों में भारत का स्थान क्या है। ये प्रधानमंत्री मोदी का 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान था।
1: कुछ समय पहले मुझे स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया।
0: कहानी यही नहीं रुकी। इसके ठीक अगले ही दिन यानी 18 मई 2026 को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का शाही महल एक और इतिहास का गवाह बना। नॉर्वे के राजा किंग हेराल्ड पंचम ने प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से विभूषित किया। दो नॉर्डिक देशों से मिले इन सम्मानों ने साबित कर दिया कि भारत और नॉर्डिक देशों के बीच की साझेदारी अब एक नई रणनीतिक ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। आइए समय के पहिए को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। साल 2014 में शुरू हुआ ये कूटनीतिक सफर साल 2016 में सम्मानों की एक ऐसी श्रृंखला में बदल गया जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। साल 2016 में खाड़ी देशों के साथ भारत के रिश्तों में एक नया अध्याय जुड़ा। सऊदी अरब ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज सैश से नवाजा। इसी साल पड़ोसी देश अफगानिस्तान ने उन्हें स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी आमिर अमानुल्ला खान प्रदान किया। वर्ष 2018 में भारत की पर्यावरण नीतियों को वैश्विक पहचान मिली जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण के क्षेत्र के सबसे बड़े पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया। इसी साल फिलिस्तीन ने उन्हें ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन दिया। दक्षिण कोरिया ने वैश्विक शांति और आर्थिक विकास के लिए सियोल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया। वर्ष 2019 तो जैसे वैश्विक पुरस्कारों का वर्ष बन गया। दुनिया के नक्शे पर भारत की दोस्ती का दायरा कितना बड़ा था ये इन पुरस्कारों की सूची देखकर समझ आता है। संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद, रूस का सबसे प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, मालदीव का ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ इज्जुद्दीन और बहरीन का किंग हमद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा शामिल रहा। 2019 में ही बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के लिए उन्हें ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया। जब साल 2020 में पूरी दुनिया सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना से जूझ रही थी तब भारत की वैक्सीन मैत्री ने दुनिया का दिल जीता। इसी दौरान अमेरिका ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने बेहद प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। 2021 में हमारे पड़ोसी देश भूटान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग से भारत के प्रति अपनी अटूट निष्ठा व्यक्त की। साल 2023 में जब भारत G20 की मेजबानी कर रहा था और उसी वर्ष जब प्रधानमंत्री मोदी पापुआ न्यू गिनी पहुंचे तो वहां के प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़कर पैर छूकर उनका स्वागत किया और उन्हें ऑर्डर ऑफ लोगोहू से नवाजा। इसी तरह फिजी ने कमियान ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी और मिस्र ने अपना ऐतिहासिक ऑर्डर ऑफ द नाइल प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया। वर्ष 2023 में ही फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान

0: ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, जिसके बाद ग्रीस ने भी उन्हें ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर दिया। साल 2024 और 25 में तो ये फहरिस्त और लंबी हो गई। नाइजीरिया का ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, गयाना का ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, डोमिनिका का सर्वोच्च सम्मान और कुवैत का ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर उन्हें प्रदान किया गया। इसके बाद साल 2025 में बारबाडोस, श्रीलंका का मित्र विभूषण, मॉरिशस का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन उन्हें प्रदान किया गया। घाना ने द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस, नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनिशियंट वेलविचिया मिराबिलिस, ट्रिनिदाद और टोबैगो ने द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिदाद एंड टोबैगो, और ब्राजील ने द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल अवार्ड ऑफ द सदर्न क्रॉस से भारत के बढ़ते कदमों का स्वागत किया। इसके अलावा ओमान की तरफ से फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान और इथियोपिया की तरफ से ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया भी प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया गया। साल 2026 की शुरुआत में ही इसराइल ने भी उन्हें मेडल ऑफ द नेसेट से सम्मानित किया। इन 32 अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों की फहरिस्त सिर्फ कागजी आंकड़े नहीं है, ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि आज का भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी पृथ्वी ही मेरा परिवार है का संदेश दे रहा है। चाहे वो पर्यावरण संकट हो, वैश्विक शांति की बात हो या आपदा के समय मदद का हाथ बढ़ाना हो, दुनिया आज भारत के नेतृत्व की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ष दर वर्ष मिले ये सम्मान असल में भारत की 140 करोड़ जनता के कड़े परिश्रम, हमारी प्राचीन संस्कृति और हमारे बढ़ते आर्थिक और सामरिक सामर्थ्य का वैश्विक उत्सव है।
1: विदेशी कूटनीति में क्या 2014 के बाद भारत ने विशेष हासिल किया है जिसे भारत अब दुनिया के मानचित्र में अब एक मजबूत स्तंभ बन गया है, इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ हैं दो बेहद खास मेहमान, पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और वरिष्ठ पत्रकार मदन जेड़ा। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत
2: जी। धन्यवाद।
3: धन्यवाद आनंद जी।
1: अशोक जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जो यात्रा चल रही है इसमें वो यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 5 देशों की यात्रा पर हैं। नॉर्वे में हुए तीसरे इंडिया नॉर्डिक समिट में भारत और नॉर्डिक देशों के बीच ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर सहमति बनी है। आपको क्या लगता है कि इस यात्रा के चलते जो वैश्विक परिदृश्य है और वैश्विक परिदृश्य में भारत की जो नॉर्थ वर्ड टर्न है यानी उत्तर की ओर जो रुख है, उस लिहाज से कितना अहम मानते हैं इस यात्रा को आप?
4: हम अभी देख रहे हैं जो ये जो यात्रा है वो उनकी नॉर्डिक देशों में है, तो इसमें कहा जाए जो ये नॉर्थ वर्ड हम टर्न देख रहे हैं, परंतु ये तो हम जानते ही हैं जो भारत तो एक जिसे कहा जाए वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ है। हमने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट्स किए हैं जब भारत G20 की चेयर हमने संभाली थी 2023 में। परंतु इसको छोड़ते हुए मैं कहूंगा जो भारत की जो की कूटनीति है, अगर हम 2014 के बाद से देखें तो हमारी कूटनीति पूरे विश्व के साथ अपने संबंधों को आगे ले जाने में लगी है और हम इसमें बहुत ही तीव्र गति से काम कर रहे हैं। परंतु जहां तक ये नॉर्डिक देशों का संबंध है, आपने ठीक कहा है, इसको अभी करीब 8 साल हुए हैं 2018 में जिसे कहा जाए पहला नॉर्डिक समिट हुआ था स्वीडन में, दूसरा डेनमार्क का हुआ 2022 में कोपेनहेगन में, और अब तीसरा पिछले साल होने वाला था परंतु पहलगाम के इंसिडेंट के होते हुए तो ये नहीं हुआ और अब हो रहा है। तो अभी जो हालात हैं पूरे विश्व में, विश्व की जो चुनौतियां हैं, जो चाहे हम जियोपॉलिटिकल स्तर पर देखें, रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, पश्चिम एशिया का युद्ध चल रहा है, तो उसमें रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को आगे कैसे ले जाया जाए, और जो ग्रीन एनर्जी है, ग्रीन ट्रांजिशन है, इनोवेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, इन सभी जो नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, इनके साथ कैसे संबंध बनाया जाए और देशों के साथ मिलकर सहयोग किया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण इशू थे और इस पर बातचीत हुई। और जो बताता है जो प्रधानमंत्री मोदी की और भारत की विश्वसनीयता कितनी बढ़ रही है पूरे विश्व में।
1: चर्चा कर रहे हैं 2014 से लेकर अब तक भारत के विदेशी कूटनीति के आइकॉनिक मोमेंट्स की, और उसमें जो सबसे बड़ा मोमेंट्स था मदन जी वो G20 का जो हमने मेजबानी की। साल 2023 में भारत की अध्यक्षता में हुआ G20 समिट नई दिल्ली डिक्लेरेशन की वजह से दुनिया भर में सराहा गया। आपको क्या लगता है कि भारत ने जिस तरह विकसित और विकासशील देशों के बीच एक पुल का काम किया, उसने वैश्विक कूटनीति में भारत का कद किस तरह बढ़ाया?
2: अगर हम G20 की बात करें, एक तो ये बहुत बड़ा सफल आयोजन था, ये तो निश्चित रूप से था। दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें हुई कि ग्लोबल साउथ की आवाज को भारत ने मजबूती के साथ बुलंद किया, और जो अफ्रीका यूनियन है, अफ्रीकी देश हैं, उनको G20 की सदस्यता दिलाने में सफलता हासिल की। भारत लगातार ग्लोबल साउथ की आवाज को उठा रहा था। दुनिया में एकमात्र देश है जो भारत ग्लोबल साउथ की आवाज को उठा रहा था। इसमें करीब 100 से भी ज्यादा देश आ जाते हैं, पूरा अफ्रीका रीजन इसमें आ जाता है, नॉर्थ अमेरिकी जो कंट्री है वो आ जाते हैं, इसके अलावा और भी कई छोटे छोटे कंट्री हैं जो ग्लोबल साउथ में आते हैं, जो न तो किसी समूह के हिस्से नहीं है, लेकिन उनकी आवाज कहीं नहीं सुनी जा रही थी। अगर मैं G20 के आयोजन की बात करूं, भारत की कूटनीति की बात करें, तो ग्लोबल साउथ की आवाज को उठाना और अफ्रीकी यूनियन को G20 में सदस्यता दिलाना, तो मुझे लगता है कि भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, और इससे भारत की जो कूटनीति है उसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया। और पूरी दुनिया ने स्वीकार किया कि जो भारत एक ऐसे देशों की आवाज उठा रहा है जिसकी आवाज बहुत पहले उठाए जाने की जरूरत थी। और ये पहल कायदे से देखा जाए तो जो विकसित कंट्री है उनको इसकी शुरुआत करनी चाहिए थी, लेकिन भारत ने, एक बहुत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, उसने इन देशों की आवाज को उठाकर पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया, जो वसुधैव कुटुंबकम, और इस G20 सम्मेलन की थीम भी यही थी, तो वसुधैव कुटुंबकम का जो संदेश दिया उसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया और एक भारत के नेतृत्व में विश्वास जताया।
3: Dr. Nkrumah had said, and I quote, I am not Africa because I was born in Africa, but because Africa was born in me. In the same way, India carries Africa in its heart. India and Africa share a dream where every child gets opportunities. Where every voice is heard, where nations rise together, not apart. Let us build a partnership, not only for today, but for generations to come.
1: अशोक जी, अगर इस चर्चा को आगे बढ़ाएं तो भारतीय विदेशी कूटनीति का एक और अहम पड़ाव है आपदा और संकट में कूटनीति, चाहे वो ऑपरेशन संकट मोचन हो, ऑपरेशन गंगा हो, या फिर युद्ध और संकट के क्षेत्रों से अपने नागरिकों को वापस बुलाना, उसमें भी भारत ने एक अहम भूमिका निभाई। लेकिन एक और ऑपरेशन हुआ जिसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया, जिसमें भारत ने पूरी दुनिया को ये बताया कि अगर भारत की तरफ कोई आंखें दिखाएगा तो भारत युद्ध का जवाब और प्रबल युद्ध से देना जानता है। आतंकवाद को सिरे से ना करना, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के अलग अलग देशों में अपने प्रतिनिधि को भेजकर ये बताना कि भारत की मंशा क्या है, कैसे देखते हैं, क्या वो भारतीय की विदेश कूटनीति का एक मील का पत्थर था ऑपरेशन सिंदूर?
4: भारत ने पूरे विश्व को संदेश दिया, वो यही था जो हम अपनी संप्रभुता के लिए, अपने जो नागरिक हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए हम पूरी तरह से उनकी रक्षा करेंगे, और जो भी हद हो वो हम वहां तक जाएंगे। और यही बात हुई, जो हम युद्ध को पूरा युद्ध में नहीं वैसे परिवर्तित करना चाहते, हमें जब अपना लक्ष्य मिल जाता है तो फिर हमने युद्ध उसी समय रोक दिया। परंतु पाकिस्तान ने अपनी बेवकूफी में, उन्होंने सोचा जो वो भारत को ऊपर भी कुछ ऐसा नुकसान कर सकते हैं, परंतु 10 तारीख सुबह को तो उनके केवल बहुत सारे हवाई अड्डे थे, बहुत सारे ऐसे ठिकाने थे जिनको एकदम मिट्टी में मिला दिया गया, तो पाकिस्तान को अपने घुटने पर आना पड़ा। तो हमने तो उनको ये सिद्ध करके, और फिर उसके बाद हमने, जब पाकिस्तान ने याचिका की जो ये युद्ध रोक दिया जाए, तो हम मान गए, क्योंकि हमने ये देखा है, भारत ने ये पूरे विश्व को बताया जो हम युद्ध शुरू कर सकते हैं अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए, और जब हमारे अपने ऑब्जेक्टिव्स लक्ष्य हम प्राप्त हो जाते हैं तो हम उसको बंद भी कर देंगे। तो हमने वहां पर से हमेशा से पाकिस्तान ये कहता रहा था जो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है तो आप हमारे ऊपर हमला कन्वेंशनल वॉरफेयर से नहीं कर सकते हैं। तो हमने ये बता दिया जो ये उनका जो ब्लैकमेल है ये हमारे विरुद्ध नहीं चलेगा।
1: और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा है कि बुद्ध की धरती युद्ध करना भी जानती है और ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा था।
3: आज पाकिस्तान भी भली भांति जान गया है कि भारत का हर जवाब पहले से ज्यादा तगड़ा होता है। उसे ये भी पता है कि अगर भविष्य में नौबत आई तो भारत आगे कुछ भी कर सकता है। और इसलिए मैं फिर से लोकतंत्र के इस मंदिर में दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है।

0: पाकिस्तान ने दुस्साहस की अगर कल्पना की तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा।
1: अशोक जी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का विचार भारत की तरफ से दिया गया, क्या आपको लगता है कि भारत अब ग्लोबल वार्मिंग जैसी वैश्विक समस्याओं के समाधानकर्ता के रूप में दुनिया में देखा जा रहा है?
2: 2015 में जब ये कॉप हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज हुआ था पेरिस में, तो तब भारत ने और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उस समय के, तो उन्होंने इसको लॉन्च किया था। और अब जैसे उन्होंने बताया 100 से ज्यादा देश इसमें मिल गए हैं। देखिए, आजकल एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे बनकर उभर गए हैं पूरे विश्व के सामने। और हम देख रहे हैं जब से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का मुद्दा सामने आया है, तब तो ऊर्जा, एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स बहुत देशों के लिए मुश्किल हो गई है, क्योंकि वहां से 20% एनर्जी पूरे विश्व में आती है वो मिल नहीं रही है। तो इसलिए ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है जिसकी भारत ने शुरुआत की है और भारत ने दिल्ली के निकटतम ही यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर्स भी खोला है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहा है। उसके अलावा अगर आप देखें बायोफ्यूल्स अलायंस है, जो कि जब हम G20 की बात कर रहे थे तो G20 के साइडलाइंस पर दो बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए थे। एक तो था इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके अलावा एक CDRI है, दैट इज कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिस्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कैसे जो विश्व में पर्यावरण का बदलाव हो रहा है उसके साथ कैसे जूझा जाए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना रहे हैं, जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं, उनको कैसे जो आपदा आती है उनसे बचाया जाए। तो भारत ने विश्व पटल पर बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं और बहुत से वैश्विक देशों ने भारत के साथ सहयोग कर रहे हैं, तो इसी से भारत का कद विश्व में और भी इससे ऊंचा हुआ है।
0: दिस इज द इनॉग्रल डे ऑफ ए डिफाइनिंग ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज। वी वॉन्ट टू ब्रिंग सोलर एनर्जी इन टू आवर लाइव्स। वी विल शेयर नॉलेज एंड एक्सचेंज बेस्ट प्रैक्टिसेस। वी विल कोऑपरेट ऑन ट्रेनिंग एंड बिल्डिंग इंस्टीट्यूशंस। वी विल डिस्कस regulatory issues and promote common standards. We will attract investment in the solar sector, encourage joint ventures and develop innovative financing mechanisms. We will partner with other international initiatives on renewable energy. There is already a revolution in solar energy. Technology is evolving. Costs are coming down. And grid connectivity is improving. It is making the dream of universal access to clean energy become more real.
1: मदन जी, अब बात थोड़ी वैक्सीन डिप्लोमेसी की भी कर लेते हैं। COVID-19 और वैक्सीन मैत्री की भी चर्चा काफी रही। जब COVID-19 महामारी के दौरान भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत दुनिया के 100 से अधिक देशों को मेड इन इंडिया वैक्सीन पहुंचाई, वो भी दौर था जब दुनिया के कई देश अपनी वैक्सीन जमा कर रहे थे, तब भारत के इस मानवतावादी कूटनीति ने वैश्विक स्तर पर भारत के प्रति जो विश्वास पैदा किया, उसका लॉन्ग टर्म लाभ आप कैसे देखते हैं?
3: जब कोविड काल चल रहा था तो 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन की सप्लाई की थी, और उस समय वैक्सीन की हमारे पास भी कमी थी। हम दूसरे कंट्री से कुछ ग्लोबल इनिशिएटिव है उनसे हम वैक्सीन ले भी रहे थे, लेकिन इसके बावजूद हम वैक्सीन दूसरे कंट्री को भी दे रहे थे और 100 से ज्यादा देशों को हमने वैक्सीन की सप्लाई की थी, और उसमें से ज्यादातर देश या तो हमारे पड़ोसी देश थे या फिर वो ग्लोबल साउथ के देश थे जिनको हमने वैक्सीन की आपूर्ति की थी। तो इस इनिशिएटिव से भारत का, जैसे मैंने माना कि एक डिप्लोमेसी है, ये भी एक डिप्लोमेसी है कि अगर आप अपने सहयोगी देशों को, अपने मित्र देशों को किसी प्रकार की मदद करते हैं, तो ये भी एक डिप्लोमेसी का ही मैं इसे एक पार्ट कहूंगा। और इससे एक जो लॉन्ग टर्म में भारत पर भरोसा बढ़ा है, चाहे वो छोटा कंट्री हो, चाहे वो एक अफ्रीका का कोई देश हो, भारत पर उन लोगों का भरोसा लगातार बढ़ा है। और लॉन्ग टर्म में अगर इसमें इसकी बात करें, जब एक बार भरोसा बढ़ता है और लगातार भारत उनके किसी न किसी रूप में मदद करता है या उनकी आवाज़ को बुलंद करता है, या जैसे मैंने बताया कि ग्लोबल साउथ की आवाज़ भारत ने उठाई, उसके बाद UN सुधारों में भारत लगातार बोल रहा है, तो इसका भी फायदा दूसरे देशों को होने वाला है। भारत को उतना फायदा नहीं होने वाला, दूसरे देशों को ज्यादा होगा अगर UN में सुधार होते हैं। ऐसे में जो भारत पर दूसरे देशों का भरोसा है वो लगातार बढ़ रहा है, और जब ये भरोसा बढ़ता है, और जैसे हम कह रहे हैं कि जो दुनिया धीरे धीरे बढ़ रही है वो मल्टीपोलर दुनिया हो रही है, बहुध्रुवीय दुनिया हो रही है, तो भारत उसमें एक मजबूत ध्रुव के रूप में उभर रहा है, एक मजबूत पक्ष के रूप में उभर रहा है।
1: अशोक जी, एक और इम्पॉर्टेंट पहलू है, काफी अहम पक्ष रहा है 2014 के बाद भारत की विदेश कूटनीति का, वो है मुक्त व्यापार समझौते। भारत ने हाल में यूएई, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन देशों के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते किए, जिसे हम सब एफटीए के नाम से जानते हैं। आपको क्या लगता है कि ये समझौते भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड हब बनाने में मददगार साबित हो रहे हैं?
2: जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, पिछले कुछ वर्षों में भारत ने बहुत ही ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट या मुक्त व्यापार समझौते जो हैं वो किए हैं, और अपने महत्वपूर्ण जो साझेदार हैं, जो व्यापारिक साझेदार हैं जिनके साथ हमारे व्यापारिक सहयोग, आर्थिक सहयोग बड़ा अच्छा है, उनके साथ किए हैं। अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का देखा जाए तो वो हमारा दूसरा सबसे बड़ा ऐसा डेस्टिनेशन है जहां हमारे एक्सपोर्ट्स जाते हैं, जहां हमारे निर्यात जाते हैं। वो तीसरे नंबर पर है जो कि सबसे बड़ा हमारा आर्थिक साझेदार है, सहयोगी है। और इसके अलावा हमने यूनाइटेड किंगडम के साथ भी किया है, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक व्यवस्था है और आर्थिक सहयोग उनके साथ हमारा बहुत बड़ा है। यूरोपियन यूनियन, तो जिनके साथ 2007 में ये बातचीत शुरू हुई थी, मुझे याद है जब मैं ब्रसल्स में था तब हमने ये बातचीत शुरू की थी, नेगोशिएशन शुरू किए थे, और ये 17-18 साल के बाद हम देख रहे हैं, जो इस साल के शुरू में फरवरी में हमने देखा 19 साल के बाद ये वाला समझौता हुआ है। और इसको वहां की जो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डर लेन, उन्होंने इसको मदर ऑफ ऑल डील्स करार दिया था, इसका इतना व्यापक रूप है। ऐसे ही हमने एफ्टा के साथ जो चार देश हैं यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के, जैसे मैं पहले बोल रहा था आइसलैंड और नॉर्वे तो उसके सदस्य नहीं हैं और ये एफ्टा के सदस्य हैं, और उसके अलावा स्विट्जरलैंड और लिख्टेनस्टाइन, उनके साथ भी बहुत महत्वपूर्ण ये एक सहयोग किया है, जिसमें $100 बिलियन भारत में वो निवेश करेंगे अगले 15 साल में, जिससे 10 लाख जॉब्स यहां पर क्रिएट होंगे। इसके अलावा हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, ओमान के साथ, ये सब हमने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स किए हैं जो कि मेरे विचार से विन विन अग्रीमेंट्स होंगे, ये इन सभी देशों के लिए भी और भारत के लिए भी।
0: आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। इतना ही नहीं, यह एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। यानी यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है।
1: अशोक जी, फॉरेन डिप्लोमेसी के क्षेत्र में रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत का स्टैंड भी काफी चर्चा में रहा। रूस यूक्रेन युद्ध पर प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान कि ये युद्ध का युग नहीं है, पूरी दुनिया में ये गूंजा। बिना किसी दबाव में आए भारत का अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर टिके रहना और दोनों पक्षों से बातचीत की वकालत करना, भारत की परिपक्व होती कूटनीति का कितना बड़ा प्रमाण रहा?
2: डिप्लोमेटिक पार्लेंस में कहें तो इसको हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं, जो जिससे कि हम अपने हितों की रक्षा स्वयं करेंगे और हम किसी और को दखल अंदाजी नहीं करने देंगे, जो वो हमें बताए, भारत को बताए जो आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या ठीक है, आप इसमें क्या करिए। तो इसीलिए जब रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ तो बहुत दबाव पड़ा पहले भारत के ऊपर, जो आप तेल मत खरीदिए रूस से, परंतु भारत ने ये बता दिया, भारत करीब अपने जो जरूरतों का 80-85% तेल है वो आयात करता है, तो इसको हम जहां से भी हमारी कंपनियों को सभी ठीक दाम में तेल मिलेगा हम वहां से वो लेंगे। तो हमने अपने संबंध भी बनाए रखे और ये भी बनाए रखा, परंतु ऐसा नहीं किया जो हमने अपने संबंध और जो पश्चिमी देश हैं उनके साथ खराब कर दिए। और उन देशों को भी फिर बाद में समझ आ गया, जो अगर रूस का तेल वैश्विक बाजार में नहीं आता तो तेल के दाम बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते, जो कि सभी अर्थव्यवस्थाओं के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो सकता था। तो इसीलिए भारत ने यह बता दिया है, भारत वैश्विक फायदे के लिए, ग्लोबल गुड के लिए काम करेगा सबके साथ, परंतु अपने हितों को वो सैक्रिफाइस नहीं करेगा। और हमारा जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो केवल वो ट्रांजैक्शनल नहीं है, जो केवल अपने हितों की हम रक्षा करें, हम और देशों के हितों के लिए भी हम उनके साथ बराबर परस्पर सहयोग बनाते रहेंगे और काम करते रहेंगे।
0: विद यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, वॉर हैज रिटर्न टू यूरोप, इट इज कॉजिंग ग्रेट पेन इन द रीजन, सिंस इट इन्वॉल्व्स मेजर पावर्स the outcomes are severe. Countries of the global south have been particularly affected. The global order is based on the respect for the principle of the UN Charter. Peaceful resolution of disputes and respect for sovereignty and territorial integrity. As I have said directly and publicly, this is not an era of war, but it is one of dialogue and diplomacy. And we all must do what we can to stop the bloodshed and human suffering.
1: अशोक जी, कार्यक्रम के अंत में एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि 2047 तक भारत का लक्ष्य है विकसित भारत बनने का, हमारी विदेश नीति और विदेश कूटनीति इस लक्ष्य को हासिल करने में किस तरह की भूमिका निभा रही है, कैसे देखते हैं आप?
2: भारत की जो कूटनीति है बहुत ही एक महत्वपूर्ण इसमें योगदान कर रही है, भारत को अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचाने में, विकसित भारत 2047 तक पहुंचाने में, क्योंकि सामने हमारे चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। तो इसीलिए हमको देखना है जो किन देशों के साथ हमको अपना परस्पर सहयोग बढ़ाना है, हमारे अपने संबंधों को और तेज करना है, और वही हम कर रहे हैं। चाहे पहले हमारे अमेरिका के साथ जिसे हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, परंतु अब हम देखते हैं जो अमेरिका का रवैया काफी ट्रांजैक्शनल हो गया है, परंतु फिर भी हमारे संबंध चाहे रक्षा क्षेत्र में हो, व्यापार क्षेत्र में हो, उनके साथ बड़े अच्छे रहेंगे, परंतु फिर भी हम डाइवर्सिफाई करेंगे। तो हर तरीके से लेकर अपनी आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए और अपने सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, जिससे कि अपनी संप्रभुता की हम रक्षा कर सके, इस मार्ग पर अग्रसर होते हुए भारत की कूटनीति उसमें एक बहुत ही अहम योगदान करेगी।
0: एक तो हमारा लक्ष्य है 2047, हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। आजादी के 100 साल हम ऐसे ही नहीं बिताएंगे, आजादी के 100 साल ऐसे बनाएंगे कि दुनिया में विकसित भारत का झंडा फहरता होगा।
1: कभी दुनिया के मंच पर भारत को सिर्फ एक बड़ा देश माना जाता था, लेकिन आज भारत एक बड़ी सोच बन चुका है। चाहे G20 की मेज हो या संकट में फंसे देशों तक मदद पहुंचाने का संकल्प, भारत ने हर बार ये साबित किया है कि नई सदी की कूटनीति केवल ताकत से नहीं, विश्वास से चलती है। आज जब दुनिया नए संतुलन की तलाश में है, तो उसकी निगाहें हिंद महासागर के उस किनारे पर टिकती हैं जहां एक लोकतंत्र 140 करोड़ सपनों के साथ विश्व मंच पर आत्मविश्वास से कह रहा है, ये नया भारत है जो मित्रता भी निभाना जानता है और नेतृत्व करना भी जानता है। इसी विश्वास, इसी बढ़ते वैश्विक सम्मान और इसी नई कूटनीतिक यात्रा के साथ मदन जी आपका और अशोक जी आपका कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आभार।
2: बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए।
4: थैंक यू सर।
1: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
5: चर्चा का विषय है।
6: हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं।

आकाशवाणी का ये चुरु केंद्र है। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में गिरिजा देवी का गायन, ख्याल अभागी कानड़ा।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गिरिजा देवी का गायन ख्याल अभागी कानड़ा। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी चुरू से किया गया।

गैर फिल्मी भजन। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं हरिओम शरण के गाए कुछ गैर फिल्मी भजन। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं

आकाशवाणी चुरू से समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। और आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुना रहे हैं हरिओम शरण की गाई कुछ गैर फिल्मी भक्ति रचनाएं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे हरिओम शरण की गाई कुछ गैर फिल्मी भक्ति रचनाएं। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी चुरू से किया गया।

FM 100.7 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप हैं आकाशवाणी चुरू के साथ। रात्रि की 11 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए

0: चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
1: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान भारत के किसानों, मछुआरों, वैज्ञानिकों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य कर्मियों के योगदान की पहचान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में असम में 4000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव कार्यों की समीक्षा की। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। कोलकाता ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Aparajita Nair. India and Italy today finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. The outcomes mark the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defense, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said, India-Italy Joint Strategic Action Plan 2025-2029 will provide a practical and futuristic framework for bilateral ties. He said, both sides are working towards establishing an India-Italy Innovation Centre and noted that the India-Italy Defence Industrial Roadmap has opened new avenues for co-development and co-production in the defence sector. Later in the day, Prime Minister Modi was conferred the prestigious Agricola Medal by the Food and Agriculture Organization at its headquarters in Rome. The medal was presented by FAO Director General Ki Dong-gyu. Speaking on the occasion, the Prime Minister said the award reflects India's unwavering commitment to food security, sustainable development and human welfare.
0: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और